90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। सुप्रभात। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई सन 2026। सुबह के श्रोताओं 7 बज चुके हैं। अब हमारी आज की सुबह की सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन आज का शुभ और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खली।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आज सुबह की सभा में हम आपको कौन कौन से कार्यक्रम सुनाने वाले हैं, आइए उसका एक झरोखा देख लेते हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। जीवन सौरभ के तत्काल बाद आप सुनेंगे 7:10 पर अक्षय निधि का प्रसारण, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ।

7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ यानी आपके अपनी पूर्वा के साथ। और सुबह 8 बजे आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओ, आज ये कार्यक्रम आधारित होगा यशवंत सिंह जो कि दमोह से संबंधित है और आज उनकी जयंती है। सुनना ना भूलिएगा वतन का राग कार्यक्रम सुबह 8 बजे। 8:30 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम सुनो कहानी का। आज की कहानी, एक कहानी नशा मुक्ति।

शेष कार्यक्रम उन्हीं पर आधारित होगा। सुबह 9:30 बजे कलाम, किस्से, बातें और यादें सुनना न भूलेगा हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे। नगर के साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी लेकर आएगी हमारी पत्रिका परिक्रमा सुबह 10 बजे। 10:30 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा का। कल ये आज ये कार्यक्रम आधारित होगा शिवाजी महाराज पर। दिन में 11 बजे सुनिएगा हमारा कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। आज की शिल्पकार हैं महाश्वेता देवी। श्रोताओं, 28 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि भी है। दिन में 11:30 बजे सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद को। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। आइए सुनते हैं जीवन सौरभ

0: जीवन सौरभ।
1: एक गांव की चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं। पानी भरते समय चारों महिलाएं इधर उधर की बातें कर रही थीं। कुछ समय बात करने के बाद वे अपने बेटों की तारीफ करने लगीं। पहली महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत विषय का बड़ा विद्वान हो गया है। बड़े से बड़ा ग्रंथ उसे मुंह जुबानी याद है और वह बड़े विश्वविद्यालय में नौकरी भी करने लगा है। वहीं दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने विज्ञान की पढ़ाई की है। वह वैज्ञानिक बन गया है और एक दिन सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा। तीसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने अच्छी शिक्षा ली है और वह शिक्षक बन गया है और दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला इन सब की बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बाकी महिलाओं से रहा नहीं गया तो उन्होंने उस महिला से पूछा, बहन तुम भी तो बताओ कि तुम्हारा बेटा आजकल क्या करता है। इस पर चौथी महिला ने थोड़ा संकोच करते हुए धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वह खेतों में काम करता है। ये सब बातचीत होने के बाद चारों महिलाएं पानी का घड़ा लेकर अपने अपने घरों को चली। तभी पहली महिला का बेटा आता दिखाई दिया। उसने अपनी माँ के साथ अन्य महिलाओं को नमस्कार किया और आगे चला गया। इसी तरह दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद चौथी महिला के बेटे ने जब रास्ते में अपनी माँ को सिर पर पानी का घड़ा लेकर आते देखा तो वह दौड़कर आया, उसके सिर से घड़ा उतारा और बोला, माँ तुम क्यों चली आई, मुझे कह दिया होता। यह कहकर वह घड़ा अपने सिर पर रखकर घर की ओर चल दिया और तीनों महिलाएं देखती रह गईं।

0: श्रोताओं, जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान ही काफी नहीं होता, बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। किताबी ज्ञान केवल हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए होता है और उस ज्ञान का उपयोग हमें इस दुनिया में करना है, लेकिन हमारे व्यवहार के तौर तरीके तो हमें इस दुनिया से ही सीखने होते हैं।
1: जीवन सौरभ
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 174 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रावरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है

0: त्रिष्टुप।
1: त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृण पाहि असुर त्वमस्मान् त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप संसार के अधिपति हैं। देव शक्तियों के सहयोग से आप मनुष्यों की रक्षा करें। आप सत्कर्मशील मनुष्यों के पालक हैं। आप हम वीरों को संरक्षित करें। आप ऐश्वर्यवान हमारे तारणकर्ता हैं। आप ही श्रेष्ठ आश्रयदाता और बलदाता हैं। दनो विष इंद्र मिद्रवाचः सप्तयत्पुरः शर्म शारदीर दर्त ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रम पुरुकुत्साय रंधीहि। हे इंद्रदेव, जिस समय आपने शरदकालीन निवास योग्य शत्रु नगरों के 7 भवनों को विनष्ट किया, उसी समय कटुभाषी शत्रु सैनिकों को भी विनष्ट कर दिया। हे अनिंदनीय इंद्रदेव, आपने प्रवाहित होने वाले जलों के द्वारों को खोल दिया और युवा पुरुकुत्स के लिए वृत्रासुर का संहार किया। अजावृत्त इंद्र शूर पत्नीर्द्याम च ये भी पुरुहूत नूनम रक्षो अग्नि मशुषम तूर्वयाणम सिंहो न दमे अपांसि वस्तोह। आवाहन योग्य हे इंद्रदेव, आप निश्चित ही जिन मरुद्गणों के साथ दिव्य लोक में जाते हैं उनके सहयोग से वीरों को सुरक्षित करके शत्रुओं की अभेद्य दीवारों को तोड़ देते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे घरों में जलों की पूर्ति के लिए सिंह के समान अपनी पराक्रमी सामर्थ्य से इस रोगनाशक तीव्र गतिशील अग्नि को संरक्षित करें। शेषन्नु त इंद्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य महना सृजदर्णास्यव यद्युद्धा गास्तिष्ठ दर्धरी श्रिसता मृष्ट वाजान। हे इंद्रदेव, आपको महिमा मंडित करने के लिए वज्र के प्रहार से युद्ध भूमि में ही असुर धराशायी होकर गिर पड़े। जिस समय आपने योद्धा शत्रुओं के पास जाकर उनके द्वारा अवरुद्ध जल प्रवाहों को प्रवाहित किया, उसी समय आप दोनों घोड़ों पर आरूढ़ हो गए। आपने अपनी घर्षक और शत्रु संहारक सामर्थ्य से वीर सैनिकों को दोष मुक्त किया। वह कुत्समिंद्र यस्मिन् चाकंत्यस्युमन्यु रिज्रा वातस्याश्वा प्र सूरश्चक्रम वृहतादभीके भी स्प्रधो यासि सद् वज्रबाहु। हे इंद्रदेव, आप कुत्स के जिस यज्ञ में हवि सेवन की कामना करते हैं उसी ओर सुखदाई सीधे मार्गों से वायु की गति के समान शीघ्रगामी अपने अश्वों को प्रेरित करें। युद्ध में सूर्य देव अपने चक्र को उनके समीप ले जाएं और हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव शत्रु सेनाओं की ओर उन्मुख हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 174 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम् शिवोहम्। ईश्वर के ध्यान में हम अपने आप को उस स्तर तक ले जाएं जहां हम अपने बुद्धि और अहंकार को भूल जाएं, ना हम अपने संवेदन से किसी और का विश्लेषण कर पाएं या उसकी आलोचना कर पाएं, हम देख पाएं तो केवल स्वयं को और केवल स्वयं को।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत, और आज भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ मैं आपके सामने, आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हम यूं ही किसी के दुश्मन नहीं बन जाते, या हम किसी और से यूं ही दुश्मनी मोल नहीं ले लेते? हमारे द्वारा किए गए हमारे कर्म और हमारे द्वारा बोले गए हमारे शब्द ही हमें किसी का दुश्मन बना देते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई कर्म करें या अपने मुंह से कुछ शब्द निकालें, तो पहले एक बार सोच विचार अवश्य कर लें।

श्रोताओं, ये धारणा हमेशा से मिथ्या रही है कि सुख का निवास किन्हीं पदार्थों में होता है, चीजों में होता है। यदि ऐसा रहा होता तो वो सारे पदार्थ जिन्हें सुख का कारण माना जाता है, सबको ही समान रूप से सुखी और संतुष्ट रखते, या उन पदार्थों के मिल जाने पर हम मनुष्य सहज और सुखी हमेशा के लिए बन जाते। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्हें संसार के सारे पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन वो तब भी सुखी संपन्न नहीं है। असली सुख तो संतोष में है।

श्रोताओं, कभी आपने ये सोचा है कि ये मन जो हमारा ईश्वर ने बनाया है वो किस तरह का है? कभी बहुत ही छोटी सी बात में खुश हो जाता है, तो कभी बड़ी बड़ी खुशियों को देखकर भी मन उदास ही बना रहता है। एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाट या फिर एक फूल का खिलना और उसकी खुशबू ही हमें कभी सुख दे जाती है, तो कभी बड़े बड़े हीरे जवाहरात जब हम अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं या खरीद लेते हैं, तब भी उतनी खुशी महसूस नहीं करते। तो फिर बात यह है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना खुशी नहीं कहलाती। जो हमें प्राप्त है उसमें खुश रहना ही असली खुशी है।

पुष्पै गंधम तिले तैलम काष्ठे वनहि पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। यानी जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल के बीजों में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है और गन्ने में गुड़ है, ठीक उसी प्रकार यदि हम विवेक पूर्वक देखें तो हर व्यक्ति में परमात्मा विद्यमान है।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कोई कष्ट न देखें, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। ये

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। ये जोश ये जुनून हमारे वीर क्रांतिकारियों के सीने में सुलगता रहता था और फूटता तो ज्वालामुखी की तरह, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। बड़ी बात यह नहीं थी कि विरोध की आवाज कितनी बुलंद हुई या क्या परिणाम हुआ, वो ललकार बनी या शोर हुई। क्रांति पथ पर बड़ी बात यह थी कि लगातार आवाज उठाई गई। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, रिश्ते नातों को छोड़ा और देश के लिए खुद को समर्पित किया। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है यशवंत सिंह। यशवंत सिंह का जन्म 27 जुलाई सन 1909 को सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम था नन्हू सिंह। यशवंत की आरंभिक शिक्षा दमोह के म्युनिसिपल हाई स्कूल में हुई थी। वे रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ये वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बलिदान देश की रगों में उबल रहा था। यशवंत सिंह ने भी प्रतिज्ञा ली कि अब उनकी हर सांस सिर्फ देश के लिए है और वो क्रांति गतिविधियों में संलग्न हो गए। घर वालों की जिद पर उनका विवाह हो गया, लेकिन शादी की पहली रात ही उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था, तुम इस घर में रह सकती हो किंतु मेरी सच्ची सहधर्मिणी मेरी कटार है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं और इस धरती के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, जिनसे मुझे निरंतर युद्ध करते रहना है। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मैं जा रहा हूं। ये अपनी पत्नी से उनकी पहली और अंतिम भेंट थी। यशवंत सिंह घर छोड़कर चले गए और पत्नी तक दोबारा लौटे तो तभी जब पत्नी की चिता जल रही थी, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और चिता की भस्म हाथों में ले सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे आकर मिलूंगा। यशवंत सिंह अब रेल विभाग में नौकरी कर रहे थे। भुसावल में वो कैबिन मैन थे। रेलवे की नौकरी के साथ ही वो क्रांति कार्य में पूरी तरह संलग्न थे। अपने दो मित्रों देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ मिलकर वो क्रांतिकारी साहित्य के वितरण का कार्य

से मिलकर अफसर से राइफल छीनने की योजना बनाई। खतरा कम नहीं था। किसी भी अंग्रेज अफसर पर हाथ रखना अंग्रेजों के सीधे निशाने पर आने जैसा था। लेकिन यशवंत सिंह तो आजादी के दीवाने थे। सैनिकों सा जज्बा दिल में लिए वो बढ़ चले थे क्रांति पथ पर।

यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ 23 जुलाई सन 1931 को खंडवा स्टेशन पहुंचे। तीनों ने प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद लिए थे। पंजाब मेल जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो वो उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा कर रहा था, जो बम्बई से पूना जा रहा था। इस डब्बे में लेफ्टिनेंट शीहन भी था, जो 28 फील्ड ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट था। हैक्स के साथ एक कुत्ता भी था। तीनों क्रांतिकारियों ने डब्बे का पूरा जायजा लिया और सतर्क होकर बैठ गए। सुबह 4 बजे का समय था। गाड़ी डोंगरगांव और मांडवा स्टेशन के बीच द्रुत गति से दौड़ रही थी। दोनों अंग्रेज अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। स्थिति अनुकूल पाकर यशवंत सिंह और देव नारायण ने कटार से लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला बोल दिया और दलपत राव शीहन के पास पहुंच गया, ये सोचकर कि यदि वो हैक्स को बचाने की कोशिश करे तो वो उसे रोक लेगा। डब्बे की हलचल सुन हैक्स का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और दोनों ही अंग्रेज अफसरों की नींद खुल गई। लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला होता देख शीहन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दलपत राव ने शीहन पर अपने कटार से वार कर दिया। शीहन ने कटार को मजबूती से पकड़ लिया और फिर दोनों भिड़ गए। इस जोर आजमाइश में कटार टूट गई और मूठ वाला हिस्सा दलपत राव के हाथ में रह गया और कटार की धार शीहन के हाथ में आ गई। शीहन ने कोई गलती नहीं की और कटार के टूटे हुए फल से दलपत राव पर उसने वार कर दिया। इसके साथ ही बड़ी फुर्ती से लाइट जलाकर गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींच दी। धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से रुकती उसके पहले ही तीनों क्रांतिकारी गाड़ी से कूद गए और पास के जंगलों की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन के डब्बे में लेफ्टिनेंट हैक्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी राइफल क्रांतिकारियों के पास पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते लेफ्टिनेंट हैक्स को पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वो बुरी तरह से घायल था। पूरी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा

तीनों क्रांतिकारी अपनी हिम्मत और वीरता के बल पर अपने मकसद में कामयाब हो आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनके सर पर तो स्वाधीनता का जुनून सवार था।

एक पुलिस दरोगा जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, क्रांतिकारियों की खोज में वो रेलवे लाइन की ओर बढ़ने लगा। उसे अंदाजा था कि हो न हो सुबह होते होते कुछ लोगों ने उन क्रांतिकारियों को भागते हुए जरूर देखा होगा। रेलवे लाइन पर कुछ लोग काम करते हुए उसे मिले। उनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति नेकर, काला कोट और जूते पहने हुए मांडवा स्टेशन की तरफ गया है। बातचीत चल ही रही थी कि रेलवे ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस दरोगा ने वो ट्रॉली रुकवाई। ट्रॉली में बंबई का डिप्टी चीफ इंजीनियर, भुसावल डिवीजन का इंजीनियर और एक सहायक बैठे हुए थे। दरोगा ने सारी घटना उन्हें बताई और वो चारों क्रांतिकारियों की तलाश में मांडवा की ओर चले गए। कुछ दूर पहुंचने पर पटरी पर चलता हुआ एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। हुलिया बिल्कुल वही था जो रेलवे लाइन में काम करने वालों ने बताया था। ट्रॉली की आवाज उस व्यक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही ट्रॉली रुकने को हुई, वो व्यक्ति फुर्ती में आया। वो तुरंत पटरी छोड़ जंगल की तरफ भागा। ट्रॉली पर सवार लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते हुए पास ही एक पुलिस स्टेशन मिला। दरोगा ने वहां पहुंचकर अपनी सहायता के लिए कुमुक मांगी। 50 जवानों ने जंगल के उस क्षेत्र में क्रांतिकारियों की खोज शुरू की। 5-5 जवानों के जत्थे बने और पूरे जंगल में वो फैल गए। लेकिन वो क्रांतिकारी चतुराई से फिर रेलवे लाइन पार कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगा। वो एक खेत पार कर रहा था कि तभी वहां काम करने वाले मजदूरों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये देवनारायण तिवारी थे। अगले दिन एक विश्वासघाती ने यशवंत सिंह का पता दिया और वो भी गिरफ्तार हो गए। और इसके कुछ दिनों बाद दलपत राव भी पकड़े गए। तीनों क्रांतिकारियों पर 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में मुकदमा चला। 21 सितंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई तथा दलपत राय को आजन्म निर्वासन का दंड दिया गया। फांसी के पूर्व यशवंत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आप मेरी मृत्यु से दुखी न हों। आप यही समझें कि आप 6 नहीं 5 पुत्रों के ही पिता थे। मैं एक वीर की मौत मरूंगा, आपको भी मुझ पर गर्व होना चाहिए। और इस तरह 21 सितंबर सन 1931 को जबलपुर के केंद्रीय कारागार में यशवंत सिंह को देवनारायण तिवारी के साथ फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अमर हो गए।

संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कहानी हमारे कार्यक्रम सुनो कहानी में।
3: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी आहुति। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे पैदा हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी, वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वां बच्चा लड़की हुई थी। मां बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थीं। घर में कोई बड़ा आदमी ना होने के कारण मां की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे, उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहां थी। पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट, अपनी मां और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की मां पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली आई और उसी दिन राधेश्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम था। वे अपने चिन्ह स्वरूप जो छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधेश्याम जी का जीवन आधार था। वे कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए ही अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे।

जिस हृदय मंदिर में वे एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती, उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वो संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते। कचहरी जाते वहां भी जीना लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमे में बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य ये कि जीवन में उन्हें कोई रुचि न रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर किसी को अधिक कहने सुनने का साहस ना होता। अतएव सभी ये समझ चुके थे कि राधे श्याम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस न हुए। अंत में वे अपनी शिक्षा को साथ लिए इस लोक से विदा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद राधे श्याम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से एक तांगा निकला। न जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर घिसटता हुआ चला आया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने 2 सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे, फिर अपने भाई को उठाने लगे। राधे श्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े, बालक को उठाकर झाड़ने पहुंचने लगे। राधे श्याम के एक मित्र जगमोहन, जो राधे श्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधन करके बोले, कहां जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वहीं अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधे श्याम जी की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बिठाकर उसे रवाना करके राधे श्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधे श्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई ये किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया, वो पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण अभी तक कुंवारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपए माहवार पर एक ऑफिस में नौकर हैं। बड़ा परिवार है, 50 रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपए कहां से लाएं? कान्य कुब्जों में तो बिना हरौनी के कोई बात ही नहीं करता। कष्ट में ही है बेचारी, लड़की सायानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो बांधते नहीं बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम जी का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली सी बात याद आ गई। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ दिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। तुम क्या कहते हो राधे श्याम, है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बिचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे? राधे श्याम उदासीनता से बोले, भाई लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी करते हैं। उसके माने ये थोड़ी है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा और जो मरा है फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बन जाना पड़ता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, यही ना 35-36 साल की, बस
जीवन भर तपस्या करने की बात है। बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की माँ 4-6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर

घर जैसे कोई बात ही ना थी। पर अब बच्चे की कुछ देखभाल नहीं होती, नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूं, तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा है। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बाहर आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाली का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नुपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर्ग्रहणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्य कुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधेश्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था, वे पूर्ण सुखी थे। राधेश्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के ही लिए, किंतु उस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधेश्याम की देखभाल करनी पड़ती। उनकी देखभाल से ही वो परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधेश्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधेश्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही, किंतु उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना न रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं। 6 महीने की बीमार मालूम होती है। वैसे ही वो स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभिज्ञ हूं सो बात न थी, उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वो राधेश्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, किंतु वो तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भांवरे फिर लेने के बाद राधेश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली मिल सी चुकी थी।

इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गईं। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है, घंटे दो घंटे घर से बाहर रहकर अपने जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए कुंतला ने सुने। उसने सोचा, वो इन सबसे अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा। विषय था, भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधेश्याम ने भी लेख देखा, बहुत प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वे बाहर गए, बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली और सामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधेश्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर बोले, कुंतला तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं कहीं भाषा की त्रुटियां हैं जरूर, पर ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, ये भी घर ही कैसे आदमी है। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता वो बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता था, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्य के जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस मालूम न होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर, उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि और लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। लाइब्रेरी में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शेली, टेनिसन और कीट्स तथा महाकवि शेक्सपियर आदि के ऊंचे दर्जे की कविताएं उसे पढ़कर सुनाते, उसके सामने व्याख्या तथा आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। कभी कभी सोचते शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, किंतु वे प्रकट में कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो उनका आपस में परिचय कराया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए वो बहुत सतर्क रहती, किंतु फिर भी यदि भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव ही अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने दो चार तुकबंदियां भी की, जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई, कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधेश्याम खुश न हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे, उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्य की सेविका तैयार कर रही हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधे श्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी न था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर न निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए अनेक बार कुंतला की उन्हें याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें, फिर न जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को बुला न सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर
कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वो बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना बंद क्यों कर दिया, क्या बात हो गई। किंतु वो अखिलेश्वर के विषय में राधेश्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की मां ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधेश्याम कुंतला से ये कहकर कि जब तांगा आवे तुम चली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला मां के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो उसे रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार हैं, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवा कर वो अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला तुम कैसे आ गई, इस बीमारी में मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधेश्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी ना बोल पाई। राधेश्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, हाओ भाई राधेश्याम, आज ही कुंतला आई तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूं, रोज ही तुम्हारी याद करता था पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए। राधेश्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था इसलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलती हो, मैं तो जाता हूं। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा पर वे न रुके, चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गईं। राधेश्याम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वो चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौट कर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कॉपियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेट कर किसी ने आग लगा दी है। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वो प्यारा चित्र कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है और ऊपर उठती लपटें मानो ये कह रही हैं, कुंतला ये तुम्हारे साहित्य के जीवन की चिता है।

0: श्रोताओं, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी आहुति। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपने किस्सा गो संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे सुनो कहानी, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा

0: के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई, जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया। लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था। बाईस साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया। वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज,

0: कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी, पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा जहां असली कला अब भी जिंदा है।
0: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
1: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
0: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
0: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
1: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे। वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
0: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था, उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
1: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
0: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
1: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
0: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
1: श्रोताओ, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
0: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से करहाते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की, जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलिशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
1: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
0: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
1: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
0: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
1: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
0: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
1: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
0: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
1: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 2400 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
0: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए।
1: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
0: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
1: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
0: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है। कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
1: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों के तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
1: मैं थी आपके साथ स्वाति।
0: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कला कल्लोलिनी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।
2: मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति को समर्पित विशेष कार्यक्रम कलाम, किस्से, बातें और यादें। ईश्वर की बनाई ये दुनिया दो धाराओं पर किसी तिनके की तरह थिरकती है, जिसकी एक धारा पर बिछा हुआ है दुनिया भर का गणित और दूसरी धारा पर सजा है मन का भूगोल। इन्हीं दो धाराओं के बीच जिंदगी चलती है, उलझती है, आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है, ये जिंदगी तुम्हारे कदमों के साथ चलती है, कभी हंसी की सरगम पर थिरकती, कभी आंसुओं के छंद पर सरकती, तो कभी सपनों के ताल पर सूरतें बदलती। ये जिंदगी तुम्हारे कदमों के साथ चलती है। जिंदगी का ये तोहफा हम सभी को मिला है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दुनिया भर के गणित और मन के भूगोल के बीच मुस्कुराती जिंदगी को जिया कैसे जाए। जिंदगी को जीने का यही हुनर सिखाने के लिए ईश्वर कुछ करिश्माई इंसान बनाता है जो इस पूरी दुनिया को जीना सिखाता है। एक ऐसा ही अद्वितीय अभूतपूर्व जीवन था देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम, एक व्यक्तित्व नहीं, ये एक दर्शन है, फिलॉसफी। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जिसके बनने में कितनी सदियां बीत जाती हैं, और कभी जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए ईश्वर एक अब्दुल कलाम पैदा कर देता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, बहती हवा सा एक जीवन, महकते मुस्कुराते फूल सा एक जीवन, जो आज भी भरता है जीवन में सपनों के रंग, जो थमा देता है जीवन के सबसे बुरे वक्त में भी साहस की लाठी, और मुश्किलों से हमारा मन उबर आता है। उन्हें याद करते ही आसमान के अनंत विस्तार में जैसे उभर आती है मासूम बच्चे सी मुस्कुराहट, माथे पर झूलती दो लटें और सितारों सी चमकती दो आंखें जो कहती हैं हमसे,
1: आसमान की ओर देखें, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है, और जो सपना देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास ये ब्रह्मांड कर रहा है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।
0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जीवन के सारे आरोह अवरोह इस दुनिया में एक अफसाना बनकर गूंज रहे हैं, उनके जीवन के किस्से, उनकी बातें और यादें आज इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो कहलाए जनता के राष्ट्रपति, जो देश के राष्ट्रपति होने के पहले ही भारत रत्न से विभूषित थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, एक गहरी शालीनता और चेहरे पर सदा बाल सुलभ मुस्कुराहट, एक ठहराव उनके भीतर था जो सभी को मोह लेता था, और उनकी बातों में उतनी ही गहराई होती थी। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक और अभियंता थे, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें हमेशा एक टीचर, एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। उन्होंने कई बार राष्ट्रपति पद के प्रोटोकॉल को तोड़ा, और इस पद पर रहते हुए भी वो छात्रों से रूबरू होते रहे, लेक्चर दिए और युवा वर्ग की जिज्ञासाओं को शांत किया। कलाम साहब लड़ाकू विमान सुखोई में को पायलट भी बने और सियाचिन में लेक्चर दिया। भारत के अंतरिक्ष से जुड़े अनेक मिशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसे थे करिश्माई कलाम। आज इस कार्यक्रम में हम उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व और महान उपलब्धियों की बातें करेंगे। आइए पहले चलते हैं उनके बचपन की ओर, वो बचपन जहां उन्हें गढ़ने वाले माता पिता और गुरु हैं, और उन्हें रचने वाली संवारने वाली कठिन संघर्षपूर्ण परिस्थितियां हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास एक गांव है धनुषकोडी, जहां 15 अक्टूबर सन 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पैसे वाले थे। मछुआरों को किराए से नाव दिया करते थे और इन्हीं पैसों से परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, 5 भाई और 5 बहन और साथ में 3 और परिवार। लेकिन पिता ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, माँ और दादी ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। इस तरह माता पिता की दी हुई शिक्षा और उनके दिए संस्कारों ने अब्दुल कलाम को गढ़ा। कलाम घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उनके हिस्से सभी का प्यार और दुलार खूब आया। 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत एलिमेंट्री स्कूल में अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का दीक्षा संस्कार हुआ। लेकिन उनका छात्र जीवन बहुत संघर्ष से भरा रहा। जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे तब सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, उठकर स्नान करते और गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते। ये ट्यूशन पढ़ाते थे स्वामी अय्यर। वो साल में केवल 5 छात्रों को ही मुफ्त ट्यूशन पढ़ाया करते थे, और उनकी शर्त होती थी कि छात्र बिना स्नान किए ट्यूशन पढ़ने नहीं आएंगे। लिहाजा सुबह गणित की ट्यूशन जाने से पहले स्नान करना बेहद जरूरी था। 5:30 बजे ट्यूशन से लौटकर वो पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते, और फिर घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अखबार इकट्ठा करने जाते। अखबार इकट्ठा करके वो उन्हें घर घर बांटते। इसकी एवज में उन्हें कमीशन मिलता। इस तरह ट्यूशन, पढ़ाई और कमाई का सिलसिला चलता रहा। इन कठिन दिनों में उनकी माँ ने पढ़ाई में उनका बहुत सहयोग किया। वो कहा करते थे,
1: मेरे बचपन को निखारने में मेरी माँ का बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की शिक्षा दी। माँ सुबह 4 बजे उठकर मुझे स्नान कराकर ट्यूशन के लिए तैयार करती थी। जिन दिनों मैं पढ़ रहा था, उन दिनों आम घरों में रोशनी के लिए केरोसिन लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। केरोसिन पैसे देकर खरीदना पड़ता था, लिहाजा शाम को लैंप केवल 7 से 9 बजे तक ही जलाया जाता था। लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा लैंप खरीदा हुआ था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। मेरी माँ ने अगर बचपन में मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता।
0: जी हाँ श्रोताओं, अपनी माँ के प्रति कलाम साहब आजीवन आभारी रहे। उनका बचपन, बचपन का संघर्ष और माँ का साथ और दुलार उन्हें हमेशा भीतर तक भिगोता रहा। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। इस कविता में वो कहते हैं, समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वो छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले, कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक, स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साये में तेरे। माँ के नाम लिखी इस लंबी कविता के अंत में कलाम साहब कहते हैं, आधी रात में अधमुंदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर, घुटने के बल बाहों में घेरे खड़ा था मैं, तूने जाना था दर्द मेरा, अपने बच्चे की पीड़ा, तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति, निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में माता पिता और गुरु, इन तीनों की भूमिका को हमेशा बहुत गहराई से रेखांकित किया। उनका मानना था कि उन्हें जो भी संस्कार मिले वो उनके माता पिता ने दिया, और जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले अनमोल शिक्षक मिले, इसीलिए माता पिता और गुरु के प्रति उनका मन हमेशा श्रद्धा से झुकता रहा।
1: अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और सुंदर मस्तिष्क वालों का देश बनाना है तो मैं समझता हूँ कि समाज के तीन लोग इसमें सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें माता पिता और गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं।
0: श्रोताओं, अपने छात्र जीवन से ही एपीजे अब्दुल कलाम अपने शिक्षकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके अध्यापकों ने उन्हें केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी उन्हें दी। उनके भीतर इंसानियत के बीज बोए। उन्हें हमेशा एक से बढ़कर एक शिक्षक मिले। वो हमेशा याद करते थे रामेश्वरम के पंचायत एलिमेंट्री स्कूल के अध्यापक मुथु अय्यर को, जो पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि के कारण उन पर विशेष ध्यान देते थे, तथा कलाम साहब की खराब हैंडराइटिंग में सुधार के लिए उन्होंने उनके पिता से भी बात की थी तथा इस दिशा में विशेष रुचि ली। पांचवी कक्षा में उन्हें शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने पढ़ाया, जो एक बेहतरीन अध्यापक थे। उन्हीं की बदौलत एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान की तरफ हुई। पक्षियों के उड़ने की तकनीक और उनके डायरेक्शन बदलने की तमाम खूबियां समझाने के लिए पूरी कक्षा को वो नदी के किनारे ले गए। वहां मौजूद पक्षियों को दिखाकर उन्होंने विस्तार से बच्चों को समझाया। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु था जब एपीजे अब्दुल कलाम का रुझान फ्लाइट साइंस की ओर हो गया। पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के जीवन की दिशा तय हो गई। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद वो मद्रास चले गए और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। इस तरह जीवन की तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी की। वो कभी हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं, और जब भी जीवन में वो कमजोर पड़े, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक उन्हें खड़ा करने के लिए सामने उपस्थित रहा। जब एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए तो ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश जैसी विभूतियों का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। देश के लिए उन्होंने जुनून की हद तक काम किया। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण योजनाओं में अपनी भूमिका निभाई।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
0: भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के सफल प्रशिक्षण का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। उनकी देखरेख में ही सन 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम ने देश को सन 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र को अत्याधुनिक करने की सोच भी दी थी। वो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इस तरह उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO को संभाला और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में वो शामिल रहे। यही कारण है कि वो मिसाइल मैन के नाम से पुकारे गए। देश दुनिया में उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने सन 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत हुए। सन 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और लोगों ने कहा कि वो जनता के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वो दीवारें हटा दीं जो ऐसे पदों और जनता के बीच होती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अत्यंत सहज और सरल व्यक्ति थे। सूट बूट में उन्होंने हमेशा खुद को असहज पाया, इसीलिए उनके कोट के बंद गले को काटकर एक नया डिजाइन बनाया गया जो कलाम सूट के नाम से जाना गया। चमड़े के जूतों की जगह स्पोर्ट शू उन्हें आरामदायक लगते थे। वो सहजता से जमीन पर बैठकर लोगों से बातें करने लगते। विज्ञान के साथ साथ कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखीं। इसके साथ ही वो रुद्र वीणा भी बजाया करते थे। डॉक्टर कलाम ने अनेक पुस्तकों की रचना की। शिक्षा और शिक्षण से उन्हें बहुत लगाव था। युवाओं को जब वो संबोधित करते तो लगता जैसे कोई ऋषि, कोई संत जीवन ज्ञान की पाठशाला में श्रद्धा से बैठा दीप प्रज्वलित कर रहा हो। विद्यार्थियों से उन्हें इतना लगाव था कि राष्ट्रपति के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगले ही दिन लेक्चर के लिए वो क्लासरूम में थे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कलाम का जीवन सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला है। ये समस्त अभावों को हराकर जीवन के शीर्ष पर पहुंचने की ही कहानी नहीं है। ये त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के जरिए आसमान में उनके अमिट हस्ताक्षर की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जीवन के हर पल में उच्च आदर्शों की स्थापना की। ये मानवता, दया, करुणा, प्रेम, सच्चाई और अब तक स्थापित समस्त अच्छाइयों की कहानी है। राष्ट्रपति भवन से वापसी के समय जब उनसे पूछा गया कि आपको सामान के लिए कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा सामान मेरे साथ ही चला जाएगा, सिर्फ 2 सूटकेस हैं मेरे पास। इस तरह एक ऋषि तुल्य राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से विदाई हुई। इसी तरह की एक घटना याद आती है जिसका जिक्र उनके सचिव ने अपनी किताब में किया है। मई सन 2006 में डॉक्टर कलाम का सारा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। कुल मिलाकर 52 लोग थे जो 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। उनके जाने के बाद डॉक्टर कलाम ने 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। ऐसे संस्कार थे उनके, ऐसे आदर्श थे उनके। श्रोताओं, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा पल कौन सा है। इस पर उन्होंने कहा कि जब SLV का सफल परीक्षण हुआ, अग्नि ने अपने टारगेट को छुआ, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, सब में मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे बड़ा पल अलग था। एक हॉस्पिटल जाना हुआ जहां बच्चों को नकली पैर लगाकर चलते देखा मैंने। उन पैरों का वजन 4 से 5 किलोग्राम का था, जिसे लगाकर वो बहुत मुश्किल से चलते थे। मुझे याद आया, हमारी लैब में रॉकेट्स के लिए बहुत हल्का और मजबूत मटेरियल उपलब्ध है। उससे मैंने नए पैर बनाए जिसका वजन 300 से 400 ग्राम था। जब वो पैर मैंने हॉस्पिटल भिजवाया तो उन बच्चों के माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके चेहरों की भीगी हुई खुशी और संतोष मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं उनके जीवन के, जिनकी खुशबू सदियों तक हवाओं में बहती रहेगी, इंसान से इंसान के रिश्ते की कहानी कहती रहेगी। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम के आखिरी सफर का एक और किस्सा याद आता है। 6-7 कारों का काफिला IIM शिलोंग के लिए निकला। डॉक्टर कलाम 2 नंबर की कार में थे। उनके आगे एक ओपन जिप्सी चल रही थी जिसमें 3 जवान थे। 2 जवान बैठे थे और 1 जवान हाथ में गन लेकर खड़ा था। 1 घंटे के सफर के बाद उन्होंने सवाल किया, वो खड़ा क्यों है, वो थक जाएगा, ये तो सजा जैसा है, उसे वायरलेस पर संदेश भेजकर बैठने के लिए कहो। संदेश पहुंच नहीं पाया और डॉक्टर कलाम पूरे सफर के दौरान परेशान होते रहे और अंत में कहा, मैं उससे मिलकर शुक्रिया कहना चाहता हूं। IIM शिलोंग पहुंचने पर उन्होंने उस जवान को अपने कमरे में बुलाया, उससे हाथ मिलाकर शुक्रिया कहा और उससे पूछा, तुम थक गए होगे, क्या कुछ खाना चाहोगे? मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। वो जवान हतप्रभ था, कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना ही कहा, सर, हम तो आपके लिए 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। ये इंसानियत का इंसानियत से साझा संवाद था, एक साझा धन्यवाद था। यही वो संस्कार हैं जहां हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भारत के लिए भी उनकी आंखों में अनगिनत सपने थे, भविष्य के लिए एक विजन था। IIM शिलोंग में उनके लेक्चर का विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उन्हें लगता था कि पॉल्यूशन की तरह इंसान इस धरती पर मौजूद जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया की एक उनकी अपनी तस्वीर थी जिसे वो रचना चाहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकों की रचना की, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माय जर्नी, इग्निटेड माइंड, उनकी किताबें जाने कितनी पीढ़ियों को ऊर्जा से भरती रहेंगी। उन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी, लेकिन हर उपलब्धि उनके लिए एक पड़ाव साबित हुई। हर बार वो उठे और आगे चल पड़े एक नई मंजिल की तलाश में। डॉक्टर कलाम अपने जीवन के अंतिम पल तक देश के बारे में ही सोच रहे थे। 27 जुलाई सन 2015 को वो शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। विषय हमने आपको बताया ही, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। इस धरती की चिंता में, धरती पर जीवन की चिंता में डूबे वो बोल ही रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस संसार से वो विदा हो गए। धरती की महिमा पर लिखी उनकी कविता के शब्द जैसे हवाओं में बिखर गए।
1: देखो धरती की जगमग देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता है। कुछ मीठा सा छू जाता है, एक जवाब वहीं से आता है। नहीं सिर्फ ये महज रोशनी, यहां ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। सेवा का प्रकाश यहां आंखें चुंधियाता है। शांति से रोशन है जो, वही तो धरती माता है, वही तो धरती माता है।
0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक महकते हुए फूल सा जीवन, जिनकी याद हमारे मन के आसमान में उकेर देती है एक भरा पूरा सा इंद्रधनुष, जो सांस सांस गूंजता है एक कविता बनकर। तुम्हारा होना ऐसा होता है जैसे अलसाई आंखों में रात जाते जाते रख जाए कोई सपना। तुम्हारा होना जैसे दीवार के पार से झांकना धूप का, जैसे बबूल की शाख पर घोंसला बुनना बया का, जैसे छू लेना आंखों से तितली के रंग। तुम्हारा होना जैसे ढूंढ लेना बचपन किसी पुरानी गुड़िया में, जैसे सिमट आना दुनिया का एक आंगन में, जैसे डूब जाना किसी परिंदे का उड़ान में। तुम्हारा होना जैसे खिड़की से होकर गुजर जाना ताजी हवा का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान आत्मा, एक महामानव, एक महान जीवन के महायात्री, जिनके एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान है। वो दुनिया की तमाम उपलब्धियों के बाद भी मानवता को, इंसानियत को, मानवीय मूल्यों को जीवन का सार कहते हैं। वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे दिलों में एक खुशबू की तरह वो महकते रहेंगे, एक फूल की तरह मुस्कुराते रहेंगे।

अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और आज परिक्रमा के सफर में मैं हूँ आपके साथ, आपके रेडियो मित्र पूर्व खले। स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में आप सभी का। तो आइए आज शुरुआत करते हैं मैराथन से। जी हाँ, रविवार को भोपाल में रफ्तार, सेहत और जागरूकता का अनोखा संगम देखने को मिला। शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर एक साथ मैराथन का आयोजन हुआ। सेहत, पर्यावरण और नशा मुक्ति के लिए लोग एक साथ सड़कों पर उतरे। वीकेंड पर रविवार की सुबह रन फॉर टाइगर का आयोजन हुआ वन भवन में, जहां 600 लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता के लिए एक साथ दौड़े। ये रेस 5 किलोमीटर लंबी रही। इनमें स्कूली बच्चे और युवा तो शामिल थे ही, साथ ही शहर के सीनियर सिटीजन्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रेस का आयोजन वन भवन में था। वहीं टीटी नगर स्टेडियम का नजारा आम दिनों से अलग रहा। स्पोर्ट्स ट्रैक पर न सिर्फ खिलाड़ी और यूथ बल्कि स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और शहर के टॉप पुलिस ऑफिसर्स भी दौड़ते नजर आए। मौका था भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आयोजित रन फॉर लाइफ का। नशे से दूरी है जरूरी 2.0 मैराथन के तहत आयोजन हुआ। वहीं हरी भरी वादियों के बीच भोपाल सहित स्वीडन, पेरू और अमेरिका सहित देश भर के 1800 एथलीटों ने एक साथ दौड़ लगाई। मौका था पचमढ़ी मानसून मैराथन का। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और एडवेंचर्स एंड यू के तत्वाधान में हुई इस रेस में नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट शामिल रहे। प्रकृति आधारित पर्यटन, साहसिक पर्यटन और फिट इंडिया के तहत ये आयोजन किया गया।

तो श्रोताओं, अब हम मैराथन से चलते हैं ट्राइबल म्यूजियम में। कल यानी रविवार को बुंदेली और भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ट्राइबल म्यूजियम में देखने को मिली। संभावना के तहत यहाँ आदिवासी कलाकारों ने इसे पेश किया। भील जनजातीय भगोरिया नृत्य प्रताप सिंह और दिवारी नृत्य विक्रम सिंह बुंदेला और साथियों ने प्रस्तुत किए। यहाँ झाबुआ और अलीराजपुर में किया जाने वाला भील जनजाति का भगोरिया नृत्य भी पेश किया गया। रंग बिरंगी वेशभूषा में महिलाओं ने चक्रीपाली तथा पिरामिड नृत्य पेश किया, जो आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य और मार्शल आर्ट दीवार

भवन में कजरी झूला गायन महोत्सव का रविवार को समापन हो गया। भारत भवन के संगीत केंद्र अनहद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को बघेलखंड और बुंदेलखंड की लोक परंपराओं पर आधारित गीतों की इसमें प्रस्तुतियां दी गईं। पहले सत्र में अरविंद कुमार और उनके साथियों ने बघेली लोक गायन की शुरुआत माई सुरसतिया हो से की। इसके बाद उन्होंने कजरी, हिंडोली, सुआ और झूला गीत प्रस्तुत किए। इन गीतों के माध्यम से सावन में विरह, प्रकृति संरक्षण, धान रोपाई और ग्रामीण जीवन की परंपराओं को दिखाया गया। दूसरे सत्र में उर्मिला पांडे और उनके साथी कलाकारों ने बुंदेली लोक धुनों पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने अरे रामा भादो रैन अंधियारी, चरखारी के सुघर सुनार, सावन के भवीन झूला और गई भोरे राजा हिंडोलना झूलन जैसे वर्षा व श्रृंगार रस से भरपूर लोकगीत गाए। वहीं श्रोताओं, भारत भवन में ही रूपाभ श्रृंखला के अंतर्गत आर्ट ओडिसी ग्रुप की ओर से एक विशेष वाटर कलर शो आयोजित किया जा रहा है। इस शो का मुख्य आकर्षण देश के दो जाने माने कलाकार विनय सप्रे और विजय गहरवार हैं। दर्शकों के सामने जल रंगों का जादू बिखेरते हुए लाइव पोर्ट्रेट का व्यवहारिक प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। ये कैनवास पर जल रंगों के माध्यम से चेहरे के भावों को जीवंत करने की कला है। ये आयोजन युवा चित्रकारों के लिए बेहद खास रहा।

और श्रोताओं, आइए अब चलते हैं भारत भवन से दुष्यंत कुमार संग्रहालय। मध्य प्रदेश लेखक संघ की प्रादेशिक लोक भाषा पद्य गद्य गोष्ठी रविवार को दुष्यंत कुमार संग्रहालय में संपन्न हुई। प्रदेश भर से आए रचनाकारों ने बुंदेली, मालवी, निमाड़ी और बघेली जैसी लोक भाषाओं में अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर किशन तिवारी ने कहा कि घर में बच्चों से लोक भाषा में ही संवाद करें। अपनी बुंदेली पंक्ति हो गई भौत ही जीभ चटोरी, बात सुनत नहीं मोरी सुनाई। यही खरगोन के छोगालाल कुमरावत और भोपाल के राजेश तिवारी व सत्यदेव सोनी ने अपनी आंचलिक रचनाओं से समा बांध दिया। उज्जैन की संगीता तलेरा ने सर्द मौसम पर मालवी रचना से लोगों को गुदगुदाया। वहीं ग्वालियर की आशा पांडे और मुरैना के कैलाश गुप्ता सुमन ने बेटियों की विदाई और व्यथा पर मार्मिक प्रस्तुतियां दी। भिंड से सुनील त्रिपाठी निराला, दतिया से विनोद मिश्र सुरमणि और ऋषि श्रृंगारी आचार्य मौजूद रहे। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को याद है कि 26 जुलाई को प्रतिवर्ष हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसी अवसर पर हमारी राजधानी भोपाल में भी कई आयोजन किए गए। मुख्य रूप से शहीद स्मृति गेट और ईदगाह हिल्स स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युवाओं, जनप्रतिनिधियों और एनडीआरएफ के अधिकारियों ने वीर सैनिकों के शौर्य, पराक्रम और उनके बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया।

तो श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों की जो भविष्य में हमारी राजधानी में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो कला एवं संस्कृति को समर्पित संस्था यमन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा भरतनाट्यम नृत्य संध्या नृत्य लता का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम 3 अगस्त को रविंद्र भवन के अंजनी हॉल में होगा। परंपरा, कलात्मकता और भावों के संगम से सजी इस शाम में दर्शक भरतनाट्यम की समृद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के अद्भुत रूपों के साक्षी बनेंगे। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसमें इंदौर और कर्नाटक के कलाकार प्रस्तुति देंगे। जनजातीय संग्रहालय में 29 जुलाई को गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान पर ये महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें इंदौर की डॉक्टर निवेदिता पंड्या और साथियों द्वारा मनमोहक कथक नृत्य समूह नृत्य नाट्य की प्रस्तुति दी जाएगी। कर्नाटक से सिद्धार्थ वेलमन्यु और साथी अपने शास्त्रीय गायन से इस कार्यक्रम में समा बांधेंगे।

तो परिक्रमा में श्रोताओं, अब चलते चलते मौसम का हाल। भोपाल में जुलाई के आखिरी चार दिन अच्छी बारिश के रहने वाले हैं। रविवार को भी दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बौछारें होती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना मानसूनी सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ये सिस्टम सोमवार को ओडिशा बंगाल तट पार करेगा, इसके बाद पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुँच सकता है। इसके असर से 28 से 31 जुलाई के बीच पूरे प्रदेश में बारिश का नया दौर शुरू होने के संकेत हैं। बता दें कि 1 जून से 26 जुलाई तक प्रदेश में 334.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य वर्षा 395.2 मिलीमीटर है। यानी मध्य प्रदेश में अब भी 15% बारिश की कमी बनी हुई है। तो श्रोताओं, ये था आज का मौसम का हाल, और इसके साथ ही करते हैं आपसे एक इल्तिजा कि रहिए स्वस्थ और मस्त, रखिए अपना और अपनों का ध्यान, और दीजिए अनुमति परिक्रमा से आपकी अपनी पूर्वा को। नमस्कार। ट पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित
3: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिंदोस्तान

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: कहाँ घूमा है? दिखे नहीं 2-3 दिन से।
1: अरे ये कृपाल ट्रक लेकर जा रहा था। बोला काका कहानी तो सुनाते ही रहते हो, अब कुछ सैर भी कर लो। सिंहगढ़ की तरफ जाना है, आप भी चलो। छत्रपति शिवाजी का बनाया किला देखकर आएंगे और भवानी माई के दर्शन भी हो जाएंगे। बस फिर क्या था, चले गए घूम आए।
2: ना ना काका, ऐसे नहीं चलेगा। जो कुछ देखा समझा सुना हमको सुनाना पड़ेगा और आगे भी सुनाना पड़ेगा, है ना।
1: अरे वाह वाह वाह वाह, तो जम गई महफिल है। तो अब सुनाते हैं तुम्हें कहानी।
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: सुनो भैया, 17वीं शताब्दी सन 1627 देश के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी महाराष्ट्र की धरती पर उठा एक तूफान। ऐसा तूफान जिसने महाराष्ट्र की छोटी मोटी सल्तनतों को ही नहीं बल्कि विशाल मुगल सल्तनत की विशाल फौजों को भी अपनी राजनीतिक चतुराई और युद्ध कौशल से धूल चटा दी, उनकी चूले हिला दी। हाँ, इस तूफान को हम शिवाजी के नाम से जानते हैं भैया।
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
5: माँ साहेब को शिवा का प्रणाम।
6: शिवा, आयुष्मान भव, सदा विजयी भव।
5: माँ साहेब के आशीर्वाद से तोरणा किले को हमने जीत लिया।
6: अच्छा, शुभ समाचार है।
5: यही समाचार देने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ।
6: पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। दादाजी कूनदेव पधार रहे हैं पुत्र।
5: दादाजी को शिवा का प्रणाम।
7: कल्याण हो, तोरणा पर विजय पर तुम्हें बधाई।
5: आश्चर्य, इतने शीघ्र आप तक समाचार।
7: अरे भाई, अपने शिष्य की हर गतिविधि का ज्ञान रखता है एक अच्छा गुरु, क्या समझे है?
5: निसंदेह आपके अच्छे गुरु होने पर किसे संदेह हो सकता है भला।
7: क्या क्या हासिल हुआ विजय में, या केवल पत्थर का किला भर हाथ आया?
5: शाही खजाने में 2 लाख होड़ थे, वो भी हाथ आए हैं।
7: शाबाश।
5: विचार है कि वहाँ से 5 मील दूर जो पहाड़ की एक और चोटी है उस पर नया किला बनाया जाए।
6: अच्छा विचार है शिवा।
5: माँ साहेब, मुझे इस पूरे क्षेत्र को निजाम शाही और सुल्तानों की हुकूमत से मुक्त कराना है।
6: ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे।
5: दादोजी, जो कुछ भी आपने बचपन से सिखाया है उसकी सौगंध है मुझे, यहाँ यहीं के स्थानीय लोगों का राज्य कायम करना है।
7: बचपन से। जीजा
6: जी,
7: सुना तुम्हारा 20 साल का पुत्र क्या कह रहा है?
5: हाँ दादोजी, तोरणा तो शुरुआत भर है।
7: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र।
1: अरे जानते हो, जुन्नार के नजदीक पहाड़ी किले शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ। बच्चे की सुखद भविष्य के लिए जीजाबाई शिवाई माता की उपासना किया करती थी। माता शिवाई की उपासना का फल मानकर माता जीजाबाई ने बच्चे का नाम रखा शिवाजी। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान के दरबार में छोटे से जागीरदार थे।
6: दादोजी, बीजापुर से संदेश आया है इनका कि शिवा को लेकर मुझे पूना जाना है।
7: हाँ, मेरे पास भी शाहजी ने यही संदेश भेजा है।
6: लेकिन मुझे तो यहाँ माता शिवाई के चरणों में शिवनेरी में ही भला लगता है।
7: सो तो ठीक है, पर शिवा की सुरक्षा और उचित शिक्षा दीक्षा का विचार भी तो करना चाहिए।
6: उसकी शिक्षा दीक्षा तो आपको ही देखनी है दादोजी, फिर शिवनेरी में क्या दिक्कत है?
7: शाहजी भोसले चाहे बीजापुर में रहें सेना के साथ, पर जागीर तो उसकी पूना में ही है ना।
6: ठीक कहा आपने।
7: पूना बड़ी जगह है जहाँ पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो सकती है।
6: ठीक है दादोजी, आप जैसा उचित समझे।
1: शाहजी भोसले एक छोटे से जागीरदार थे। उनकी इच्छा अनुसार दादोजी कोंडदेव शाहजी की पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी को पूना ले आए।
0: फिर काका?
1: फिर दादोजी कोंडदेव स्वयं कुशल प्रशासक होने के साथ शस्त्र विद्या, खासकर तलवार चलाने में अत्यंत निपुण थे। शिवाजी को स्वयं प्रशिक्षण देने के साथ अच्छे प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया। हाँ।
0: अरे वाह।
2: वो मारा मारे मेरे शेर, किस चपलता से बदलता है पेतरा।
6: देखती हूँ गुरु शिष्य पर और शिष्य गुरु पर निछावर निछावर से रहते हैं।
2: जीजा भाई, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है।
6: किस बात का दादो जी?
2: यही कि बचपन से जो सपना शिवा देखता आया है उसे जरूर पूरा करेगा।
6: इस क्षेत्र को सुल्तान शाही से मुक्त कराने का सपना?
2: हाँ, मेरा शिवा उस सपने को पूरा करने के योग्य बन गया है।
6: शिवा छोटा सा था तब से मैं भी यही सपना देखते आई हूँ दादोजी। इनका बीजापुर के सुल्तान के दरबार में दरबारी बनकर रहना मुझे जरा भी नहीं भाता।
5: दादोजी प्रणाम।
2: प्रणाम।
5: तलवार चालन तो ठीक कर रहा हूँ ना दादाजी?
2: तुम बहुत कुशल हो गए हो।
5: शिष्य आखिर किसका हूँ?
6: देखा, मैं ना कह रही थी।
5: क्या कह रही थी आप?
6: गुरु शिष्य की प्रशंसा कर रही थी।
5: माँ साहिब, आप पिताजी और सुल्तान के बारे में कुछ कह रही थी। कक्ष में प्रवेश करते हुए मैंने सुना था।
6: पुत्र, सुल्तान को फर्शी सलाम बजाने वाला तुम्हारे पिता का रूप मुझे बिल्कुल नहीं भाता।
5: मुझे तो अपमानजनक लगता है।
6: ठीक कहा तुमने।
5: आपको याद है बचपन में मुझे पिताजी दरबार ले गए थे?
6: हाँ याद है, और तुम्हें लेकर लौटे तो नाराज थे तुम पर।
5: पिताजी ने फर्शी सलाम किया और मुझे भी यही करने को इशारा किया। मैंने नहीं किया था।
6: इसी बात पर तो नाराज थे तुम्हारे पिताजी।
5: माँ साहिब, मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूँ।
2: सफल हो गए, पर याद रखना मेरी सीख कि वक्त को पहचान कर तनना और झुकना जो सीख गए समझो वही जीत गए।
0: क्या सल्लू, चाय में कितनी शक्कर डालने लगा है तू?
8: हाँ सचमुच सल्लू, तू ध्यान नहीं रखता, शक्कर सस्ती नहीं है।
2: चाय भी तो ठंडी लाया है।
8: हाँ ठीक है,
9: पहले आप कहानी सुनाओ फिर अच्छी चाय पिलाऊंगा।
8: हाँ हाँ तो सुनो, सन 1646 के लगभग बीजापुर राज्य की हालत डावाडोल हो गई थी। उसी का लाभ उठाते हुए सन 1647 में 20 वर्ष की उम्र में पहला सैनिक अभियान कर तोरणा किले को जीत लिया जो बीजापुर राज्य का हिस्सा था। पर विजय की यह प्रसन्नता एक दुखद घटना ने छीन ली। शिवाजी की भविष्य की सफलताएं देखने के लिए दादोजी जीवित न रहे। उस 7 मार्च 1647 को चल बसे।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ काका।
5: दादोजी मेरे लिए पितृतुल्य थे।
6: हाँ शिवा, तेरे सिर पर उनकी छत्र छाया होने से मुझे भी फिक्र नहीं रहती थी।
5: उनके जाने से एकदम शक्तिहीन सा अनुभव कर रहा हूँ।
6: पुत्र, जो आया है वो जाएगा भी। सच्ची श्रद्धांजलि तो उन्हें अपनी वीरता और विजय अभियानों से ही दे सकते हो।
5: जी माँ साहेब, कोंडाना और राजगढ़ हमने ये दोनों किले भी जीत लिए हैं।
6: अच्छी बात है, ये विजय अभियान जारी रहे।
5: कोंडाना दुर्ग के विजय की हमने भारी कीमत चुकाई है तानाजी मालसोरे जैसा साथी खोकर।
6: तानाजी जैसे वीर और विश्वासु साथी का जाना सच में बेहद दुखद है।
5: कोंडाना विजय अभियान का आदेश देते हुए काश हमें पता होता कि।
6: हाँ पुत्र, हमें तो बाद में पता चला कि उसके पुत्र रायबा की शादी की बात चल रही है।
5: हमने तानाजी से कहा भी था कि पहले रायबा की शादी हो जाने दो। बोला पहले कोंडाना का लगन होगा फिर रायबा का।
6: बहुत दुखद हुआ।
5: तानाजी मेरा साथी चला।
8: फिर तानाजी की मृत्यु और किले पर विजय, दोनों समाचार शिवाजी को एक साथ मिले तो शिवाजी के मुंह से यही शब्द निकले, गढ़ आला पण सिंह गेला। तानाजी की स्मृति में शिवाजी ने कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रखा।
5: माँ साहेब प्रणाम।
6: प्रणाम।
5: सेवक से समाचार मिला कि आपने याद किया है।
6: हाँ पुत्र, सुना है तुम्हारे पिताजी को सुल्तान ने बीजापुर में कैद कर लिया है।
5: हरकरा यही समाचार लेकर आया है।
6: फिर क्या विचार किया तुमने?
5: क्या लाभ हुआ स्वामी भक्ति दिखाने का?
6: ये आवेश में आने का समय नहीं है।
5: जानता हूँ माँ साहेब, पर अब सुल्तान हमें उसकी शर्तें मनवाने के लिए विवश करेगा। कायर कहीं का।
6: तुमने अपने साथियों से मंत्रणा की?
5: कर रहा हूँ। सुल्तान मराठों की विजय से चिढ़कर नीच हरकतों पर उतर आया है।
6: तुम्हारे बड़े भाई संभाजी का संदेश आया है कि सुल्तान की फौज ने फरहाद खान की मात खती में बेंगलोर पर धावा बोल दिया है।
5: फौज की दूसरी टुकड़ी देकर फत्ते खान को हम पर धावा करने के लिए भेजा है सुल्तान ने।
8: फिर क्या था, दोनों भाइयों ने मिलकर सुल्तान की फौजों को जो इनकी फौजों से कई गुना बड़ी थी, धूल चटा दी। पर पिता शाहजी को बीजापुर की कैद से छुड़ाने के लिए सुल्तान को कुछ किले सौंप कर संधि करनी पड़ी।
10: महाराज की जय हो।
5: कैसे हो बाजी प्रभु?
10: आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है।
5: कुछ विशेष?
10: कुछ पठान अपनी फौज में भर्ती होना चाहते हैं महाराज।
5: गामाजी नायक से चर्चा की आपने?
10: जी कर ली, परंतु आपकी प्रतीक्षा कर रहा था।
5: ऐसा क्या कहा उन्होंने जिस पर आपको संदेह होने लगे?
10: उनके मत में पठानों को अपनी फौज में शामिल कर लेना चाहिए।
5: तो कीजिए, गामाजी जब बोलते हैं तो बहुत तोल कर बोलते हैं।
10: लेकिन
5: देखिए बाजी प्रभु, पठान एक बहादुर और वफादार कौम होती है। फौज में भर्ती करते समय यही दो बातें देखी जानी चाहिए, ना कि धर्म।
10: जैसी आपकी इच्छा महाराज।
5: आप तो जानते ही हैं बाजी प्रभु कि गामाजी वीर योद्धा के साथ साथ विचारवान भी हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। माँ साहेब को प्रणाम।
10: माँ साहेब को प्रणाम।
6: आयुष्मान भव, विजयी भव, कैसे हो बाजी प्रभु?
10: जी आपकी कृपा है।
6: शिवा, तुम्हारे पिताजी को बीजापुर सुल्तान की कैद से मुक्त कराने में कुछ किले गंवाने पड़े हमें।
5: अफसोस है हमें, परंतु सशर्त संधि के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था।
6: समझते हैं हम, आगे क्या विचार है?
5: सबसे पहले अपने राज्य को सुगठित करना और शक्ति बढ़ाना है। फौज में मावलों की भर्ती हो रही है तेजी से।
10: मावले बेहद मेहनती, भरोसेमंद और जान कुर्बान करने वाले होते हैं।
6: जानते हैं हम।
5: मावलों को इस क्षेत्र की चप्पे चप्पे की जानकारी है। आजकल हम इन साथियों के साथ कोंकण की पहाड़ी भाग का दौरा कर रहे हैं।
10: किलों को पहुंचने वाले गुप्त मार्गों, उसके रक्षकों की सही संख्या आदि की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।
6: परंतु हमारा बस इतना कहना है कि महाराष्ट्र से सुल्तानों निजामों का शासन समाप्त हो।
5: हमारा भी यही सपना है माँ साहेब, हिंदवी स्वराज्य, हम उसी में जुटे हुए हैं।
10: सुल्तानों निजामों की बड़ी सेना का अपनी छोटी सी सेना के साथ मुकाबला करने के लिए नई रणनीति चाहिए महाराज।
5: माँ साहेब, अब हम आज्ञा लेते हैं। प्रणाम।
8: सुनो, पूना जिले के पश्चिमी भाग में एक बड़ा भूभाग उस समय मवाल कहलाता था। यहाँ कोली नाम की एक जनजाति रहती थी। दादा कोंडदेव ने इनके गुणों को पहचाना और इन्हें सेना में भर्ती किया, खेती व्यवसाय आदि करना सिखाया। इन्हीं मवालों में से कई शिवाजी की सेना और राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँचे। राघव अत्रे, कानाजी जेड़े, नेताजी पालकर, तानाजी मालसुरे, बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे ही अफसरों में शामिल थे।
10: किस सोच में डूबे हुए हैं महाराज?
5: पिछले 2-3 वर्षों का समय राज्य को संगठित करने और आर्थिक हालत ठीक करने में बीत गए।
10: बहुत आवश्यक था वो हमारे जैसे छोटे से राज्य के लिए।
5: परंतु अब समय आ गया है कि हम पुनः राज्य के विस्तार की मुहिम में जुट जाएं।
10: हम तो निकल पड़ेंगे जैसे ही आपका आदेश होगा महाराज।
5: कहावत है शुभस्य शीघ्रम।
10: कल से योजना पर काम चालू हो जाएगा।
5: जावली के चंद्र राव की क्या खबर है?
10: हम तो नियमित रूप से उसके पास संधि के लिए दूध भेज रहे हैं, पर व्यर्थ है ये प्रयास।
5: सारे लोग मिलकर सुल्तान शाही और मुगलों को मजबूती से टक्कर दे सकते हैं।
10: इतनी सी बात उस चंद्र राव को समझ नहीं आ रही महाराज।
5: फिर तो एक ही रास्ता बचता है।
10: आप आदेश करें, कब करना है?
5: अभी अभी तो मैंने कहा शुभस्य शीघ्रम।
11: महाराज, हमने मजबूती से घेरा डाल रखा है और रसद भी रोक दी है।
5: बहुत बढ़िया बाजी प्रभु, हमारा प्रयास भी यही रहे कि रक्तपात कम से कम हो।
11: जी, हम भी यही नीति अपना रहे हैं।
5: जावली राज में हमारे अपने अपने ही क्षेत्र के लोग हैं।
11: जी महाराज।
5: इसीलिए एक हठी और मूर्ख राजा के कारण इनका रक्त ना बहे।
11: महाराज, महाराज देखिए, संधि का श्वेत ध्वज।
5: माँ भवानी की
4: जय हो।
0: फिर क्या हुआ काका?
8: फिर बेटा समझाइश को बेअसर देख विवश हो शिवाजी को जावली के राजा चंद्र राव को अपने मार्ग से हटाना पड़ा। जावली पर विजय के फलस्वरूप प्रचुर धनराशि और काफी बड़ा प्रदेश इनके हाथ लग गया।
10: विजय और विस्तार अभियान की शुरुआत काफी अच्छी रही महाराज।
5: काफी बड़े क्षेत्र पर अब हमारा ध्वज लहरा रहा है।
10: रणनीतिक दृष्टि से क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है किला बनवाने के लिए।
5: कुछ दिनों से हम भी इसी विषय पर सोच रहे हैं।
10: जावली से 2 मील दूर की पहाड़ी ठीक रहेगी।
5: एकदम ठीक बात कही आपने बाजी प्रभु।
10: शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू करवा देते हैं।
5: माँ साहेब की और हमारी भी इच्छा है कि यहाँ इष्ट देवी माँ भवानी का मंदिर भी बनवाया जाए।
10: महाराज की इच्छा सर आंखों पर।
8: फिर सल्लू, जावली के पास निर्मित इस किले का नामकरण हुआ प्रतापगढ़। सन 1658 के आसपास मुगल शहजादों में घोर युद्ध छिड़ गया और शिवाजी इस अवसर का लाभ उठाने से भला कैसे चूकते।
5: पश्चिमी घाट का क्षेत्र पार किया जाए, वहां से कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में घुसा जाए।
12: हमारे मामले सैनिकों के लिए पहाड़ी युद्ध सहज है, पर सुल्तान की सेना को पसीने आ जाएंगे।
5: कोंकण से आगे कल्याण, भिवंडी सभी संपन्न क्षेत्र हैं बीजापुर के, उन पर कब्जा किया जाए।
12: उत्तम योजना है।
5: फिर कोलाबा और पुर्तगालियों के कब्जे के क्षेत्र हैं।
12: ये तो एकदम चरणबद्ध योजना है महाराज।
5: उस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण और बेहतर प्रशासन के लिए हमें स्थायी अड्डे की आवश्यकता होगी।
12: इस उद्देश्य के लिए मेरे विचार से आसरी का किला बेहतर होगा।
5: एकदम सही विचार है।
12: पश्चिम घाट की दुर्गमता को देखते हुए हमें तत्काल शुरू हो जाना चाहिए महाराज।
5: हाँ, वरना बरसात में हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएंगी। सबसे पहले माँ साहिब की अनुमति और आशीर्वाद। नई मुहिम पर निकलने से पहले आपकी अनुमति और आशीर्वाद लेने आए हैं।
6: माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही पुत्र के साथ होता है।
5: वही तो असली कवच भी होता है।
6: मुहिम किधर की है पुत्र?
5: कोंकण, कल्याण, भिवंडी और कोलाबा।
6: बहुत दिनों से हमारा भी ध्यान है उस क्षेत्र की ओर, पर
5: क्या माँ साहिब?
6: कल्याण, भिवंडी, बीजापुर के सुल्तान, यही सोचकर।
5: माँ साहिब, हम ये भूल नहीं पाते हैं कि उसने पिताजी को गिरफ्तार किया था।
6: यही तो।
5: माँ साहिब, हमारे हृदय में तब से अपमान की आग धधक रही है।
6: इसे बदले की आग मत बनने देना, क्योंकि वो तबाह करती है।
5: जी माँ साहिब, हम सुल्तान को उसकी दुष्टता और गिरी हुई सोच के लिए सबक सिखाना चाहते हैं।
6: जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटो।
8: राज्य के विस्तार योजना पर लगे थे शिवाजी। पहले पार हुआ पश्चिमी घाट, फिर बारी आई कोंकण की, उसके बाद बीजापुर सुल्तान के दो शहर कल्याण और भिवंडी। उस क्षेत्र में पुर्तगालियों में भी शिवाजी के मुहिम से बदहवासी छाई हुई थी। बदहवासी अकारण ना थी, शिवाजी की फौज ने पुर्तगालियों के काफी गांव कब्जे में ले लिए थे, कोलाबा पर अधिकार कर लिया था।
13: महाराज की जय हो।
5: कहिए नेताजी पालकर, क्या समाचार है?
13: अति उत्तम, निरंतर मिलती विजय से हमारी फौज उत्साह से भरी हुई है।
5: कल्याण की खाड़ी देखी है आपने?
13: हाँ हाँ, बिल्कुल देखी है।
5: सेना की दृष्टि से ये एक नया विचार मन में आया है।
13: कैसा विचार महाराज?
5: थल सेना हमारे पास है, क्यों ना जल सेना बनाई जाए।
13: एकदम ठीक होगा।
5: जहाज बनाने वाले कारीगरों को एकत्रित करो।
8: फिर शिवाजी की उत्तरोत्तर प्रगति और कल्याण, भिवंडी जैसे शहरों के हाथ से निकल जाने से बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह अंगारों पर लौट रहा था। उसने अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी को परास्त करने पकड़ने भेजा।
14: महाराज, अफजल खां आपको कैद करने के लिए बीजापुर से चल पड़ा है।
5: उसकी फौज का आकार हमारी फौज से बहुत बड़ा है, आमने सामने की लड़ाई हमारे लिए भारी पड़ेगी।
13: वो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है।
5: दरअसल वो हमें उकसा कर आमने सामने की लड़ाई में उलझाना चाहता है।
13: समझा, तो ये है चाल।
14: कुछ भी हो जाए, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए।
5: बिल्कुल ठीक कहा बाजी प्रभु। एक काम करिए, दूध के हाथ उसके पास संधि का प्रस्ताव भेजिए।
13: अफजल खां के पास संधि का प्रस्ताव?
5: संधि वार्ता स्थल के पास जंगलों झाड़ियों में हमारे सैनिक छुपे रहे और इशारा पाकर टूट पड़े।
14: महाराज, लेकिन इसमें आपके प्राणों का खतरा है।
5: चिंता मत कीजिए, माँ भवानी की शक्ति है हमारे साथ।
8: उसके बाद अफजल खां को संधि प्रस्ताव भेजा गया, जिसे पाकर ये मानते हुए कि शिवाजी डर गया, अफजल खां बहुत प्रसन्न हुआ। नियत तिथि को शिवाजी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। उसने शिवाजी को गले लगाकर धोखे से कटार से वार किया, जो शिवाजी के वस्त्रों के नीचे पहने जिरा बख्तर के कारण व्यर्थ गया। फिर क्या था, शिवाजी ने वस्त्रों में छुपाकर ले गए कटार से फुर्ती से खान का पेट फाट डाला।
14: आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा शिवाजी।
15: अफजल, मैं पता था तुम क्या हो।
14: उसके बाद काका?
8: इसके बाद इशारा पाते ही जंगलों झाड़ियों में छुपे बैठे शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खान के साथ आए रक्षकों को आनन फानन में परास्त कर दिया।
5: आदिल शाह को पक्का पूरा सबक सिखाना है, ताकि दोबारा आंख उठाकर इधर देखने की हिम्मत भी ना करें।
14: ऐसा ही होगा महाराज।
8: पन्हाला, शिवाजी के दुर्गम किलों में से एक। शिवाजी अपने 8,000 सैनिकों के साथ उस समय पन्हाला दुर्ग में थे। आदिल शाह ने इस बार सेना नायक सिद्दी जौहर को बहुत बड़ी फौज के साथ शिवाजी पर हमला करने भेजा। सिद्दी जौहर ने फौज के साथ पन्हाला दुर्ग की घेराबंदी करके रसद पानी रोक दिया।
5: आदिल शाही फौज की घेराबंदी टूटती नजर आ रही है।
10: रसद कले में आने से रोक दी गई है।
5: रसद की क्या स्थिति है?
10: अभी कुछ दिन तक चल जाए, इतना अनाज तो है हमारे पास।
5: तोपों के हमले और भारी पत्थरों की बरसात को और बढ़ा दो।
10: जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
5: इस समय नेताजी पालकर का यहाँ से दूर होना खटक रहा है।
10: लेकिन समाचार है महाराज कि उन मोर्चों पर नेताजी ने सुल्तान की फौजों को काफी नुकसान पहुँचाया है।
5: बहुत अच्छा।
8: सिद्दी जौहर ने अंग्रेज कमांडर रेविंगटन से हाथ मिलाया और अंग्रेजी फौज से भारी तोपे हासिल की। फिर सुल्तान के किले को घेरे बैठी फौज के हिस्सों पर शिवाजी के सिपाही छापामार कार्रवाई जारी रखे हुए थे, पर कुछ खास परिणाम नहीं निकल पा रहा था। ऐसी ही एक छापामार कार्रवाई में शिवाजी के फौज के त्र्यंबक भास्कर और कोंडाजी फरजंद नाम के सिपाहियों ने आदिल शाही खेमे में धोखे से घुसकर उनकी तोपों को नष्ट कर डाला। फिर क्या था, सिद्दी जौहर ने मूसलाधार बरसात के बावजूद घेरा ना उठाया, बल्कि तोपों के नष्ट किए जाने से आग बबूला होकर उसने घेरा और कस दिया।
10: महाराज, बरसात ने हमारी कठिनाई और बढ़ा दी। रसद धीमे धीमे कम होते बहुत कम बच गई है।
5: नेताजी पालकर लौट तो आए हैं, पर किले तक उनका पहुंच पाना कठिन है।
10: इस बार तो लगता है सुल्तान ने खतरनाक इरादों से भेजा है फौज को।
5: एक चाल पर विचार कर रहा हूँ कुछ दिनों से।
10: कैसी चाल महाराज?
5: ये संदेश किसी तरह सिद्दी जौहर तक पहुंच सके कि हम हिम्मत हार बैठे हैं और किसी भी क्षण हथियार डाल सकते हैं।
10: ठीक है, हो जाएगा महाराज।
8: इस अफवाह का अपेक्षित असर हुआ, घेराबंदी में ढिलाई आ गई। इसका लाभ उठाते हुए शिवाजी अपने सैनिकों के साथ घनी अंधेरी रात में विशालगढ़ किले की ओर कूच कर गए। किले के दरवाजे खुले देख सुल्तान की फौज किले में घुस गई और उसने कुछ सिपाहियों के साथ शिवाजी की वेशभूषा में नकली शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। फौज को बाद में पता चला कि उसने सिपाहियों की भेष में सामान्य नागरिकों और शिवाजी के भेष में उनके नाई शिव काशित को गिरफ्तार किया है, तो फौज ने शिवाजी और उनकी फौज का पीछा किया।
10: महाराज, सुल्तान की फौज हमसे बहुत दूर नहीं रह गई है।
5: मुझे लगता है सामने कोई दर्रा है।
10: महाराज, इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे हर पत्थर कंकर से परिचित हूँ मैं। आपने ठीक कहा, सामने घोड़ा खिंड दर्रा है।
5: हम तेजी से यह दर्रा पार कर जाएंगे, पर सुल्तान के लाव लश्कर के लिए यह आसान ना होगा।
10: महाराज, मैं अपने विश्वस्त 300 साथियों को लेकर दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौजों को रोकता हूँ।
5: यह आत्मघाती कदम होगा बाजी प्रभु।
10: जानता हूँ और वादा करता हूँ महाराज, आपके विशालगढ़ सुरक्षित पहुँचने का संकेत मिले बिना फौज को आगे ना बढ़ने दूंगा।
5: लेकिन बाजी प्रभु।
10: महाराज, आप विलंब मत कीजिए, सुल्तान की फौज पल पल नजदीक आती जा रही है।
5: विदा लेता हूँ, अपना और सैनिकों का ख्याल रखना।
10: जी महाराज।
5: जय भवानी,
10: जय भवानी।
8: फिर बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 सिपाहियों के साथ दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौज को रोके हुए तब तक डटे रहे जब तक विशालगढ़ के किले से तोप चलने के रूप में शिवाजी के किले में सुरक्षित पहुंच जाने का संकेत नहीं मिल गया। और संकेत मिलते ही छुपकर वार कर रहे मराठा सैनिक सुल्तान की फौजों से आमने सामने की लड़ाई में कूद पड़े। घमासान युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 वीरों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए, पर सुल्तान की फौज के 1300 सिपाहियों को मारने के बाद में बाजी प्रभु और उनके वीर सिपाहियों की स्मृति में घोड़ा खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड किया गया।
13: महाराज, औरंगजेब का सरदार शारस्ता खान पूना में डेरा डाले बैठा है और पूना में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोक दिया गया है।
5: कोई बात नहीं, हम प्रवेश करेंगे।
8: बेटा सल्लू, शिवाजी ने जो कहा कर दिखाया। बाराती बनकर महल में जा घुसे शाइस्ता खान जहां ठहरा था। शाइस्ता खान को पूना से जान बचाकर भागना पड़ा। एक हाथ की तीन उंगलियां शिवाजी की तलवार को भेंट चढ़ाकर। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। आगरा बुलाकर शिवाजी और उनके बेटे को धोखे से कैद करने और मिठाई के टोकरों में छुपकर उन दोनों के कैद से निकल भागने की कहानियां मशहूर है। तो भाइयों, शिवाजी के राज में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। माता जीजाबाई के अनन्य भक्त शिवाजी के राज में महिलाओं का बहुत सम्मान था। न्याय व्यवस्था अति उत्तम थी। महाराष्ट्र का ये शेर राष्ट्र के इतिहास को निर्णायक मोड़ देने वाला ये महान राजा 1680 में मात्र 53 वर्ष की उम्र में ये नश्वर शरीर छोड़ गया।
16: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदोस्तां हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
3: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका दोस्त विजयकांत नायक।
3: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति।
2: और आज के हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में आज हम बात करेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित महान लेखिका महाश्वेता देवी पर। दोस्तों, वह केवल कलम नहीं थी, वह क्रांति की धार थी। कागज पर उकेरे अक्षर नहीं, पीड़ितों की अनसुनी पुकार थी। उसने महलों की खामोशी नहीं लिखी, झोपड़ियों की चीख को स्वर दिया। जिन्हें इतिहास ने हाशिए पर छोड़ा, उनके नाम को अमर कर दिया। न सत्ता से भयभीत हुई, न सम्मानों की लालसा रखी। सच की कीमत क्या होती है, यह उसने जीवन भर चुकाई। फिर भी उसकी कलम न थकी।
3: मजदूरों के पसीनों की कथा उसकी रचनाएं कहानियां नहीं, वे जीती जागती व्यथा थी। जब शब्द बाजार में बिकने लगे, उसने उन्हें जन आंदोलन बनाया। जब साहित्य केवल सौंदर्य रह गया, उसने उन्हें संघर्ष से सजाया।
2: कभी कभी शब्द केवल अक्षर नहीं होते, वे इतिहास की धड़कन बन जाते हैं। कभी कभी वे कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर लिखे जाते हैं, खून पसीने और प्रतिरोध से। और ऐसी ही एक लेखिका थी जिनकी कलम ने सत्ता से सवाल किए और जिनके शब्दों ने उन आवाजों को भाषा दी जो सदियों से चुप कर दी गई थीं। ये कहानी है महाश्वेता देवी की।
3: महाश्वेता देवी का जीवन और लेखन जिस संवेदनशील चेतना से जन्म लेता है, उसकी जड़ें उनकी प्रारंभिक जीवन में गहराई से समाई हुई हैं। उनका जन्म सोमवार 14 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के ढाका नगर में हुआ। वे एक ऐसे साहित्यिक वातावरण में पढ़ी लिखी जहां शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं थे बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का स्वर थे। उनके पिता मनीष घटक प्रतिष्ठित कवि एवं उपन्यासकार थे और माता धरित्री देवी लेखिका होने के साथ साथ सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थीं। इस प्रकार साहित्य और समाज चिंतन उनके जीवन का स्वाभाविक संस्कार बना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई, किंतु भारत विभाजन के समय किशोरावस्था में ही उन्हें विस्थापन के पीड़ापूर्ण अनुभव से गुजरना पड़ा। जब उनका परिवार पश्चिम बंगाल आकर बस गया, ये परिवर्तन केवल स्थान का नहीं था बल्कि स्मृति, पहचान और संवेदना का भी था। यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन में बार बार प्रतिध्वनित हुआ और उन्हें उन आवाजों की ओर मोड़ा गया जिन्हें इतिहास अक्सर अनदेखा कर देता है।
2: बचपन में जब महाश्वेता ने साफ साफ बोलना शुरू किया तो उनका एक अनोखा स्वभाव सामने आया। जो उन्हें जिस नाम से पुकारता, वे भी उसी नाम से उसे पुकारती। पिता उन्हें प्यार से तुतुल कहते थे और पिता उनके लिए जीवन भर तुतुल ही रहे। यह नाम केवल संबोधन नहीं था बल्कि एक गहरे भावनात्मक रिश्ते का प्रतीक था जो जीवन भर उनके भीतर जीवित रहा। 4 वर्ष की उम्र लगभग 1930 में ही महाश्वेता बांग्ला पढ़ना लिखना सीख गई थी। उनका दाखिला ढाका के इंडियन मोंटेसरी स्कूल में करवाया गया। पिता की नौकरी के कारण बार बार तबादले होते रहे, ढाका, मयमनसिंह, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर और फरीदपुर। इन यात्राओं ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें विविध समाज, अलग अलग मनुष्यों और जीवन की असमानताओं से परिचित करवा दिया। ढाका के जिंदा बहार लेन में ननिहाल और नतून भोरेंगा में पिता का गांव, इन दोनों के बीच उनका बचपन आवाजाही में ही बीतता रहा। दुर्गा पूजा की छुट्टियां प्रायः ननिहाल में ही गुजरती थीं।
3: सन 1935 में पिता का तबादला मेदिनीपुर हुआ और महाश्वेता का दाखिला वहां के मिशन स्कूल में कराया गया, लेकिन ये ठहराव अल्पकालिक था। 1936 के आसपास ये तय हुआ कि उन्हें शांति निकेतन भेजा जाए। तब वे मात्र 10 वर्ष की थीं। शांति निकेतन जाने की तैयारी, लाल किनारे की साड़ी, बिस्तर, लोटा, ग्लास, सब कुछ उनके जीवन के नए अध्याय का संकेत था। शांति निकेतन में उन्हें प्रकृति की गोद मिली, खुले आकाश, सुंदर भवन, विशाल पुस्तकालय और सृजनशील वातावरण। यहाँ अनुशासन भी था और स्वतंत्रता भी। दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि सुबह से रात तक छात्र सीखने और रचने में डूबे रहते। सन 1937 में एक अविस्मरणीय क्षण आया जब स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला की कक्षा ली। 7वीं कक्षा की छात्रा महाश्वेता के लिए ये जीवन भर का स्मृति क्षण बन गया। इससे पहले सन 1936 में बांकिम शतवार्षिकी समारोह में उन्होंने रविंद्रनाथ का भाषण भी सुना था। शांति निकेतन में हिंदी उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाते थे, जिन्हें सभी छोटा पंडित कहते थे। ये शिक्षक केवल अध्यापक नहीं बल्कि वैचारिक आधार स्तंभ थे।
2: 1939 में महाश्वेता को शांति निकेतन छोड़कर कलकत्ता लौटना पड़ा। जितना वे वहां जाते समय रोई थीं, उससे अधिक लौटते समय रोई। उसी वर्ष उनका दाखिला कलकत्ता के बेलतला बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा में हुआ और इसी समय उनके काका प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक घर आकर रहने लगे। कला, सिनेमा और विचार घर के वातावरण में और गहराते चले गए। 1939 में ही उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। अपर्णा सेन उनकी शिक्षिका थीं और उनके भाई खगेंद्र नाथ सेन रंग मशाल पत्रिका निकालते थे। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक छेले बेला पर कुछ लिखने को कहा। महाश्वेता ने लिखा और वह रंग मशाल में छप गया। यही उनका पहला प्रकाशित लेखन था। स्कूली जीवन में ही उन्होंने राजलक्ष्मी और धीरेश भट्टाचार्य के साथ मिलकर एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली, छन्न छाड़ा।
3: नानी, दादी और माँ तीनों ने उन्हें अच्छे साहित्य का संस्कार दिया। दादी पढ़ी हुई किताबों पर सवाल करती, माँ देश प्रेम और इतिहास की पुस्तकें देती और कहती, अभी ये पढ़ना जरूरी है। पिता की समृद्ध लाइब्रेरी से उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही हेमचंद्र, बंकिम, नवीन, रंगलाल जैसे साहित्यकार पढ़ डाले। नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकों की रचनाएं भी उन्होंने पिता की लाइब्रेरी से ही पढ़ी। 1939 से 1944 के बीच पिता ने कलकत्ता में 7 बार घर बदले। इसी उथल पुथल के बीच 1942 में महाश्वेता ने घर के काम संभालते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की। वही वर्ष था जब भारत छोड़ो आंदोलन ने उनके किशोर मन को भीतर तक झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से अंग्रेजी में स्नातक किया और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए। शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता बनी। 1984 में उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर स्वयं को पूरी तरह लेखन और सामाजिक संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया।
2: किशोरावस्था में ही महाश्वेता देवी के कंधों पर पारिवारिक दायित्व आ गए थे और वे उन्हें निभाने के प्रति हमेशा सजग रहीं। माँ धरित्री देवी के जीवन के अंतिम वर्षों में जब घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी, तब महाश्वेता ने पुरानी सिलाई मशीन चलाकर कपड़ों की सिलाई की। यह श्रम केवल रोजी रोटी का साधन नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की पहली पाठशाला भी थी, जहां शब्दों की दुनिया से पहले जीवन का कठोर यथार्थ खड़ा था। 1944 में उन्होंने कलकत्ता के आशुतोष कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय पारिवारिक दायित्वों का कुछ भार छोटी बहन मितुल ने संभाला। इस राहत ने महाश्वेता को फिर से शिक्षा की ओर लौटने का अवसर दिया और वे दोबारा शांति निकेतन पहुंची, इस बार कॉलेज की पढ़ाई के लिए। शांति निकेतन अब उनके लिए केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक सपना था।
3: इसी दौर में शांति निकेतन में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका देश के संपादक सागरमय घोष का आना जाना होता था। उन्होंने महाश्वेता की प्रतिभा को पहचाना और देश में लिखने को कहा। तब महाश्वेता बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थीं। उसी समय उनकी 3 कहानियां देश में प्रकाशित हुईं। हर कहानी के लिए उन्हें 10 रुपए का पारिश्रमिक मिला। ये छोटी सी रकम नहीं थी।

0: जन भट्टाचार्य से हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि विचारधाराओं और संघर्षों का संगम था। विवाह के एक वर्ष बाद 1948 में महाश्वेता ने पदमपुकुर इंस्टीट्यूशन में अध्यापन कर परिवार का खर्च संभाला। उसी वर्ष उनके पुत्र नवारुण भट्टाचार्य का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वयं एक महत्वपूर्ण कवि बने। संघर्ष के इन दिनों ने ही लेखिका महाश्वेता को तैयार किया। उस दौरान उन्होंने खूब रचनाएं पढ़ी, विश्व के मशहूर लेखकों चिंतकों की रचनाएं, एलिया एरेनबर्ग, एलेक्सी टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, चेखव और रूस के कई अन्य लेखकों की पुस्तकें भी पढ़ी। उसी समय विजन भट्टाचार्य को एक हिंदी फिल्म की कहानी लिखने के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। उनके साथ महाश्वेता भी गईं। मुंबई में महाश्वेता के बड़े मामा सचिन चौधरी थे। मामा के यहाँ ही महाश्वेता ने पढ़ा वीडी सावरकर 1857। उससे इतनी प्रभावित हुई कि उनके मन में इसी तरह का कुछ लिखने का विचार आया। तय किया कि झांसी की रानी पर वे किताब लिखेंगी। उन पर जितनी भी किताबें थीं सब जुटाकर पढ़ीं। मुंबई से आने के बाद ट्यूशन वगैरह तो चल रहा था, लेखन को भी जीविका का साधन बनाने का विचार दृढ़ होता गया। 1950 के दशक से महाश्वेता देवी की साहित्यिक यात्रा स्पष्ट रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाती है।
1: उनकी पहली पुस्तक झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई, जिसने उनके दीर्घ और सशक्त साहित्यिक जीवन की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के भतीजे गोविंद चिंतामणि से पत्राचार शुरू किया और उपलब्ध सामग्री पढ़ते हुए उत्साह में लगभग 400 पृष्ठ लिख भी डाले। लेकिन जल्दी ही उन्हें लगा कि ये लेखन अभी अधूरा है, सच्चाई को और गहराई से जानने की जरूरत महसूस हुई। इसी तलाश में वे 1954 में आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद 6 वर्षीय पुत्र नवारुण और पति को कोलकाता में छोड़कर अकेले झांसी पहुंची। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को पैरों से नापा, लोकगीत संकलित किए और वृंदावन लाल वर्मा से भी मार्गदर्शन लिया। लौटकर उन्होंने नए सिरे से झांसी की रानी लिखी, जो पहले देश पत्रिका में धारावाहिक रूप में छपी और फिर 1956 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यही उनकी पहली कृति बनी। इसके बाद 1957 में नटी और फिर जली थी अग्निशिखा आई। तीनों ही 1857 के महासंग्राम और रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य शक्ति को केंद्र में रखती हैं।
0: 60 का दशक महाश्वेता देवी के निजी जीवन में गहरे उतार चढ़ाव लेकर आया। 1962 में उनका विवाह विजन भट्टाचार्य से विच्छेद हो गया। बाद में असीत गुप्त से उनका दूसरा विवाह हुआ, किंतु यह संबंध भी 1975 में समाप्त हो गया। इन टूटनों के बाद भी महाश्वेता ने स्वयं को कभी बिखर नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन को लेखन, सामाजिक प्रतिबद्धता, कार्य में और अधिक दृढ़ता से समर्पित कर दिया। यह विशेष रूप से जानने योग्य है कि निजी जीवन की इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद महाश्वेता कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई। बेटी, बहन, पत्नी, माँ और बाद में दादी के रूप में उन्होंने हर भूमिका को पूरी निष्ठा और गरिमा के साथ निभाया। वे आरंभ से ही एक स्वतंत्र चेतना वाली स्त्री थीं। इसीलिए 2 बार विवाह विच्छेद होने के बावजूद उनके व्यक्तित्व और सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। वे वही महाश्वेता रहीं, स्वाभिमानी, सृजनशील और निर्भीक।
1: सबसे मानवीय बात ये रही कि संबंध विच्छेद के बाद भी आपसी सम्मान बना रहा। ना विजन भट्टाचार्य ने कभी महाश्वेता के विरुद्ध कुछ कहा, ना महाश्वेता ने अपने किसी पूर्व पति के प्रति कटुता दिखाई। विजन भट्टाचार्य के निधन के समय महाश्वेता पूरे दिन वहां उपस्थित रहीं और उनकी उपस्थिति को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया गया। ये उनके व्यक्तित्व की उसी गरिमा और संवेदनशीलता का प्रमाण था जो उनके जीवन और लेखन दोनों की मूल आत्मा रही। उपन्यास अरण्य अधिकार महाश्वेता देवी की सामाजिक और साहित्यिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। इस कृति में उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह को केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि समकालीन सामंती शोषण के प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया। 1974 में फिल्म निर्माता शांति चौधरी के आग्रह पर बिरसा मुंडा पर लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए महाश्वेता ने दक्षिण बिहार की यात्रा की और गहन शोध के बाद 1979 में अरण्य अधिकार लिखा। इसी वर्ष इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
0: महाश्वेता देवी का रचनात्मक संसार अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। उनकी पहली प्रकाशित कृति झांसी की रानी 1956 थी, जिसे लिखने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वे एक कथाकार बनेंगी। उनका पहला उपन्यास नटी 1957 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जली थी अग्निशिखा, अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ, मर्डरर की माँ, मातृ छवि जैसी अनेक महत्वपूर्ण कृतियां आईं। उन्होंने लघु कथाएं, कहानियां, उपन्यास, आत्मकथात्मक लेखन, आलेख, यात्रा संस्मरण और नाटक सभी विधाओं में लिखा। 4 दशकों में उनके 20 से अधिक कहानी संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हुए। उनकी रचनाओं पर संघर्ष, रुदाली, 1084 की माँ और माटी माई जैसी चर्चित फिल्में भी बनी। समग्र रूप से महाश्वेता देवी का साहित्य हाशिए के समाज की आवाज, संघर्ष और मानवीय गरिमा का जीवंत दस्तावेज है।
1: महाश्वेता देवी का रचनात्मक संसार विषय, विधा और संवेदना तीनों स्तरों पर अत्यंत विस्तृत और गहन है। उन्होंने लघु कथाओं में मीलू के लिए और मास्टर साहब जैसी रचनाओं के माध्यम से साधारण जीवन के भीतर छिपे संघर्ष को स्वर दिया। उनकी कहानियां स्वाहा, रिपोर्टर और वांटेड सत्ता, हिंसा और सामाजिक पाखंड को बेनकाब करती हैं। उपन्यास में नटी, अग्निगर्भ, झांसी की रानी, मर्डरर की माँ, 1084 की माँ, मातृ छवि, जली थी अग्निशिखा और जकड़न जैसे शीर्षक उनके साहित्य की वैचारिक दृढ़ता और मानवीय करुणा के प्रमाण हैं। उनकी आत्मकथात्मक कृतियाँ उम्र कैद और अक्लांत कौरव आत्मसंघर्ष और सामाजिक विवेक की गवाही देती हैं। आलेखों, यात्रा संस्मरणों और नाटकों टेरोडैक्टिल और दौलती में भी उनका यही सरोकार दिखाई देता है।
0: इन रचनाओं की कथा वस्तु में ऐतिहासिक संघर्ष और समकालीन राजनीति का सघन ताना बाना है। शालगिरह की पुकार पर और चोटी मुंडा और उसका तीर में संथाल और मुंडा समाज का प्रतिरोध जीवित हो उठता है। अमृत संचय और अग्निगर्भ में 1857 से लेकर स्वतंत्र भारत तक फैली शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध उभरती चेतना को उन्होंने निर्भीक स्वर दिया। महाश्वेता देवी की रचनाओं में इतिहास, मिथक और समकालीन राजनीति एक दूसरे में घुलकर शोषित मनुष्य की पीड़ा और प्रतिरोध को स्वर देती हैं। ऑपरेशन बसाई टुडू और जगमोहन की मृत्यु में उनका व्यक्तिगत और सामाजिक संघर्ष संचित है।
1: अग्निगर्भ किसान मजदूरों के शोषण, बटाईदारी जैसी अमानवीय प्रथाओं और उसकी विरुद्ध उठे प्रतिरोध की कथा है, जहां सामाजिक न्याय के लिए दिया गया बलिदान केंद्र में है। प्रेम तारा प्रेम कथा होते हुए भी सिपाही विद्रोह की ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़ी है, जबकि अक्लांत कौरव संक्षिप्त होकर भी तीखी और विस्फोटक सत्य उद्घाटित करती है। नील छवि उपभोक्तावादी समाज, ड्रग्स और नैतिक पतन की विडंबनाओं को उजागर करता है। वही कवि वैद्य घोटी गईनेर जीवन और मृत्यु में निचली जाति के युवक के मानवाधिकार संघर्ष को सशक्त वाणी मिली है। संक्षेप में महाश्वेता देवी का साहित्य शोषण के विरुद्ध संघर्ष, प्रतिरोध की चेतना और मानवीय गरिमा का सशक्त दस्तावेज है।
0: उनकी लेखनी में सामाजिक यथार्थवाद का एक गहरा तत्व मौजूद है, जिसे वे अपने गहन शोध और समुदायों के साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से विकसित करती थी। उनके लेखन में उन्होंने समाज के विभिन्न तबकों के जीवन को बड़ी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया, जिससे पाठकों को उनके संघर्षों और आकांक्षाओं की गहरी समझ मिलती है। उनकी लेखनी ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा और सम्मान दिलवाया। उनकी लिखी कुछ प्रमुख कृतियां और किस्से उनकी गहरी सामाजिक समझ और साहित्यिक कौशल का प्रमाण हैं। उनकी प्रमुख कृतियां समाज के विभिन्न वर्गों की जीवनी और संघर्षों को उजागर करती हैं। 1084 की माँ में महाश्वेता ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को एक माँ की दृष्टि से देखा है। यह उपन्यास सुजाता के दुख और संघर्ष की कथा है, जिसका बेटा व्रती आंदोलन में शामिल होकर पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। माँ के शोक और न्याय की तलाश के माध्यम से लेखिका ने समकालीन राजनीतिक सामाजिक यथार्थ पर संवेदनशील और सशक्त टिप्पणी की है।
1: रुदाली एक ऐसी स्त्री की कथा है जो पेशेवर रूप से शोक व्यक्त करती है। इस रचना के माध्यम से महाश्वेता देवी ने महिलाओं की आर्थिक विवशता, सामाजिक विषमता और उनके संघर्षों को उघाड़ा है। रुदाली स्त्री जीवन की पीड़ा के साथ साथ उसकी जिजीविषा और आत्मसम्मान की सशक्त कहानी है। उनकी इस अद्भुत और मार्मिक कथा पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक कल्पना लाजमी ने फिल्म बनाई है। जनजातीय समुदायों के बीच रहकर किए गए गहन शोध ने महाश्वेता देवी के लेखन को दिशा दी। झारखंड में आदिवासियों के साथ बिताए समय और उनके भूमि अधिकार संघर्षों ने उन्हें अरंडियर अधिकार लिखने की प्रेरणा दी। ये उपन्यास जनजातीय समाज के जीवन, संस्कृति और वन अधिकारों की लड़ाइयों को संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता है तथा शोषण और असमानता के विरुद्ध एक सशक्त साहित्यिक आवाज बनकर उभरता है।
0: सामाजिक न्याय के प्रति महाश्वेता देवी की प्रतिबद्धता उनके विचारों और लेखन दोनों में स्पष्ट दिखाई देती है। एक सामाजिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, असली शिक्षा वह है जो आपको मुक्त करती है। यह कथन उनके विश्वास को प्रकट करता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक जकड़नों से आजाद कर सचेत नागरिक बनाना है। अपने लेखन की प्रेरणा के विषय में वे कहती थीं कि उनकी कहानियां उन्हीं लोगों के जीवन से जन्म लेती हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है। उनके जीवन और साहित्य से यह संदेश मिलता है कि साहित्य मात्र कल्पना नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम है।
1: महाश्वेता देवी का कार्यक्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाके रहे, विशेष रूप से लोड़ा, सबरा और पलामू क्षेत्र के जनजातियों की दयनीय स्थिति, खासकर महिलाओं की पीड़ा ने उन्हें गहराई से व्यथित किया। इस असमानता को बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने 1970 के बाद व्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप की राह चुनी। पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीतियों और तथा कथित विकास मॉडल के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और जनजातीय अधिकारों की सशक्त आवाज बनी।
0: 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद महाश्वेता देवी का जीवन विश्राम नहीं बल्कि संघर्ष और सृजन का नया अध्याय बना। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से लेखन और सामाजिक आंदोलनों को समर्पित कर दिया। इस दौर में उनकी रचनाएं जनजातीय जीवन, स्त्री शोषण, राज्य हिंसा और विकास के नाम पर होने वाले विस्थापन के विरुद्ध तीखे प्रतिरोध की आवाज बनी। वे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में जाकर जमीन और अधिकारों की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं। आर्थिक, स्वास्थ्य और सत्ता के दबावों के बावजूद उन्होंने सादा जीवन जिया और शोषितों के पक्ष में अडिग रहीं, यह सिद्ध करते हुए कि सच्चा साहित्यकार कभी रिटायर नहीं होता।
1: महाश्वेता देवी की कहानियां और उपन्यास सदियों से हाशिए पर धकेली गईं। जनजातीय अस्मिता की सशक्त महागाथाएं हैं। उन्होंने प्रेमचंद, तारा शंकर और मानिक बंदोपाध्याय की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए किसान या श्रमिक ही नहीं बल्कि जनजातीय विद्रोही नायकों को साहित्य के केंद्र में रखा। उनकी कथाओं में जनजाति केवल पीड़ित नहीं बल्कि शोषण दोहन और सत्ता के विरुद्ध संघर्षरत नायक हैं। महाश्वेता का मानना था कि साहित्य का मूल्यांकन केवल भाषा और शिल्प से नहीं बल्कि इतिहास और समय के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। इसलिए वे लोक कथाओं मिथकों और पुराकथाओं को वर्तमान से जोड़कर लिखती हैं जहां जाति जमीन जंगल और सत्ता के सवालों के बीच निम्न वर्ग के शोषण का सतत इतिहास बहता है।
0: जनजातियों और बंधुआ मजदूरों के बीच काम करते हुए महाश्वेता देवी ने साहित्य के साथ वैकल्पिक पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। पलामू के बंधुआ मजदूरों के बीच काम करते हुए महाश्वेता ने कई तथ्य एकत्रित किए थे और उसी के आधार पर निर्मल घोष के साथ मिलकर उन्होंने भारत के बंधुआ मजदूर नामक पुस्तक लिखी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जनजातीय अंचलों के सुख दुख के बारे में उन्होंने समय समय पर जो लिखा वे भी संकलित होकर पुस्तक के रूप में छाप चुकी हैं, डस्ट ऑन रोड। महाश्वेता की टिप्पणियों के इस संकलन को मैत्रेयी घटक महाश्वेता के छोटे भाई ने संपादित किया है। 1980 में उन्होंने पत्रिका वर्तिका का संपादन शुरू किया था। उसके पहले उनके पिता मनीष घटक उसे संपादित करते थे। पिता का 1979 में निधन हो गया तो महाश्वेता ने पत्रिका का चरित्र ही बदल डाला। वर्तिका एक ऐसा मंच बन गया जिसमें छोटे किसान खेती मजदूर जनजातीय वर्ग के लोग कारखानों में काम करने वाले मजदूर रिक्शा चालक और अपनी समस्याओं और जीवन के बारे में लिखते। वर्तिका में मेदिनीपुर के लोधा और पुरुलिया के खेड़िया शबर जनजातीय वर्ग के लोगों ने बहुत कुछ लिखा। इसके जरिए जनजातीय वर्ग के लोगों ने जीवन में पहली बार किसी प्रकाशन में लिखा।
1: हमने उनके साहित्य की यात्रा में बीच बीच में उनकी पुस्तकों को मिले सम्मानों का उल्लेख किया है लेकिन अब अंत में उनके संपूर्ण पुरस्कारों और सार्वजनिक सम्मान की बात करना जरूरी है क्योंकि ये सम्मान केवल एक लेखिका को नहीं बल्कि उस संघर्षशील चेतना को मिले थे जो जीवन भर शोषितों के साथ खड़ी रही। महाश्वेता देवी को 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला जो उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदान की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति था। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री, 1996 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंततः 2006 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी लेखनी की शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों का प्रमाण है। उनके जीवन संघर्ष और विचारों की गूंज 2018 में भी सुनाई दी जब 14 जनवरी उनके जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उस डूडल में साड़ी पहने लिखती हुई महाश्वेता देवी के पीछे अलग अलग समाज संस्कृतियों और चेहरों की उपस्थिति ये संकेत थी कि वे केवल साहित्यकार नहीं बल्कि हर उस आवाज की प्रतिनिधि थीं जिसे समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था।
0: अगर हम उनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो उन्होंने 20 से अधिक कहानी संग्रह और लगभग 100 उपन्यास लिखे जिनमें अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ और रुदाली शामिल हैं। उनकी सामाजिक सक्रियता की दृष्टि से अगर हम उन्हें देखें तो 1984 में लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने शिक्षण से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम किया। 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में महाश्वेता देवी का देहावसान हुआ। वे लंबे समय से अस्वस्थ थीं और कोलकाता के बेल व्यू नर्सिंग होम में भर्ती थीं, जहां हृदयाघात के बाद उनके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन यह केवल शरीर का अंत था, उनका लेखन कभी विदा नहीं हुआ। आज भी उनकी रचनाएं समाज के सबसे गहरे, सबसे अनकहे सत्य को उजागर करती हैं और मानवीय मूल्यों की रक्षा में एक अडिग स्वर बनकर खड़ी रहती हैं। महाश्वेता देवी एक नाम नहीं बल्कि एक जागृत चेतना, एक निर्भीक प्रतिरोध है जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि शब्द यदि सच के पक्ष में हों तो वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं।
1: मैं शब्द नहीं खोजती, शब्द मुझे खोज लेते हैं, क्योंकि सच मौन में छिपा नहीं रहता, वो भीतर से पुकारता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब हमें आपसे विदा लेनी है। आज के इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हमने बात की महान लेखिका महाश्वेता देवी के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान के बारे में।
0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, वाचन विजयकांत नायक और
1: दीप्ति तंतुपाय।
0: और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा, आप सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: शब्दों के शिल्पकार, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
3: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर संन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातःकाल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओ, मैंने देखा, मैंने देखा, तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर, कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 सेकंड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए, ठीक है? वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। अब बस ये पकड़ लिया, बोल अब कहाँ जाएगा। ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात, हाँ नहीं सुनेगा। चल चल आ, इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल। चल बेटा सर पोंछ दू, फिर कपड़े बदल लेना। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो? अरे खेलने दो ना उसे, देखो ना नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से?
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है? ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे, देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे, तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा?
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा? अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल आजा आजा आजा आजा, चल चल।
1: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद न था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था? तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या? आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं? हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया? चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है? माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलिच्छ को कौन समझाए? चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा। राम राम राम,
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं, घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलो के घर न आए।
3: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब हमारा आज का सुबह का प्रसारण यहीं समाप्त होता है। हमारा ये प्रसारण रात्रि 10 बजे तक निरंतर जारी है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: दोपहर 12 बजे के बाद हमारा दोपहर का प्रसारण जारी रहेगा शाम 5 बजे तक। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं तराने आजादी।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारी देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। सामाइन, आज के प्रोग्राम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं कई शायरों के कलाम जिन्हें अपनी मखमली आवाज में पेश कर रही हैं मशहूर गजल गायिका राधिका चोपड़ा। तो आइए आपको लिए चलते हैं महफिल गजल में।
3: राधिका चोपड़ा जी गजल की दुनिया का एक ताबिंदा सितारा हैं। जगजीत सिंह जी के बाद आपने जिस सलीके से इस विधा को समेटा है वो काबिले सताइश है। आपकी रेशमी खनकदार आवाज, खूबसूरत मुस्कुराहट उन्हें और कलाकारों से जुदा कर जाती है। आपकी पैदाइश जम्मू की रही, इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद से ली और फिर मौसीकी की बाकायदा तालीम पंडित जे आर शर्मा जी से ली। एमए के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और म्यूज़िक में गोल्ड मेडल हासिल किया। एमफिल पीएचडी भी आपने किया। खुशकिस्मती रही कि इन्हें मौका मिला बेगम अख्तर की ख़ास शागिरदा शांति हीरानंद जी से सीखने का, गज़ल दादरा ठुमरी की तालीम लेने का मौका, और फिर इनकी बेपनाह मेहनत रियाज ने इन्हें वो मकाम दिलाया जो अपने आप में एक मिसाल है। बेशुमार अवार्ड से आपको अब तक नवाजा जा चुका है। राधिका जी की नज़र ये शेर ज़रूर करना चाहूँगी कि वो एक साज है, आवाज़ है, छू लेती है दिल को। वो एक साज है, आवाज़ है, छू लेती है दिल को, नगमा है कि बुलबुल की चहक नाम है उसका। राधिका चोपड़ा जी।
4: मुझ ना चीज़ को आपने याद किया, शिरकत करने का मौका दिया। मेरे पसंदीदा शोरा में से एक हैं मजाज लखनवी, मैंने उन्हें बहुत गाया है और मजाज के अलावा और बहुत सी फरमाइशें हैं जो पहले ही लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी आ चुकी है, तो कोशिश करूँगी कि सब कुछ सुनाऊँ। इजाज़त दीजिए।

देखना जज्बे मोहब्बत का असर आज की रात, मेरे शाने पे है उस शोक का सर आज की रात। ये केदार है, बड़ा खूबसूरत राग है।

बाज़ौक लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छी उर्दू से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ऐसे भी हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, खास इंदौर से आए हैं सुनने के लिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बहुत अच्छी उर्दू नहीं जानते। तो मैं उनके लिए ये मतलब बताना चाहती हूँ ताकि आप शेर का मज़ा ले सकें, फिर आपको दुगना मज़ा आएगा। अल्ताफ माने काइंडनेस, किसी की अच्छाई, जो काइंड बिहेवियर होता है, और फुसूं माने जादू।

गजल जो है ये इससे आप लोग जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो काफिया रदीफ है वो हसरत जयपुरी साहब ने उठाया और फिर एक फिल्म के लिए एक गीत लिखा जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत मकबूल हुआ वो गाना भी। लेकिन ओरिजिनल जो है वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो मजाज का कलाम है, और धुन मैंने वही रखी है रफ़ी साहब वाली, ताकि आपको और उससे आप रिलेट कर पाएँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छी धुन है।

अगली मरतबा आप जब ये नगमा सुने तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये काफ़िया रदीफ़ किसका था। जी मजाज लखनवी। कुछ फरमाइशें भी हैं वो भी सुना रही हूँ, और एक गज़ल मुस्तरखैर आबादी की भी सुनाऊँगी।

0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाए कई शायरों के कलाम। फनकार थी राधिका चोपड़ा। तो दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

ताब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार। पर

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: अतुल्य भारत।
2: श्रोताओं, मैं हूं कंचन
4: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का नाम है संस्कृति संवाद और संस्कृति संवाद में आज हम बात करेंगे गाय की महिमा की।
2: गाय यानी कि गौ माता भारतीय संस्कृति का एक ऐसा शब्द जिसने न जाने कितनी गाथाओं, कितनी कहावतों तथा कितने शब्दों का निर्माण किया है।
4: बिल्कुल ठीक।
2: पुराना चलन रहा है कि अध्यापक जब बच्चे को निबंध लिखना सिखाते थे तो सबसे पहले इसी विषय पर निबंध लिखना सिखाया जाता था। वजह ये थी कि हर घर में गाय लगभग होती ही थी, इसलिए इस पर निबंध लिखना कोई मुश्किल काम नहीं होता था।
4: हाँ, गाय का चित्र आँखों में आता और कलम लिखने के लिए हरकत में आ जाता। गाय का दूध, दही, घी और इससे बनने वाली मिठाइयाँ, स्वाद जीभ पर आता और शब्द बनकर कॉपी पे उतर जाता।
2: लेकिन समय बदला, संस्कृति बदली, गाय COW काउ हो गई और केवल तस्वीरों में ही दिखने लगी। शहरों की तो छोड़िए, गांवों में भी जब खेतों में हल खींचने का काम बैलों के बजाय ट्रैक्टरों से लिया जाने लगा तो गौ संपदा को भारी हानि पहुंची। नतीजा ये हुआ कि अब गाय पर निबंध लिखने में बच्चों के हाथ पांव फूलने लगे।
4: हाँ, मुझे एक वाक्य याद आता है। एक बच्चे से एग्जाम में गाय पर निबंध लिखने को कहा गया। अब उस बेचारे ने बड़ी मासूमियत से लिख दिया अपनी कॉपी में कि गाय हमारी माता है और हमको कुछ नहीं आता है। पर परीक्षक महोदय इतने रहमदिल नहीं थे, उन्होंने भी कॉपी पर नंबर देने के बजाय एक टीप लगा दी कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। खैर, ये तो हुई केवल हास परिहास की बात।
2: श्रोताओं, गाय के अलावा कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भारतीय धर्म, दर्शन, भाषा शास्त्र और अर्थव्यवस्था से इतनी गहराई से जुड़ा हो। ऋग्वेद से ही हम इसके बारे में सुनने लगते हैं और लगातार सुनते चले आते हैं। यहाँ तक आधुनिक काल में भी हिंदी के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास गोदान गाय पर ही आधारित है।
4: हाँ, इस उपन्यास का नायक हौरी एक स्थान पर कहता है, गौ से ही द्वार की शोभा है, सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। वास्तव में हौरी की आवाज नहीं, यह आवाज तो हर एक भारतीय की है, भले ही वह मजबूरीवश गाय न पाल पाए।
2: आज हम चलते चलते बहुत दूर निकल आए हैं, हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। अब हम गोदान नहीं पढ़ते, हैरी पॉटर पढ़ते हैं। अपने बगीचे के खुशबूदार फूलों को भूलकर प्लास्टिक के फूलों के पीछे भाग रहे हैं। आपको बता दें कि गोदान का अनुवाद विश्व की असंख्य भाषाओं में हो चुका है और देश विदेश के कितने पुरस्कार इसे मिले हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। काश हमारी नई पीढ़ी इसे पढ़े और अपनी जड़ों को समझे।
4: तो चलिए एक बार फिर अपनी जड़ों में झांकते हैं। आज से लगभग 4000 साल पहले की बात है। सत्तत्व सिंधु क्षेत्र में ऋग्वेद की रचनाएं लिखी जा रही थी। हमारे पूर्वजों के घर में गाय थी और मन में ईश्वर। गाय उनका पेट भी पालती थी और उन्हें ईश्वर से भी जोड़ती थी, इसलिए उनके अधिकतर शब्द गाय से शुरू होते थे। लोग बेटी को दुहिता कहते थे क्योंकि गाय दुहने का काम बेटी ही करती थी।
2: झरोके को गवाक्ष कहते क्योंकि वो उन्हें गाय की आंख जैसा दिखता था। जब किसी चीज की छानबीन और विश्लेषण करना होता तो उसे गवेषणा कहते। गाय का दूध अमृत माना जाता था, इसलिए अमृत का एक पर्यायवाची बना गौरस। जब दो राजा आपस में लड़ते तो उसे गविष्ठी कहा जाता, जिसका मतलब होता गायों की खोज। वजह यह थी कि उस दौर में युद्ध गायों के कारण ही लड़े जाते थे।
4: श्रोताओं, गेहूं का आटा आज हम सब लोग खाते हैं, पर अनाज हमारे भोजन की थाली का इतना अभिन्न अंग है कि इसके बिना हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। जी हाँ, हमारे पूर्वज इस अनाज को गोधूम कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब होता है गाय का धुआं।
2: इसी तरह जिस गोबर की खाद को आज भी हमारे वैज्ञानिक जमीन के लिए सबसे ज्यादा मुफीद मानते हैं, वो भी ऋग्वैदिक काल से ही उपयोग में लाई जा रही है। पूरा का पूरा ऋग्वेद गाय की महिमा से भरा पड़ा है। यहाँ तक इस ग्रंथ में एक पूरा का पूरा सूक्त ही गाय को समर्पित है। इसमें एक ऋषि कहते हैं, गौवे सब ऐश्वर्य का मूल है, मेरे लिए गौवे ही इंद्र हैं, गौओं का दूध ही अमृत की पहली घूंट है। हे गौ, तुम निर्बल व्यक्ति को बलवान बना देती हो और श्रीविहीन व्यक्ति को सुंदर। तुम्हारी वाणी कल्याणकारी है, तुमसे हमारा घर कल्याणकारी हो जाता है।
4: दुनिया के सबसे पुराने इस ग्रंथ में तो गाय को देवी कहा गया है और इसकी तुलना अदिति से की गई है, जो देवताओं की माता थी। कई ग्रंथों में इसे लक्ष्मी कहकर भी संबोधित किया गया है, जो सभी प्रकार के धन धान्य को देने वाली है।
2: सचमुच गाय धन और धान्य दोनों ही देती हैं। खेती के लिए अपना बछड़ा और अपने गोबर की खाद देकर वे धान्य देती थीं, और धन तो वे स्वयं थीं, बिल्कुल अलाइव करेंसी।
4: जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही धनी माना जाता था। आपको तो याद ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास कितनी गाय हुआ करती थी, और गाय चराने पर भी उनकी इज्जत कम नहीं होती थी। गाय जब संध्या बेला को जंगल से चरकर वापस आती थी तो उसके खुरों से धूल उड़ती थी, जो आसमान में छा जाती थी, और इसलिए संध्या बेला को गोधूली बेला कहा जाता था।
2: श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गायों को जितनी इज्जत बख्शी, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। अवतार होकर भी वे गायों को चराने के लिए अपनी माँ से झगड़ा करते। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए जिस पर्वत को उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया, दुनिया उसे श्री कृष्ण पर्वत के नाम से नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत के नाम से जानती।

0: गाय की जड़ें हमारे जीवन में कितनी गहरी हैं। गोबर व गोमूत्र के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहाँ तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
1: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान इससे भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
0: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गाय दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
1: परलोक में भी गाय ही इंसान को ताड़ती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता, वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। दादा चले, और भी कई आवाज आई। हाँ हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बच्चिया है, ना पैसे हैं। ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
1: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में। जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय और उस दुनिया में भी गाय। नतीजा ये हुआ कि गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात इस प्राणी की हत्या करने की मनाही है।
0: आधुनिक काल की बात करें तो महात्मा गांधी ने गौ संस्कृति की जबरदस्त वकालत की है। वे कहते हैं, मैं गाय की पूजा करता हूँ, इसकी पूजा के लिए अगर पूरे संसार से भी मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। गाय धरती से भी अधिक महान है, यह करोड़ों भारतीयों की माँ है।
1: लेकिन जैसे जैसे कृषि का यंत्रीकरण हुआ, गाय का महत्व कम होता गया। लोग बैलों की जगह ट्रैक्टर और मशीनें इस्तेमाल करने लगे। दूध के लिए भैंसे पाली जाने लगी और किसान गोबर की खाद को भूलकर केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ झुकने लगे।
0: शुरू शुरू में यह ग्रीन रेवोल्यूशन सबको बड़ी अच्छी लगी। पैदावार बढ़ने लगी, किसानों की आमदनी बढ़ने लगी, अनाज के भंडार भरते चले गए। लेकिन आज इसने हमारे माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी को बर्बाद करके रख दिया है। कीड़े मकोड़े व बीमारियों से फसलों को बचाना मुश्किल होता जा रहा है। ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे की तरफ उतरता जा रहा है।
1: वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि अगर यही दौर चलता रहा तो एक दिन हम खेती से हाथ धो बैठेंगे। इसीलिए एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया जा रहा है, एवरग्रीन फार्मिंग। इसमें खास बात यह है कि जानवर और खेती का रिश्ता फिर से बहाल करना होगा।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद और कार्यक्रम है संस्कृति संवाद। और आज हम चर्चा कर रहे हैं गाय की महिमा की, और अब हम बात करेंगे भारत में गौ हत्या पर कानून के बारे में। श्रोताओं, भारत में गौ हत्या हमेशा से ही बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर 1857 की क्रांति को आप याद करें तो सिपाहियों की बगावत का एक प्रमुख कारण यही था कि राइफल की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था।
1: आज के वक्त की बात करें तो हमारे यहाँ यानी कि मध्य प्रदेश सहित 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है।
0: इतिहास की बात करें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल शासक जो कि मुसलमान थे, उन्होंने भी

0: वध को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा था। इसी तरह मैसूर के सुल्तान हैदर अली व टीपू ने भी अपने राज्य में गोहत्या पर पाबंदी लगा रखी थी। यहाँ तक कि जो लोग गाय मारते थे या गाय का मांस खाते थे उनके हाथ काट दिए जाते थे।
1: श्रोताओं, ये तो भारत की बात हो रही है, भारत के बाहर की तस्वीर कुछ अलग ही है। आप ये सोचने की भूल न करें कि दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश है जो गाय की रक्षा को लेकर सजग है, बल्कि नेपाल तो हमसे भी एक कदम आगे है। इस देश में गौ हत्या पर पूरी तरह से पाबंदी है।
0: पड़ोसी देश म्यांमार की बात करें तो यहाँ पर गाय का मांस खाना पाप माना जाता है। खास करके यहाँ के बौद्ध लोग तो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। इतना ही नहीं, 1961 में इस देश में कानून बनाकर गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
1: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
0: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
1: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
0: श्रोताओं, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
1: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
0: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसी हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
1: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है, क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
0: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है, और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
1: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
0: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती है तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
1: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
0: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
1: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
0: एक वाक्य सुनाते हैं आप। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
1: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
0: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चे के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही हैं। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काउ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
1: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
0: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गोमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
1: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
0: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
1: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
0: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका करा कर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए, हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
1: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती, और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती हैं। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
0: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गाय औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है, वैसी विदेशों में नहीं उठती।
1: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है जबकि गाय का दूध दिमाग।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी।

0: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: श्रोताओं, हमने तो अभी तक यही सुना था कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, धरती पर तो केवल उनका मिलन होता है। लेकिन कभी आपने सोचा भी ना होगा कि बेटी का रिश्ता पक्का करते समय कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, और परेशानी भी ऐसी जो आपकी कल्पना से भी परे हो। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता।
2: अजी सुनते हो? लड़की कब की सयानी हो चुकी है, तुम्हें कुछ दिखाई देता भी है कि नहीं?
3: क्यों, क्या मैं घर में आंखें बंद करके घूमता हूँ?
2: यही यही तो समस्या है तुम्हारी। अरे आंखें खुली रहती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। तुम्हारे सामने से बिल्ली दूध चट कर जाएगी और तुम बैठे अखबार ही पढ़ते रहोगे।
3: देखो देखो, मेरे अखबार को किस्मत कहना, तुम्हें पता भी है अखबार आज के जमाने में कितनी अहमियत रखता है। पर तुम क्या जानो। अच्छा जरा बताना तो के हिलेरी क्लिंटन कौन है?
2: अरे ये क्लिंटन मिल्टन को मारो गोली।
3: क्या
2: ये अपनी कंचन को देखो ना, जो पूरन मास के चांद की तरह फुल साइज हो चुकी है। इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं?
3: तो तुम क्या सोचती हो, अकेले तुम्हें ही उसकी चिंता है? मैं तो जैसे उसको कुछ लगता ही नहीं हूँ। अरे आदमी और औरत में यही अंतर होता है। औरतें बक बक करके अपनी भड़ास निकालती हैं और आदमी चुपचाप काम करते रहते हैं।
2: अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मौन व्रत रखकर आपने कौन सी तपस्या की है भला? अरे किस महादेव को प्रसन्न किया है?
3: हाँ ये हुई ना मुद्दे की बात। अरे मगर जरा ढंग से तो पूछो। खैर छोड़ो, मैंने शास्त्री जी से बात चलाई है। हाँ? एक लड़का है उनकी नजर में, अच्छा खाता पीता का रहे।
2: अच्छा?
3: हाँ, लड़का भी ढंग का है, एक दो दिन में ही उन लोगों से बात करके बताएंगे वो हमें।
2: अच्छा अच्छा। हाँ? अरे ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ।

0: हेलो, अरे पंडित जी, प्रणाम। पाए लागू जी जी जी अच्छा, बात हो गई आपकी? फिर क्या, आज ही आ रहे हैं वो लोग? अरे वाह, लड़के के माँ बाप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद जी जी ठीक है। सुनो जी,
1: जी
0: पंडित जी ने सब बात जमा दी है। आज ही दोपहर लड़के के माँ बाप अपनी कंचन को देखने आ रहे
1: अरे अरे अरे, हाय हाय, बस
0: हैं।
1: किसी तरह बात बन जाए, भगवान को मैं 125 का प्रसाद
2: बस,
1: चढ़ाऊंगी। और क्या, अरे चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आती।
0: अरे चिंता छोड़ो, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता तय ही हो जाएगा।
1: हाँ
0: हाँ, फिर सोना कुंभकर्ण की तरह पूरे 6 महीने लगातार।
1: मेरा मजाक मत उड़ाओ जी। हाँ, कराटे तुम भरते हो, ऐसा लगता है कि फटी बांसुरी बज रही है। और कुंभकर्ण मुझे कहते हो?
0: फिर शुरू हो गई तुम, ये सब बाद में कर लेना, पहले चलकर तैयारी करो, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को।
1: अच्छा।

0: सुनो जी, लगता है वो आ गए हैं। तुम दरवाजा खोलो ना। हाँ, हाँ, मैं है ना भीतर जाकर कंचन को देखती हूँ।
1: हाँ,
0: बड़ी लापरवाह लड़की है ना।
1: बिल्कुल।
2: मैंने कहा राधे श्याम जी है क्या घर में?
1: अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। पाए लगो पंडित जी।
3: अरे खुश रहो, खुश रहो यजमान, सब कुशल मंगल से तो है ना।
1: आपकी कृपा है पंडित जी।
3: अच्छा तो मैं परिचय करवाता हूँ।
1: जी, जी, जी, जी,
3: ये हैं श्रीमान विद्यापति।
4: नमस्कार।
3: और ये हैं उनकी धर्म पत्नी।
1: जी जी जी।
3: और ये हैं इनके दोनों के सुपुत्र श्री पुष्पेंद्र जी। किराने की दुकान है इनकी।
1: अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी जो आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया आपने।
4: अरे अरे कष्ट का है का, अब हमारे पंडित जी का आदेश हुआ और हम हाजिर हो गए।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।
1: हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी।
4: नमस्ते बहन जी।
1: वो कंचन को बुलाओ जरा अंदर से।
0: अभी बुलाती हूँ। कंचन बिटिया, नाश्ता चाय लेके आ जाओ बेटा।
3: वो देखो आ गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो देखिए कन्या चली आए रही है, आए रही है। अत्यंत सुशील और गुणवंती कन्या है हमारी। और एक बात बताऊं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
4: शास्त्री जी, वो तो देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल माँ पर गई है।
5: जी नमस्ते।
4: नमस्ते बेटा।
3: कितनी सुशील संस्कारी लड़की है, देखा बिटिया खड़ी क्या हो। अरे मेहमानों को नाश्ता परोसो भैया।
5: जी पंडित जी। जी ये समोसे खाइए।
3: बिटिया ने ही बनाए हैं।
4: अच्छा।
3: अरे बेटा ये मिठाई भी तो दो, इतना कुछ तुमने बनाया है, दो लीजिए। अरे यजमान आप भी लीजिए।
4: शास्त्री जी एक बात पूछें।
3: हाँ,
4: कन्या क्या समोसा और मिठाई खाती है?
3: तो विद्यापति जी,
4: जी
3: कैसी लगी हमारी कन्या आप लोगों को?
4: पंडित जी जरा हम चर्चा करके बताते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको एक दिन का रिश्ता तो है नहीं भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। पहले हमारे जमाने में तो ना ही जाता था भाई, रिश्ता तय कर आ जाता था और विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ कंप्यूटर का जमाना है ना। कहने का मतलब ये कि अगर लड़का और लड़की यानी कि कन्या और आपका बिटवा आपस में बातचीत करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, लेकिन हमें आपत्ति है। अकेले अकेले में बात करने का संस्कार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है पंडित जी। हमारा बेटा तो बिल्कुल श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार। जो माँ बाप कहेंगे वही करेगा। बस जरा हम पप्पू की माँ से बात कर लें।
3: अब आपस में आप लोग राय सुमारी कर लीजिए भाई, तब तक हम लोग बगल के कमरे में बैठकर थोड़ी गप शप कर लेते हैं।
4: जी जी हाँ, जी।
3: आइए जिजमान, आइए। हम आ जाएं?
4: अवश्य अवश्य, पधारिए पधारिए।
3: हाँ तो बताइए विद्यापति जी, क्या फैसला है आप जनों का?
4: अब वो हमारी,
6: देखिए पंडित जी, लड़की तो पसंद है हम लोगों को, पर कुछ बातें हैं जो साफ हो जाए तो अच्छा है।
0: हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, दान दहेज की बात तो साफ ही होनी चाहिए। अब बात को कुछ ऐसा।
6: अरे नहीं नहीं बहन जी, दान दहेज का तो हमारे यहाँ चलन ही नहीं है। पर
0: देखिए देखिए, सकुचाइए मत, निसंकोच बोलिए जो भी मन में है।
6: अब देखिए तो महंगाई तो आप लोग देख ही रहे हैं, किस कदर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में
1: बहन जी, बहन जी बेफिक्र हैं आप, महंगाई की आंच हम शादी पर नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आप लोग बारात वगैरह सादगी के साथ लेकर आना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4: नहीं नहीं भाई साहब नहीं, बात दरअसल वो नहीं है, बात तो ये है कि...
6: रुकिए आप, रुकिए जरा भाई साहब
1: जी।
6: हम लोगों को लड़की के बारे में एक बात पूछनी है।
0: बहन जी एक क्यों, 100 पूछिए ना।
6: जी वो ये है कि लड़की की खुराक
1: जी?
6: मतलब कि वो लड़की रोटी कितनी खाती है।
4: रोटी रोटी रोटी।
6: देखिए भी आप भी, राशन के भाव इतने बढ़ गए हैं तो ये बात तो साफ होनी ही चाहिए ना कि लड़की रोटी कितनी खाती है। आखिर देखिए कोई एक दिन का तो खिलाना नहीं है ना हमें।
4: अरे हाँ बहन जी, आजकल तो देखिए ना, कोई भी चीज घर में लाने से पहले ये पता किया जाता है कि उसकी खुराक कितनी है। आजकल इलेक्ट्रिक के सामान भी स्टार रेटेड खरीदे जाते हैं जिससे कि वो बिजली की कम खपत करे। लोगों ने बल्ब से तौबा कर ली है, बल्ब से तौबा, CFL से नाता जोड़ लिया है। आखिर इसीलिए ना कि बल्बों की खुराक बहुत ज्यादा थी। और तो और अब गाड़ियां भी खरीदने से पहले ये देखा जाता है कि इनका ओवरेज क्या है।
6: एवरेज?
4: अरे श्रीमान ये चीजें तो फिर भी बदली जा सकती हैं, पर लड़की
1: जी हमने तो कभी अपनी बेटी की रोटी गिनी नहीं। पर अब आप लोग कह रहे हैं तो हम हिसाब लगाकर बताते हैं। 2 मिनट का वक्त देंगे हमें आप?
4: अरे 2 मिनट का नहीं श्रीमान जी, 10 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ा मिलने में भले ही देर हो जाए पर मिले तो बिल्कुल सही मिले। वो क्या है ना कि अगर आंकड़ा ही गलत हो जाए तो सारा का सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता है। पता चला बजट था 1000 रुपए का और खर्च बैठ गया 2000, तो बाकी चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी ना।
1: आप कहो तो हम अपनी धर्मपत्नी से भीतर जाकर चर्चा कर लें।
4: बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल श्रीमान, अवश्य चर्चा कर लें।
1: चलो आओ। अब क्या बताएं लोगों को, अपनी बेटी की खुराक पूछ रहे हैं। अरे तुमने भी तो लाड़ प्यार में कभी ध्यान नहीं दिया, मनुहार करके खिलाती गई और उसकी खुराक बढ़ती।
0: मुझे क्या मालूम था कि लड़की ब्याहने में ये बताना पड़ेगा कि कितनी रोटी खाती है। खाने का ठिकाना नहीं और चले हैं बहु ब्याहने। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते को मना ही कर दो। अरे ये लोग हमारी बेटी को भूखों मार डालेंगे, गिन गिन कर रोटी खिलाएंगे और नाप तोल कर चावल दाल, और ये सब्जी तो सोने की तरह तोले में तोल कर देंगे, समझे?
1: चुप चुप चुप, धीरे बोल भाई, कहीं तेरी कटर कटर सुन लिए तो आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
0: अरे तो जाने दो ना। हाँ अच्छा ये होगा, हमें मुंह खोल कर नहीं कहना होगा। अरे ऐसी शादी से तो लड़की कुंवारी ही भली, कम से कम अपने घर में भरपेट खाना तो खाएगी बेचारी।
1: तो जैसे इंसान खाने के लिए ही आता है दुनिया में।
0: अरे खाने के लिए तो नहीं आता, मगर बिना खाए रहा भी तो नहीं जा सकता है? साल भर में एक शिवरात्रि का व्रत तो तुम कर नहीं पाते
1: है?
0: और लड़की को कहते हो कि सालों साल शिवरात्रि में।
1: अरे पागल है तू,
0: क्यों
1: एक बार शादी तो हो जाए, फिर तो वही रहेगी घर की मालकिन है? अरे बुढ़िया ही तब इससे मांग के खाएगी। कटर चटर कर रही है ना, फिर अपनी रोटी गिनेगी बुढ़िया।
0: रहने दो, देखा ना कैसी भोंदू औलाद पैदा की है उसने।
1: अरे बड़े बड़े भोंदू भी ना जब एक बार औरत के पल्लू से बन जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं, जैसे मैं। हाँ अपना ही मामला देख लो ना तुम। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि खुराक कितनी बतानी है।
0: अरे कितनी क्या बतानी है, जितना खाती है उतना बता दो।
1: अच्छा रिश्ता तोड़वाना है क्या तुझे? अरे पूरे खानदान को सांप सूंघ जाएगा जैसे ही वो सुनेंगे कि 9 रोटी और 1 कटोरा चावल खाती है तेरी लड़की।
0: अरे तो फिर क्या करें?
1: एक काम करते हैं।
0: हाँ।
1: चावल तो पूरा ही उड़ा देते हैं।
0: अरे
1: हाँ, और 1 रोटी भी कम कर देते हैं, इतने पर तो माने जाएंगे वो।
0: ठीक है।
1: हाँ।
0: अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा बोल दो।
1: चलो चलो बाहर चलो।
0: चलो।
4: आइए श्रीमान, आइए आइए आइए।
1: भाई साहब वो क्या है ना कि हमारी लड़की एक टाइम में लगभग 8 रोटी खाती है। जी पतली पतली पतली पतली है, मगर अगर चावल साथ में हो तो एक आध रोटी कम भी हो सकती है।
4: चावल भी?
1: जी।
0: क्या कह रहे हैं भाई साहब, 8 रोटी?
1: जी।
0: अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा है,
1: हैं?
0: आज के महंगाई के जमाने में 8 रोटी? हाँ अपने मायके में हमने भी खाई है कभी 10-12 रोटियाँ।
1: जी,
0: पर जब से हम ब्याह कर ससुराल आए हैं ना,
1: हाँ?
0: अब तो आदत सी हो गई है। अरे 2-3 के बाद तो पेट ही हमारा बगावत कर देता है।
1: हाँ, ठीक कहती बहन जी आप, बहुत ठीक। जब घर गृहस्थी का बोझ सर पर पड़ता है तो कहाँ होश रहता है रोटी सोटी का, फिर तो दूसरों को खिलाकर ही पेट भर जाता है। आपकी बहू भी एडजस्ट हो जाएगी धीरे धीरे।
0: नहीं नहीं भाई साहब, बात साफ हो जाए तो अच्छा है, है ना? नहीं तो आप कहेंगे कि भूखे मार डाला हमारी बेटी को। जितना तय हो जाएगा ना उससे पीछे हरगिज नहीं हटेंगे हम लोग, जबान के पक्के हैं। लेकिन
1: क्या क्या कहते हो जी, कुछ गुंजाइश हो तो तुम बता दो, सुन रही हो तुम? आखिर तुम माँ हो, तुमसे ज्यादा कौन समझता है अपनी बेटी को?
0: बहन जी 7 रोटी दे दीजिएगा। हाँ, देखो इससे कम तो नहीं, हाँ, बेचारी भूख ही मर जाएगी ना। हाँ कभी देखो चावल मिल जाए ना तो हाँ, 1 रोटी और कम कर सकती हैं आप। पर अरे नहीं नहीं बहन जी ये तो बहुत ज्यादा है। अब मुझे ही देखिए ना, दुगना वजन है आपकी बेटी से पर खुराक 4 रोटियों में ही सिमट गई है जैसे। अरे पुराना जमाना और था, सस्ताई हुआ करती थी तब। 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था और 2 रुपए किलो चावल। मगर आज अरे सुनते हैं आबादी ऐसी ही बढ़ती रही ना तो बस अमीर लोग ही खाएंगे रोटी और चावल, और हम आप जैसे लोगों को गेहूं का भूसा और चावल की भूसी उबाल कर खानी पड़ेगी चटनी के साथ। अच्छा अच्छा बहन जी ऐसा करिए, एक काम करिए, 6 रोटी अब फिक्स कर लेते हैं। देखो है ना, देखो 2 रोटी का डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं होता है ना।
1: हाँ बहन जी
0: है ना।
1: हाँ जी हाँ, 8 में 2 का डिस्काउंट मतलब कितना हुआ? 25%।
0: हाँ
1: 25%, इतना तो सेल में भी मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या बात करते हैं भाई साहब
1: जी,
0: 50% तक का डिस्काउंट उठाया है हम लोगों ने। अरे बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए, सब होता है।
1: पर बहन जी देखिए, हमने कोई बार्गेनिंग वाला भाव नहीं बताया है आपको, बहुत सोच समझ कर बताया है आपको हमने। ये तो जी हाँ,
0: देखिए भाई साहब हम तो भाई 3-4 रोटी वाली लड़की ढूंढ रहे हैं।
1: क्या
0: इससे ऊपर की गुंजाइश नहीं है हमारी?
5: अरे
0: हाँ कमाओ लड़की होती तो और ज्यादा पर भी कंसीडर कर लेते।
7: एडजस्ट कर लेंगे।
4: अबे चुप है।
3: अब देखिए यजमान, मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। भाई देखिए आप लोग भी ऐसे कसम खाकर नहीं निकलते बेटा ब्याह में। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मतलब ये राधे राधे 4 और 6 के बीच में का, मतलब कि 5 का आंकड़ा फिक्स कर लेते हैं। देखो अब कोई कुछ नहीं, नहीं शांत, मतलब ना आपकी और ना हमारी। क्यों यजमान?
0: अब पंडित जी अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं 5 रोटी तक आने को तैयार हूँ।
3: जैसे
0: इससे आगे बिल्कुल नहीं, या तो हाँ या फिर ना। और हाँ अगर साथ में चावल भी हुआ तो फिर 1 रोटी कम हो जाएगी थाली में। अब आप सोच समझ के फैसला सुना दीजिए।
1: क्या कहती हो जी, क्या 5 रोटी में लड़की गुजर कर सकेगी? अब बात यस या नो की है, बार्गेनिंग की गुंजाइश अब खत्म।
0: अच्छा जी आप क्या कहते हो?
1: ठीक है।
0: हाँ ना।
1: हाँ हाँ
0: हाँ तो फिर ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, 5 रोटी पर रिश्ता पक्का समझो।
8: थैंक यू मम्मी, अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अब मेरी शादी हो ही जाएगी।

0: रोटी की तय शर्तों के अनुसार बाकायदा एग्रीमेंट तैयार करके दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जिससे बाद में किसी झंझट की गुंजाइश ना रहे। वो कहते हैं ना, ना सौ बका ना एक लिखा। इसलिए लिखा पढ़ी के साथ बात पक्की करना जरूरी समझा गया। यह एग्रीमेंट वर पुष्पेंद्र और कन्या कंचन के बीच हुआ, जिस पर गारंटर के रूप में उनके माता पिता और गवाह के रूप में पंडित जी ने हस्ताक्षर किए। लड़की ब्याह कर ससुराल आ गई। और अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: सुनो जी, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है। यहाँ पर भूख के मारे दिन भर चक्कर आते रहते हैं। 9-10 रोटी खाती थी मैं अपने मायके में, और यहाँ सिर्फ 5 रोटी, बिल्कुल आधी खुराक मिल रही है मुझे यहाँ पर।
2: मैं सब समझता हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरे पास ढेरों हिट फॉर्मूले हैं, कल से बिल्कुल फुल डाइट मिलेगी तुझे।
1: जी, वो कैसे?
2: अरे तू आम का पेड़ गिर कर क्या करेगी, हाँ? अब खुश?
0: पुष्पेंद्र की योजना के अनेक अंग थे। वह दोपहर के टिफिन के लिए 2 रोटी ज्यादा मांगने लगा, और जिसे धीरे से अपनी पत्नी कंचन को सरका देता। दुकान से आता तो जेब में किशमिश और काजू भर के लाता और कंचन की झोली में डाल देता। कभी कभी चोरी से समोसे और कचौड़ियां भी लेकर के आता, मगर बड़ी सावधानी से। पर उसकी माँ की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। आखिर कब तक बचते वे? एक दिन की बात है।
3: बहू, ये तेरे मुंह में क्या लगा है? ऐसा लग रहा है जैसे
1: कुछ नहीं माँ जी, वो
3: अरे नहीं रे, अभी भी दिख रहा है, लगा है। लाई धरा, मैं साफ किए देती हूँ।
1: नहीं माँ जी, वो देखिए, पूछ लिया मैंने, अब तो नहीं दिख रहा ना।
3: क्या महक रहा है इसमें? कचौरी टाइप की महक आ रही है। सच सच बता बहू, देख देख, एग्रीमेंट साइन किया है तूने?
1: माँ जी कुछ नहीं।
3: हाँ, और तेरे माँ बाप ने गारंटी दी थी इसकी, बात अगर बिगड़ी तो फिर।
1: माँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, कि ये अपने लिए कचौरी लाए थे, उसी में से बस थोड़ी सी मुझे चखा दी और बोले झूठा खाने से ना पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है।
3: बहुत अच्छे, शादी के बाद हमारा सबन कुमार भी अब। सही बात है, बिल्कुल। जवान बीबी के आगे माँ लगती कहाँ है, मगर मैं नहीं छोड़ने वाली, बुलाती हूँ तेरे बाप को अभी।
1: माफ कर दीजिए माँ जी, एक काम करिएगा, शाम को एक रोटी कम दे दीजिएगा ना मुझे, वो एग्रीमेंट वाला ही एवरेज बैठ जाएगा ना फिर।
3: अच्छा, और बदले में तू फिर 2 कचौरियाँ और नीचे उतार लेगी?
1: नहीं नहीं माँ जी,
3: ये तो वही बात हुई कि रोजा छुड़ाने चले थे, नमाज गले पड़े।
1: माँ जी,
3: है? कहां मैं रोटियों की किफायत किए जा रही हूँ, और कहां ये समोसे और कचौरियाँ गटकी जा रही हूँ। हे भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दूं मैं।
1: माँ जी,
3: अजी सुनते हो?
4: क्या है?
3: इस शादी में बड़ा ही धोखा हुआ है हमारे साथ,
4: है?
3: मटके जैसा पेट है बहू का। काम निकालने के लिए एग्रीमेंट तो साइन कर लिया उन लोगों ने, मगर अब इसे रद्दी का कागज समझकर उड़ा रहे हैं।
4: तेरा मतलब क्या है? खुलकर कुछ बोल तो सही। अरे रोटियां तो तू ही गिनकर देती है ना उसे, अब मटके जैसा पेट हो या हंडे जैसा, क्या फर्क पड़ता है? माल तो उसमें उतना ही पहुँचता है ना जितना तू डालती है।
3: कान को दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से, कान तो पकड़ा रहा है ना, रोटियां ना सही, कचौरियां ही सही। हाँ, आखिर खर्च तो पैसा ही होता है। ये तुम्हारा श्रवण कुमार आजकल छुप छुप कर कचौरियां खिलाता है, समोसे खिलाता है अपनी छम्मक छल्लो को। हाँ, ये तो और ही मजे हो गए, सूखी रोटियां छोड़कर तरमाल गटकी जा रही है। माँ के लिए कभी मूंगफली नहीं लाया पप्पू, और कभी भी के लिए कचौरियाँ समोसे।
4: अरे भगवान, मामला बड़ा गंभीर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है इसमें। एक काम करता हूँ, आज ही एक लीगल नोटिस दिए देता हूँ बहू को एंड कॉपी टू हर पेरेंट्स।
3: ये तुम्हारी कानूनी बोली समझ में नहीं आती जी मुझे, मेरी बोली में बताओ कि तुम करोगे क्या।
4: अरे भगवान, केस करूंगा, केस बहू पर और उसके मायके वालों पर, हर्जाना वसूलूंगा हर्जाना। अरे मजाक थोड़ी है, कागज पर किए गए समझौते से पीछे हटना। अभी फोन करता हूँ वकील साहब को। हाँ। हेलो, वकील साहब कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं जनाब, वो पुष्पेंद्र की शादी का एग्रीमेंट तो आपको याद है ना? हैं? अरे आप ही ने तो ड्राफ्टिंग की थी उसकी। अरे अब उसका वायलेशन शुरू हो चुका है, वायलेशन। हाँ, बहू रोटियां तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही खाती है पर ऊपर से कचौरी डकार लेती है। अब कचौरियां तो एग्रीमेंट में लिखी नहीं है। हैं? क्या कहा आपने, कचौरियां मिलती कहां से? अरे अपना वो पप्पू चप्पू चला रहा है। अरे अपनी लालायक औलाद देती उसे लाला कर। क्या कहा आपने, हैं? केस नहीं बनता? अरे वकील साहब मगर क्यों लो।
3: क्या बोल रहे थे वकील साहब?
4: अरे भगवान, कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां तो हमारे बहु बेटे ही हैं, हम कौन लगते हैं इसमें। अरे जब वे ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहें तो गारंटर कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे की मर्जी के बगैर कचौड़िया बहू खाती तब जाकर कोई केस बनता।
3: मतलब हम यूं ही अपना घर लूटते देखते रहे और कुछ ना बोले?
4: बिल्कुल कुछ ना बोलो भगवान, कुछ ना बोलो। ऐसा नहीं है, अपने लड़के को तो समझा सकते हैं ना हम, मगर उसके बगैर हम बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लाचार।
3: क्यों रे पप्पू, जब कचौरियां ही खिलानी थी चुपके चुपके तो एग्रीमेंट करने का क्या मतलब? अरे उसी वक्त बता दिया होता तो कम से कम इतनी बार्गेनिंग तो ना करनी पड़ती हमें। कह देते भाई ब्लैंक चेक है हमारा, जो चाहे रकम भर लो। मियां बीबी मिट्ठू बन गए और हम हो गए दुश्मन। वाह रे जमाना, जिसके लिए ये सब कर रहे थे वही जब हमारा नहीं रहा तो।
4: देख लो इसे।
2: ऐसा नहीं है माँ, बहू भी तो अपनी ही है ना, भर पेट खाना नहीं दोगी उसे तो बीमार नहीं पड़ जाएगी वो, फिर दवा दारू का खर्चा खाने से कितना ज्यादा पड़ेगा, ये गणित भी तो सोचो माँ। काम छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाएगी सो अलग।
4: अरे वाह बेटा वाह, आज जाके समझ में आया कि तू कितना बुद्धिमान है, हिसाब किताब में जीरो।
3: देख ली बाप बेटे की होशियारी, बड़े कानूनदा बनते हैं दोनों के दोनों। अरे एग्रीमेंट में कहां लिखा है कि हम दवा दारू भी कराएंगे उसकी और काम छुड़ाकर आराम करवाएंगे उसे?
2: तो यही कहां लिखा है कि उसकी दवा दारू नहीं कराएंगे और काम कराएंगे उससे। कल को वो काम छोड़कर बैठना चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकती, साफ कह देगी वो। रोटियां गिन कर देने की बात हुई है एग्रीमेंट में, पर घर का काम करने की कोई चर्चा नहीं है इसमें। फिर तुम करती रहना सुबह से शाम तक, रसोई चौका झाड़ू बुहारू। काम वाली लगाओगी तो वो भी रोटियां खाएगी और तनख्वाह भी लेगी, समझी? उससे सस्ती तो बहू है जो केवल रोटियों पर 2400 घंटे खटने को तैयार है। बात को समझो मेरी माँ।
4: अबे उल्लू के पट्टे, तू मेरा बेटा है कि अपनी बीवी का वकील है? अरे श्रवण कुमार समझते थे हम तुझे श्रवण कुमार, मगर तू तो शादी होते ही औरंगजेब बन गया।
2: अरे मैं अभी भी हूँ आपका श्रवण कुमार, अब बोल सही रहा हूँ बापू। अब तुम्हारे पक्ष की बात नहीं है तो तुम्हें गलत लग रही है।
3: सुनो जी सुनो, एक काम कर लो जी, अभी बुलाओ इसकी महरिया को यहाँ, आमने सामने बात हो जाए।
4: बुलाओ बुलाओ।
3: ये छुप छुप कर गले तर करना मुझे नहीं सुहाता बिल्कुल।
2: माँ बुला लो।
5: जी माँ जी, मुझे बुलाया आपने?
3: हाँ बहू, बोल इस मामले में क्या चाहती है तू?
5: किस मामले में?
3: इसी मामले में, साफ बोलना और साफ करना। ये ढका छुपा कुछ नहीं चाहिए इस घर में मुझे। ये नहीं कि बाकी घर वाले सूखी रोटियां खाएं और तू समोसे कचौरियां उतारे।
5: माँ जी मैं क्या बोलूं? मेरे पति ही मेरे सब कुछ है। ये मुझे जैसा रखना चाहेंगे मैं तैयार हूँ।
6: अरे वाह वाह कंचन, वेरी गुड, 50 रोटियां कुर्बान।
3: हाँ, बड़ी होशियार है तू तो, सीधे कमजोर नस पे हाथ रखती है। मालूम ही है ना कि ये जोरू का गुलाम तेरी मुट्ठी में है, तभी तो ये मेरे कब्जे में होता ना तब ऐसे ना बोलती थी।
6: माँ उसे क्यों जली कटी सुना रही हो?
2: अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को कितनी समर्पित अर्धांगिनी मिली है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दासी चाहिए ना, और वो भी आधा पेट खाकर बस खटती रहे चूल्हे चौके में लगी रहे।
4: क्या बकता बे?
3: देखो जी, देख लो जिसके मुंह में जबान डालकर बोलना सिखाया हमने, अब वही मुझसे बटर पटर किए जा रहा है। वक्त बदल गया है हमारा, अब तो चिड़िया उड़ना सीख गई, अब नहीं है माँ के परों की जरूरत इसे।
4: ठीक कहती हो भगवान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो चिड़िया लात मार कर घोंसले से बाहर भी फेंक देती है उन्हें, ये नहीं कि।
2: ठीक है बापू, समझ गया मैं, समझ गया तुम्हारा इशारा। संभालो अपना राजपाट, हम अपना घोंसला खुद बना लेंगे, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका साथ निभाने के लिए सात वचन दिया है हमने। चलो कंचन
5: जी,
2: अब गैर हुआ ये देश, चलो
3: पप्पू,
4: पप्पू, अरे कंचन पप्पू बेटा, अरे रुक जाओ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।
7: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
8: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हुगली के रहने वाले सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन, और उसके बाद प्रस्तुति होगी निमाड़ी लोक गायन की, जिसे प्रस्तुत करेंगे खरगोन के शिव गुप्ता और उनके साथी कलाकार। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत भारती और सुब्रत चटर्जी का सरोद वादन अभी आपने सुना। इसके बाद बारी है निमाड़ी लोक गायन की, जिसे पेश कर रहे हैं खरगोन के शिव गुप्ता। बोलो ना।

0: बोलो नर्मदा मैया की जय।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के, संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: वामपंथ पवित्र प्रतीकों से लेकर साम्राज्य की मुद्रा तक। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकी पूर्वोत्तर के दलदली इलाकों और तटों पर एक अजीब गरीब बदलाव हो रहा था। यूरोपीय सिक्कों के आगमन से बहुत पहले इस क्षेत्र के मूल निवासी, जैसे मुंसी समूह क्वाहोग क्लैम के खोल से मोती बनाते थे। इन मोतियों को वामपम कहा जाता था। ये केवल सजावट की चीजें नहीं थीं, ये संधियों को दर्ज करने, कहानियां सुनाने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पवित्र वस्तुएं थीं। सबसे कीमती गहरे बैंगनी रंग के मोती होते थे, जिन्हें शंख के गहरे हिस्सों से तराशा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंगनी मोतियों का उत्पादन इंटरैक्टिव डोमेन्स यानी पारस्परिक प्रभुत्व का परिणाम था। पत्थर जैसे सख्त क्वाहोग हॉल को नाजुक बेलनाकार मोतियों में तराशने के लिए स्वदेशी कारीगरों को यूरोप से आपूर्ति किए गए धातु के ड्रिल की आवश्यकता थी, जो 1630 के दशक तक हडसन घाटी में आम नहीं हुए थे। इस तकनीकी संलयन ने लॉन्ग आइलैंड के तटीय क्षेत्रों को एक वास्तविक टकसाल में बदल दिया। 1640 के दशक तक डच और अंग्रेजी बसने वालों के लिए एक अजीब आर्थिक वास्तविकता बन गई थी। उपनिवेशों में सोने चांदी की कमी थी और फिर फर, जो कि पशुओं की खाल होती थी, का व्यापार धन का प्राथमिक इंजन था। बसने वालों और स्वदेशी समूहों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए वामपम पसंद की मुद्रा बन गया। ये वो पैसा था जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों के व्यापार को गति दी, जिसका उपयोग वीवर की खाल से लेकर मक्के और यहाँ तक कि जमीन के विशाल टुकड़ों को खरीदने के लिए किया जाता था। हालांकि डच वेस्ट इंडिया कंपनी और स्वदेशी उत्पादक इस पैसे को दो पूरी तरह से अलग नजरियों से देखते थे। उनके लिए वामपंप सामाजिक पारस्परिकता का हिस्सा था, एक उपहार जिसके बदले में दुनिया को संतुलन में रखने के लिए दूसरा उपहार दिया जाना चाहिए। उनके लिए ये वस्तु थी जिसे कर यानी टैक्स के दायरे में लाया और नियंत्रित किया जाना था। सितंबर 1639 में डच डायरेक्टर विलेम कीफ्ट ने नीति में एक कट्टरपंथी बदलाव का प्रयास किया। उन्होंने स्थानीय मुंसी समूहों पर सुरक्षा शुल्क लगा दिया और डच किलों की लागत वहन करने के लिए वामपम और वीवर की खाल के रूप में ट्रिब्यूट की मांग की। मुंसी इस बात से आक्रोशित थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने डचों का स्वागत किया था, उनके संकट के समय उनकी देखभाल की थी और उन्हें अपनी जमीन पर मुफ्त में बसने की अनुमति दी थी। वामपम, जो संतुलन का प्रतीक था, उसे अनचाही सुरक्षा के लिए टैक्स के रूप में मांगना सामाजिक पारस्परिकता की विफलता थी। वामपम के आध्यात्मिक और राजनीतिक मूल्य की यही मौलिक गलतफहमी 1640 में प्रथम डच मुंसी युद्ध का प्राथमिक कारण बनी। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, लॉन्ग आइलैंड के वामपम उत्पादक एक दुखद बंधन में फंस गए। यूरोपीय बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत होने के कारण उन्हें केवल अपनी जमीन और मोती बनाने के लिए आवश्यक धातु के औजारों तक पहुंच बनाए रखने के लिए डचों को शांति और सैन्य सहायता का वचन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जंगल के वे आध्यात्मिक मोतीशाही अधीनता के हथियार बन चुके थे जो उन लोगों की बेदखली का रास्ता तय कर रहे थे जिन्होंने उन्हें बनाया था। वामपम उस समय के एक डरावने अवशेष के रूप में आज भी मौजूद हैं। जब पवित्र प्रतीकों को साम्राज्य की ठंडी मुद्रा के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
4: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: शाम की सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रत्नेश सोनी। आपने ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 174 से वाचन। ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुणी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप।
1: त्वं राजेन्द्र ये च देवा रक्षा नृण पाहि असुर त्वमस्मान्। त्वं सत्पतिर्मघवा नस्तरुत्रस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः। हे सामर्थ्यवान इंद्रदेव, आप संसार के अधिपति हैं। देव शक्तियों के सहयोग से आप मनुष्यों की रक्षा करें। आप सत्कर्मशील मनुष्यों के पालक हैं। आप हम वीरों को संरक्षित करें। आप ऐश्वर्यवान हमारे तारणकर्ता हैं। आप ही श्रेष्ठ आश्रयदाता और बलदाता हैं। दनो विष इंद्र मिद्रवाचः सप्तयत्पुरः शर्म शारदीर दर्त ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रम पुरुकुत्साय रंधीहि। हे इंद्रदेव, जिस समय आपने शरदकालीन निवास योग्य शत्रु नगरों के 7 भवनों को विनष्ट किया, उसी समय कटुभाषी शत्रु सैनिकों को भी विनष्ट कर दिया। हे अनिंदनीय इंद्रदेव, आपने प्रवाहित होने वाले जलों के द्वारों को खोल दिया और युवा पुरुकुत्स के लिए वृत्रासुर का संहार किया। अजावृत इंद्र शूर पत्नीर्द्याम च येभिहि पुरुहूत नूनम रक्षो अग्नि मशुषम तूर्वयाणम सिंहो न दमे अपांसि वस्तोह। आवाहन योग्य हे इंद्रदेव, आप निश्चित ही जिन मरुदगणों के साथ दिव्य लोक में जाते हैं उनके सहयोग से वीरों को सुरक्षित करके शत्रुओं की अभेद्य दीवारों को तोड़ देते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे घरों में जलों की पूर्ति के लिए सिंह के समान अपनी पराक्रमी सामर्थ्य से इस रोगनाशक तीव्र गतिशील अग्नि को संरक्षित करें। शेषन्नु त इंद्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य महना सृजदर्णास्यव यद्युद्धा गास्तिष्ठ दर्धरी श्रिसता मृष्ट वाजान। हे इंद्रदेव, आपको महिमा मंडित करने के लिए वज्र के प्रहार से युद्ध भूमि में ही असुर धराशायी होकर गिर पड़े। जिस समय आपने योद्धा शत्रुओं के पास जाकर उनके द्वारा अवरुद्ध जल प्रवाहों को प्रवाहित किया, उसी समय आप दोनों घोड़ों पर आरूढ़ हो गए। आपने अपनी घर्षक और शत्रु संहारक सामर्थ्य से वीर सैनिकों को दोष मुक्त किया। वह कुत्समिंद्र यस्मिन् चाकंत्यस्यु मन्यु रिज्रा वातस्याश्वा प्र सूरश्चक्रम वृहतादभीके भी स्पृधो यासि सद् वज्रबाहु। हे इंद्रदेव, आप कुत्स के जिस यज्ञ में हवि सेवन की कामना करते हैं उसी ओर सुखदाई, सीधे मार्गों से वायु की गति के समान शीघ्रगामी अपने अश्वों को प्रेरित करें। युद्ध में सूर्यदेव अपने चक्र को उनके समीप ले जाएं और हाथों में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव शत्रु सेनाओं की ओर उन्मुख हों।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 174 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या सर ही कटा देंगे। हटने के नहीं पीछे डरकर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम पैर बढ़ा देंगे। ये जोश ये जुनून हमारे वीर क्रांतिकारियों के सीने में सुलगता रहता था और फूटता तो ज्वालामुखी की तरह, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। बड़ी बात यह नहीं थी कि विरोध की आवाज कितनी बुलंद हुई या क्या परिणाम हुआ, वो ललकार बनी या शोर हुई। क्रांति पथ पर बड़ी बात यह थी कि लगातार आवाज उठाई गई। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, रिश्ते नातों को छोड़ा और देश के लिए खुद को समर्पित किया। ऐसे ही एक अमर शहीद का नाम है यशवंत सिंह। यशवंत सिंह का जन्म 27 जुलाई सन 1909 को सागर में हुआ था। उनके पिता का नाम था नन्हू सिंह। यशवंत की आरंभिक शिक्षा दमोह के म्युनिसिपल हाई स्कूल में हुई थी। वे रेलवे विभाग में नौकरी करते थे। ये वो समय था जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का बलिदान देश की रगों में उबल रहा था। यशवंत सिंह ने भी प्रतिज्ञा ली कि अब उनकी हर सांस सिर्फ देश के लिए है और वो क्रांति गतिविधियों में संलग्न हो गए। घर वालों की जिद पर उनका विवाह हो गया, लेकिन शादी की पहली रात ही उन्होंने अपनी पत्नी से कह दिया था, तुम इस घर में रह सकती हो किंतु मेरी सच्ची सहधर्मिणी मेरी कटार है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग एक साथ नहीं रह सकेंगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं और इस धरती के दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, जिनसे मुझे निरंतर युद्ध करते रहना है। मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, मैं जा रहा हूं। ये अपनी पत्नी से उनकी पहली और अंतिम भेंट थी। यशवंत सिंह घर छोड़कर चले गए और पत्नी तक दोबारा लौटे तो तभी जब पत्नी की चिता जल रही थी, आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा और चिता की भस्म हाथों में ले सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने, वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे आकर मिलूंगा। यशवंत सिंह अब रेल विभाग में नौकरी कर रहे थे। भुसावल में वो कैबिन मैन थे। रेलवे की नौकरी के साथ ही वो क्रांति कार्य में पूरी तरह संलग्न थे। अपने दो मित्रों देव नारायण तिवारी और दलपत राव के साथ मिलकर वो क्रांतिकारी साहित्य के वितरण का कार्य करते थे। इस तरह जनता में क्रांति साहित्य पहुंचाकर वो आम जन को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भड़काने का काम कर रहे थे। इन तीनों क्रांतिकारियों को सूचना मिली कि 23 जुलाई सन 1931 की रात पंजाब मेल से ब्रिटिश फौजी अफसर लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा करेगा, जिसके पास एक अच्छी राइफल होगी। इस राइफल की आवश्यकता क्रांतिकारियों को थी। यशवंत सिंह ने नौकरी से कुछ दिन की छुट्टी ली और खंडवा जा पहुंचे और यहां अपने दोनों साथियों से मिलकर अफसर से राइफल छीनने की योजना बनाई। खतरा कम नहीं था, किसी भी अंग्रेज अफसर पर हाथ रखना अंग्रेजों के सीधे निशाने पर आने जैसा था। लेकिन यशवंत सिंह तो आजादी के दीवाने थे। सैनिकों सा जज्बा दिल में लिए वो बढ़ चले थे क्रांति पथ पर।

यशवंत सिंह देवनारायण तिवारी और दलपत राव के साथ 23 जुलाई सन 1931 को खंडवा स्टेशन पहुंचे। तीनों ने प्रथम श्रेणी के टिकट खरीद लिए थे। पंजाब मेल जब खंडवा स्टेशन पर रुकी तो वो उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें लेफ्टिनेंट हैक्स यात्रा कर रहा था, जो बंबई से पुणे जा रहा था। इस डब्बे में लेफ्टिनेंट शीहन भी था, जो 28 फील्ड ब्रिगेड में लेफ्टिनेंट था। हैक्स के साथ एक कुत्ता भी था। तीनों क्रांतिकारियों ने डब्बे का पूरा जायजा लिया और सतर्क होकर बैठ गए। सुबह 4 बजे का समय था। गाड़ी डोंगरगांव और मांडवा स्टेशन के बीच द्रुत गति से दौड़ रही थी। दोनों अंग्रेज अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। स्थिति अनुकूल पाकर यशवंत सिंह और देव नारायण ने कटार से लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला बोल दिया और दलपत राव शीहन के पास पहुंच गया, ये सोचकर कि यदि वो हैक्स को बचाने की कोशिश करे तो वो उसे रोक लेगा। डब्बे की हलचल सुन हैक्स का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा और दोनों ही अंग्रेज अफसरों की नींद खुल गई। लेफ्टिनेंट हैक्स पर हमला होता देख शीहन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी दलपत राव ने शीहन पर अपने कटार से वार कर दिया। शीहन ने कटार को मजबूती से पकड़ लिया और फिर दोनों भिड़ गए। इस जोर आजमाइश में कटार टूट गई और मूठ वाला हिस्सा दलपत राव के हाथ में रह गया और कटार की धार शीहन के हाथ में आ गई। शीहन ने कोई गलती नहीं की और कटार के टूटे हुए फल से दलपत राव पर उसने वार कर दिया। इसके साथ ही बड़ी फुर्ती से लाइट जलाकर गाड़ी रोकने के लिए जंजीर खींच दी। धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से रुकती उसके पहले ही तीनों क्रांतिकारी गाड़ी से कूद गए और पास के जंगलों की ओर दौड़ पड़े। ट्रेन के डब्बे में लेफ्टिनेंट हैक्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसकी राइफल क्रांतिकारियों के पास पहुंच चुकी थी। सुबह होते होते लेफ्टिनेंट हैक्स को पास के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। वो बुरी तरह से घायल था। पूरी कोशिश के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उसने दम तोड़ दिया। अंग्रेजों के भीतर खलबली सी मच गई। लेफ्टिनेंट शीहन से क्रांतिकारियों का हुलिया पूछा गया। तमाम जानकारी लेकर अपराधियों की खोज आरंभ हुई। तीनों क्रांतिकारी अपनी हिम्मत और वीरता के बल पर अपने मकसद में कामयाब हो आगे बढ़ गए थे, क्योंकि उनके सर पर तो स्वाधीनता का जुनून सवार था।

एक पुलिस दरोगा जो सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा था, क्रांतिकारियों की खोज में वो रेलवे लाइन की ओर बढ़ने लगा। उसे अंदाजा था कि हो न हो सुबह होते होते कुछ लोगों ने उन क्रांतिकारियों को भागते हुए जरूर देखा होगा। रेलवे लाइन पर कुछ लोग काम करते हुए उसे मिले। उनसे पूछताछ करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि एक व्यक्ति नेकर, काला कोट और जूते पहने हुए मांडवा स्टेशन की तरफ गया है। बातचीत चल ही रही थी कि रेलवे ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस दरोगा ने वो ट्रॉली रुकवाई। ट्रॉली में बंबई का डिप्टी चीफ इंजीनियर, भुसावल डिवीजन का इंजीनियर और एक सहायक बैठे हुए थे। दरोगा ने सारी घटना उन्हें बताई और वो चारों क्रांतिकारियों की तलाश में मांडवा की ओर चले गए। कुछ दूर पहुंचने पर पटरी पर चलता हुआ एक व्यक्ति उन्हें नजर आया। हुलिया बिल्कुल वही था जो रेलवे लाइन में काम करने वालों ने बताया था। ट्रॉली की आवाज उस व्यक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। जैसे ही ट्रॉली रुकने को हुई, वो व्यक्ति फुर्ती में आया। वो तुरंत पटरी छोड़ जंगल की तरफ भागा। ट्रॉली पर सवार लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते हुए पास ही एक पुलिस स्टेशन मिला। दरोगा ने वहां पहुंचकर अपनी सहायता के लिए कुमुक मांगी। 50 जवानों ने जंगल के उस क्षेत्र में क्रांतिकारियों की खोज शुरू की। 5-5 जवानों के जत्थे बने और पूरे जंगल में वो फैल गए। लेकिन वो क्रांतिकारी चतुराई से फिर रेलवे लाइन पार कर दूसरी दिशा की ओर भागने लगा। वो एक खेत पार कर रहा था कि तभी वहां काम करने वाले मजदूरों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। ये देवनारायण तिवारी थे। अगले दिन एक विश्वासघाती ने यशवंत सिंह का पता दिया और वो भी गिरफ्तार हो गए। और इसके कुछ दिनों बाद दलपत राव भी पकड़े गए। तीनों क्रांतिकारियों पर 10 अगस्त 1931 को खंडवा की अदालत में मुकदमा चला। 21 सितंबर 1931 को यशवंत सिंह और देव नारायण तिवारी को फांसी की सजा सुनाई गई तथा दलपत राय को आजन्म निर्वासन का दंड दिया गया। फांसी के पूर्व यशवंत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखते हुए कहा, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आप मेरी मृत्यु से दुखी न हों। आप यही समझें कि आप 6 नहीं 5 पुत्रों के ही पिता थे। मैं एक वीर की मौत मरूंगा। आपको भी मुझ पर गर्व होना चाहिए। और इस तरह 21 सितंबर 1931 को जबलपुर के केंद्रीय कारागार में यशवंत सिंह को देवनारायण तिवारी के साथ फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। आंखों में भारत की आजादी का स्वप्न लिए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अमर हो गए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 100 पतवारों वाला जहाज। कल्पना कीजिए 100 चप्पुओं वाला एक विशाल जहाज जो हजारों साल पहले एक भयंकर समुद्री तूफान से लड़ रहा है। एक प्राचीन ऋग्वेद में दर्ज राजा तुग्र के पुत्र राजकुमार भुज्जू की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक साहसी नौसैनिक अभियान का नेतृत्व करते समय भुज्जू का विशाल जहाज एक भीषण चक्रवात की चपेट में आ गया और बीच समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब लहरें उन्हें निगलने ही वाली थीं, तब जुड़वां देवताओं अश्विनों ने अपनी नाव के साथ उतरकर उनका चमत्कारिक बचाव किया। यह पौराणिक कथा सिद्ध करती है कि वैदिक काल का भारत न केवल समुद्र में उतरता था बल्कि वे दोष रहित मजबूत और विशाल जहाजों का निर्माण भी करते थे जो पूर्वी और पश्चिमी महासागरों को पार करने में सक्षम थे। उत्तर जीविता की यह हजारों साल पुरानी महागाथा भारत के समुद्री गौरव के उदय का प्रतीक है।
2: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थीं, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम में आपको सुना रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी आहुति। जनाने अस्पताल के पर्दा वार्ड में दो स्त्रियों को एक ही दिन बच्चे पैदा हुए। कमरा नंबर 5 में बाबू राधेश्याम जी की स्त्री मनोरमा को दूसरी बार पुत्र हुआ था। उन्हें प्रसूति ज्वर हो गया था। उनकी अवस्था चिंताजनक थी, वे मृत्यु की घड़ियां गिन रही थी। कमरा नंबर 6 में कुंतला की मां के 7वां बच्चा लड़की हुई थी। मां बेटी दोनों स्वस्थ और प्रसन्न थी। घर में कोई बड़ा आदमी ना होने के कारण मां की देखभाल कुंतला ही करती थी। उसके पिता एक दफ्तर में नौकरी करते थे, उन्हें पत्नी की देखभाल करने की फुर्सत ही कहां थी। पंडित राधेश्याम जी एडवोकेट, अपनी मां और कई नौकरों के रहते हुए भी पत्नी को छोड़कर कहीं न जाते थे। 10 दिन के बाद कुंतला की मां पूर्ण स्वस्थ होकर बच्ची समेत अपने घर चली आई और उसी दिन राधेश्याम जी की स्त्री का देहांत हो गया। अपने नवजात शिशु को लेकर वे भी घर आए, किंतु पत्नी विहीन घर उन्हें जंगल से भी अधिक सूना मालूम हो रहा था। पत्नी के देहांत के बाद राधेश्याम जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे दूसरा विवाह नहीं करेंगे। मनोरमा पर उनका अत्यंत प्रेम था। वे अपने चिन्ह स्वरूप जो छोटा सा बच्चा छोड़ गई थी, वही राधेश्याम जी का जीवन आधार था। वे कहते थे कि इसी को देखकर और मनोरमा की मूर्ति की पूजा करते हुए ही अपने जीवन के शेष दिन बिता देंगे।

जिस हृदय मंदिर में वे एक बार मनोरमा की पवित्र मूर्ति की स्थापना कर चुके थे, वहां पर किसी दूसरी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते थे। घर से उन्हें विरक्ति सी हो गई थी। भीतर वे बहुत कम आते, अधिकतर बाहर बैठक में ही रहा करते। घर में आते ही वहां की एक एक वस्तु उन्हें मनोरमा की स्मृति दिलाती, उनका हृदय विचलित हो जाता। जिस कमरे में मनोरमा रहा करती थी उसमें सदा ताला पड़ा रहता। उस कमरे में वे उस दिन से कभी न गए थे जिस दिन से मनोरमा वहां से निकली थी। जीवन से उन्हें वैराग्य सा हो गया था। आने जाने वालों को वो संसार की असारता और शरीर की नश्वरता पर लेक्चर दिया करते। कचहरी जाते वहां भी जीना लगता। जिन लोगों से 50 रुपया फीस लेनी होती उनका काम 25 में ही कर देते। गरीबों के मुकदमे में बिना फीस के ही खड़े हो जाते। सोचते रुपए के पीछे हाय हाय करके करना ही क्या है, किसी तरह जीवन को ढकेल ले जाना है। तात्पर्य ये कि जीवन में उन्हें कोई रुचि न रह गई थी। दूसरे विवाह की बात आते ही उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर किसी को अधिक कहने सुनने का साहस ना होता। अतएव सभी ये समझ चुके थे कि राधे श्याम जी अब दूसरा विवाह नहीं करेंगे। उनकी माता ने भी अनेक बार दूसरे विवाह के लिए कहा, किंतु वे टस से मस न हुए। अंत में वे अपनी शिक्षा को साथ लिए इस लोक से विदा हो गई। इसके कुछ ही दिन बाद राधेश्याम जब एक दिन अपनी बैठक में कुछ मित्रों के साथ बैठे थे और बाहर उनका लड़का हरिहर नौकर के साथ खेल रहा था, सामने से एक तांगा निकला। न जाने कैसे तांगे का एक पहिया निकल गया और तांगा कुछ दूर घिसटता हुआ चला आया। एक 7-8 साल का बालक तांगे पर से गिर पड़ा और एक बालिका जो कदाचित उसकी बड़ी बहन थी गिरते गिरते बचकर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। बालक को अधिक चोट आई थी। बालिका ने मृग शावक की तरह घबराए हुए अपने दो सुंदर नेत्र चंचल गति से सहायता के लिए चारों ओर फेरे, फिर अपने भाई को उठाने लगी। राधे श्याम जी ने देखा और दौड़ पड़े, बालक को उठाकर झाड़ने पहुंचने लगे। राधे श्याम के एक मित्र जगमोहन जो राधे श्याम के साथ ही दौड़कर बाहर आए थे, बालिका को संबोधन करके बोले, कहां जा रही थी कुंतला? मौसी के घर जनेऊ है, वहीं अम्मा के पास जा रही थी, कुंतला ने शर्माते हुए कहा। कुंतला को देखते ही राधे श्याम जी की सोई हुई स्मृति जाग उठी। दूसरा तांगा बुलवाकर कुंतला को उसमें बिठाकर उसे रवाना करके राधे श्याम जगमोहन के साथ अपनी बैठक में आ गए। एक दिन बात ही बात में राधे श्याम ने जगमोहन से पूछा, भाई ये किसकी लड़की थी जो उस दिन तांगे से गिर पड़ी थी? जगमोहन ने बतलाया, वो पंडित नंद किशोर तिवारी की कन्या है। पढ़ी लिखी, गृह कार्य में कुशल और सुंदर होने पर भी धनाभाव के कारण अभी तक कुंवारी है। बेचारे तिवारी जी 50 रुपए माहवार पर एक ऑफिस में नौकर हैं। बड़ा परिवार है, 50 रुपए में तो खाने पहनने को भी मुश्किल से पूरा पड़ता होगा। फिर लड़की के विवाह के लिए 2-3 हजार रुपए कहां से लाएं? कान्य कुब्जों में तो बिना हरौनी के कोई बात ही नहीं करता। कष्ट में ही है बेचारी, लड़की सयानी है, पढ़ा लिखा कर किसी मूर्ख के गले भी तो बांधते नहीं बनता। एक बार तिवारी जी पर उपकार करने की सद्भावना से राधे श्याम जी का हृदय आतुर हो उठा, किंतु तुरंत ही मनोरमा की स्मृति ने उन्हें सचेत कर दिया। तिवारी जी पर उपकार करना मनोरमा को हृदय से भुला देना था। राधे श्याम को जैसे कोई भूली सी बात याद आ गई। वे अपने आप ही सिर हिलाते हुए बोल उठे, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। राधे श्याम के हृदय की हलचल को जगमोहन ने ताड़ दिया। वार करने का उन्होंने यही उपयुक्त अवसर समझा। संभव है निशाना ठीक पड़े। तुम क्या कहते हो राधे श्याम, है ना लड़की बड़ी सुंदर, पर बिचारी को कोई योग्य वर नहीं मिलता। अगर तुम इससे विवाह कर लो तो कैसा रहे? राधे श्याम उदासीनता से बोले, भाई लड़की सुंदर तो जरूर है, पर मैंने तो विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर ली है। जगमोहन उत्साह भरे शब्दों में बोले, अरे छोड़ो भी, ऐसी प्रतिज्ञा तो पत्नी के देहांत के बाद सभी करते हैं। उसके माने ये थोड़ी है कि फिर कोई विवाह करता ही नहीं। अरे भाई, जन्म और मृत्यु जीवन में लगा ही रहता है। संसार में जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और जो मरा है फिर आएगा। रंज किसे नहीं होता, किंतु उस रंज के पीछे बैरागी थोड़े बन जाना पड़ता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, यही ना 35-36 साल की, बस
जीवन भर तपस्या करने की बात है। बिना स्त्री के घर जंगल से भी बुरा रहता है। ब्रजेश की मां 4 ही 6 दिनों के लिए मायके चली जाती है तो घर जैसे काटने को दौड़ता है। राधे श्याम बोले, ये कोई बात नहीं जगमोहन, घर से तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। जिस दिन मनोरमा का देहांत हुआ, घर मेरे लिए घर ही नहीं रह गया। बात इतनी है कि बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अम्मा थी तब तक तो कोई बात ही ना थी, पर अब बच्चे की कुछ देखभाल नहीं होती। नौकरों पर बच्चे को छोड़ देना उचित नहीं, और मैं कितनी देखभाल कर सकता हूं तुम ही सोचो। परिणाम यह हुआ कि बच्चा दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा है। राधे श्याम का विवाह कुंतला के साथ हो गया। उनकी उजड़ी हुई गृहस्थी में बाहर आ गई। मनोरमा के बंद कमरे का ताला खोलकर उनके चित्रों पर हल्की रंगीन जाली का पर्दा डाल दिया गया। उस घर में फिर से नूपुर की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। चतुर्ग्रहणी का हाथ लगते ही घर फिर स्वर्ग हो गया। कुंतला की कार्य कुशलता और बुद्धि की कुशाग्रता पर राधेश्याम मुग्ध थे। कुंतला के प्रेम के प्रकाश से उनका हृदय आलोकित हो उठा। अब वहां पर मनोरमा की धुंधली स्मृति के लिए भी स्थान न था, वे पूर्ण सुखी थे। राधेश्याम जी ने दूसरा विवाह किया था, संभवतः हरिहर की देखभाल के ही लिए, किंतु उस समय कुंतला को हरिहर से अधिक राधेश्याम की देखभाल करनी पड़ती। उनकी देखभाल से ही वो परेशान हो जाती, इतनी थक जाती कि उसे हरिहर की तरफ आंख उठाकर देखने का भी अवसर न मिलता। कुंतला के असाधारण रूप और यौवन ने तथा राधेश्याम जी की ढलती अवस्था ने उन्हें आवश्यकता से अधिक असावधान बना दिया था। बुरा भला कैसा भी काम हो, सबकी एक सीमा होती है। राधेश्याम के इस अनाचार से कुंतला को जो मानसिक वेदना होती सो तो थी ही, किंतु उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़े बिना ना रहा। कुंदन की तरह उसका चमकता हुआ रंग पीला पड़ गया, आंखें निस्तेज हो गईं। 6 महीने की बीमार मालूम होती है। वैसे ही वो स्वभाव से सुकुमार थी। अब चलने में उसके पैर कांपते, सदा हाथ पैर में दर्द बना रहता, जी सदा ही अलसाया रहता। खाट पर लेट जाती तो उठने की हिम्मत न पड़ती। कुंतला की इस अवस्था से राधेश्याम अनभिज्ञ हूं सो बात न थी, उन्हें सब मालूम था। कभी कभी ग्लानि और पश्चाताप उन्हें भले ही होता, किंतु लाचार थे। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वो राधेश्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, किंतु वो तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भांवरे फिर लेने के बाद राधेश्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली मिल सी चुकी थी।

इधर कुछ दिनों से शहर में एक स्त्री समाज की स्थापना हुई थी। एक दिन उसकी कार्यकारिणी की कुछ महिलाएं आकर कुंतला को निमंत्रण दे गईं। कुंतला ने सोचा, अच्छा ही है, घंटे दो घंटे घर से बाहर रहकर अपने जीवन के अतिरिक्त भी देखने और सोचने समझने का अवसर मिलेगा। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, वहां गई भी। वहां जितनी स्त्रियों ने भाषण पढ़े या दिए कुंतला ने सुने। उसने सोचा वो इन सबसे अधिक अच्छा लिख सकती है और बोल सकती है। घर आकर उसने भी एक लेख लिखा, विषय था भारत की वर्तमान सामाजिक अवस्था में स्त्रियों का स्थान। राधेश्याम ने भी लेख देखा, बहुत प्रसन्न हुए। लेख लिए हुए वे बाहर गए, बैठक में कई मित्र थे, उन्हें दिखलाया। सभी ने लेखिका की शैली और सामयिक ज्ञान की प्रशंसा की। अपने एक साहित्य सेवी मित्र अखिलेश्वर को लेकर राधेश्याम भीतर आए। कुंतला को बुलाकर बोले, कुंतला तुम्हारा लेख बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना अच्छा लिख सकती हो, नहीं तो तुमसे सदा लिखते रहने का आग्रह करता। तुम्हारे इस लेख में कहीं कहीं भाषा की त्रुटियां हैं जरूर, पर ये मेरे मित्र अखिलेश्वर ठीक कर देंगे। अब तुम रोज कुछ लिखा करो, ये ठीक कर दिया करेंगे। मुझे तो भाषा का ज्ञान नहीं, अन्यथा मैं ही देख लिया करता। खैर कोई बात नहीं, ये भी घर ही कैसे आदमी है। कुंतला के लेखों का भार अखिलेश्वर को सौंपकर राधेश्याम को बहुत संतोष हुआ। कुंतला को अब एक ऐसा साथी मिला था जिसकी आवश्यकता वो बहुत दिनों से कर रही थी, जो उसे घरेलू जीवन के अतिरिक्त और भी बहुत सी उपयोगी बातें बता सकता था, जो उसे अच्छे से अच्छे लेखकों और कवियों की कृतियों का रसास्वादन करा के साहित्य के जगत की सैर करा सकता था। कुंतला अखिलेश्वर का साथ पाकर बहुत संतुष्ट थी। अब उसे अपना जीवन उतना कष्टमय और नीरस मालूम न होता था। कुंतला और अखिलेश्वर प्रतिदिन एक बार अवश्य मिला करते। कुंतला की अभिरुचि साहित्य की ओर देखकर उसकी विलक्षण कुशाग्र बुद्धि और लेखन शैली की असाधारण प्रतिभा पर अखिलेश्वर मुग्ध थे। वे उसे एक सुयोग्य रमणी बनाने में तथा उसकी प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। लाइब्रेरी में जाते, अच्छी से अच्छी पुस्तकें लाते और उसे घंटों पढ़कर सुनाया करते। कविवर शेली, टेनिसन और कीट्स तथा महाकवि शेक्सपियर आदि के ऊंचे दर्जे की कविताएं उसे पढ़कर सुनाते, उसके सामने व्याख्या तथा आलोचना करते और उससे करवाते। हिंदी के धुरंधर कवियों की रचनाएं सुनाकर वे कुंतला की प्रवृत्ति कविता की ओर फेरना चाहते थे। उनका विश्वास था कि कुंतला लेखों से कहीं अच्छी कविताएं लिख सकेगी। किंतु अब राधेश्याम को कुंतला के पास अखिलेश्वर का बैठना अखरने लगा था। कभी कभी सोचते शायद कुंतला के सुंदर रूप पर ही रीझ कर अखिलेश्वर उसके साथ इतना समय व्यतीत करते हैं, किंतु वे प्रकट में कुछ ना कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही तो उनका आपस में परिचय कराया था। कुंतला राधेश्याम के मन की बात समझती थी, इसलिए वो बहुत सतर्क रहती, किंतु फिर भी यदि भूल से उसके मुंह से अखिलेश्वर का नाम निकल जाता तो राधेश्याम के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भभक उठती। अब अखिलेश्वर के लिए राधेश्याम के हृदय में मित्र भाव की अपेक्षा ईर्ष्या का भाव ही अधिक था। इन्हीं दिनों कुंतला ने दो चार तुकबंदियां भी की जिनमें कल्पना की बहुत ऊंची उड़ान और भावों का बहुत सुंदर समावेश था, किंतु शब्दों का संगठन उतना अच्छा नहीं था। अपने हाथ के लगाए हुए पौधों में फूल आते देखकर जिस प्रकार किसी चतुर माली को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार कुंतला की कविताएं देखकर अखिलेश्वर खुश हुए। उन्होंने कविताएं कई बार पढ़ी और राधेश्याम को भी पढ़कर सुनाई, कुंतला की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, किंतु राधेश्याम खुश न हुए। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कुंतला ने अखिलेश्वर के विरह में ही विकल होकर ये कविताएं लिखी हैं। अखिलेश्वर निष्कपट और निस्वार्थ भाव से कुंतला का शिक्षण कर रहे थे, उन्हें कुंतला से कोई विशेष प्रयोजन न था। कुंतला के शिक्षण से उन्हें इतना ही आत्मसंतोष था कि वे साहित्य की सेविका तैयार कर रही हैं, जिसके द्वारा कभी न कभी साहित्य की कुछ सेवा अवश्य होगी। राधे श्याम के हृदय में इस प्रकार उनके प्रति ईर्ष्या के भाव प्रज्वलित हो चुके हैं, इसका उन्हें ध्यान भी न था। अखिलेश्वर कई दिनों तक लगातार बीमार रहने के कारण घर के बाहर न निकल सके। खाट पर अकेले पड़े पड़े धनिया गिनते हुए अनेक बार कुंतला की उन्हें याद आई। कई बार उन्होंने सोचा कि उसे बुलवा भेजें, फिर न जाने क्या आगा पीछा सोचकर वे कुंतला को बुला न सके। इधर कई दिनों से अखिलेश्वर का कुछ भी समाचार न पाकर
कुंतला भी उनके लिए उत्सुक थी। वो बार बार सोचती, एकाएक इस प्रकार आना बंद क्यों कर दिया, क्या बात हो गई। किंतु वो अखिलेश्वर के विषय में राधेश्याम से कुछ पूछते हुए डरती थी। इसी बीच एक दिन कुंतला की मां ने कुंतला को बुलवा भेजा। राधेश्याम कुंतला से यह कहकर कि जब तांगा आवे तुम चली जाना, कचहरी चले गए। कुंतला मां के घर जाकर जब वहां से 3 बजे लौट रही थी तो उसे रास्ते में हाथ में दवा की शीशी लिए हुए अखिलेश्वर का नौकर मिला। नौकर से मालूम करके कि अखिलेश्वर बीमार हैं, कई दिनों तक तेज बुखार रहा है, अब भी कई दिन घर से बाहर न निकल सकेंगे, कुंतला अपने को रोक न सकी। क्षण भर के लिए अखिलेश्वर से मिलने उसका हृदय व्याकुल हो उठा। अखिलेश्वर के मकान के सामने पहुंचते ही तांगा रुकवा कर वो अंदर चली गई। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। अचानक कुंतला को अपने कमरे में देखकर अखिलेश्वर को विस्मय और आनंद दोनों ही हुए। अपनी खाट के पास ही कुंतला के बैठने के लिए कुर्सी देकर स्वयं उठकर खाट पर बैठ गए। बोले, कुंतला तुम कैसे आ गई, इस बीमारी में मैंने तुम्हारी बहुत याद की। इसी समय राधेश्याम जी ने कमरे में प्रवेश किया। कुंतला कुछ भी ना बोल पाई। राधेश्याम को देखते ही अखिलेश्वर ने कहा, आओ भाई राधेश्याम, आज ही कुंतला आई तो तुम भी आए, वरना आज 8 दिन से बीमार पड़ा हूं, रोज ही तुम्हारी याद करता था पर तुम लोग कभी ना आए। फिर घड़ी की ओर देखकर बोले, आज 3 ही बजे कचहरी से कैसे लौट आए। राधेश्याम ने रुखाई से उत्तर दिया, कोई काम नहीं था इसलिए चला आया। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, चलो चलती हो, मैं तो जाता हूं। अखिलेश्वर ने बहुत रोकना चाहा पर बिना रुके चले ही गए। उनके पीछे पीछे कुंतला भी चली। जाते जाते उसने अखिलेश्वर पर ऐसी मार्मिक दृष्टि डाली जिसमें न जाने कितनी करुणा, कितनी विवशता, कितनी कातरता और कितनी दीनता थी। कुंतला चली गई, किंतु उसकी इस करुण दृष्टि से अखिलेश्वर की आंखें खुल गईं। राधेश्याम के आंतरिक भावों को वे अब समझ सके। घर पहुंचकर कुंतला कुछ न बोली, वो चौके में चली गई। कुछ ही क्षण बाद उसने लौट कर देखा कि उसके लेख, कविताएं, कॉपियां, पेंसिलें और अखिलेश्वर द्वारा उपहार में दी हुई फाउंटेन पेन सब समेट कर किसी ने आग लगा दी। उसी अग्नि में अखिलेश्वर का वो प्यारा चित्र कुछ ही क्षण पहले ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, धू धू करके जल रहा है और ऊपर उठती लपटें मानो ये कह रही हैं, कुंतला ये तुम्हारे साहित्य के जीवन की चिता है।

0: श्रोताओं, ये थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी आहुति। अपने अगले अंक में, अपने अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसी ही कहानी को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अपने किस्सा गो संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भयानक महीना जब शराब का बिल मुनाफे से ज्यादा हो गया। क्या आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक अकेली फैक्ट्री ने एक बार शराब का इतना भयानक बिल बना दिया था कि वह उसके पूरे साल के निर्यात मूल्यों से भी अधिक हो गया। कंपनी के अभिलेखागार में अत्यधिक फिजूल खर्ची के इस दौर को द मॉन्स्टर्स मंथ यानी भयानक महीने के रूप में दर्ज किया गया है। इस राजकोषीय और शारीरिक अय्याशी का दृश्य सुमात्रा के अलग थलग पश्चिमी तट पर स्थित बैनकुलन, जिसे यार्क फोर्ट या फोर्ट मालबोरो के नाम से भी जाना जाता था। 18वीं सदी की शुरुआत में बैनकुलन अपनी जहरीली जलवायु और नगण्य व्यापार के लिए बदनाम था, जहां केवल अपमानित, दिवालिया या वास्तव में हताश लोगों को ही भेजा जाता था। इस मलेरिया वाले क्षेत्र से जीवित बचने वालों में जोसेफ कॉलेट भी शामिल थे, जो एक दिवालिया थे लेकिन अपने कार्यकाल के बाद अंततः मद्रास की काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। हालांकि हर कोई कॉलेट की तरह इस उष्णकटिबंधीय कष्ट को सहन नहीं कर पाया। जुलाई 1716 में कॉलेट के कार्यकाल के अंतिम महीने में केवल 19 अनुबंधित कर्मचारियों अर्थात वह व्यापारी जिन्हें कंपनी के खर्च पर भोजन करने का अधिकार था, कि एक छोटे से समूह ने सुमात्रा की कथित उदासी और तकलीफों को मिटाने के लिए भारी मात्रा में शराब का सहारा लिया। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या पिया था? लंदन के डरे हुए निदेशकों के अनुसार, जिन्होंने बाद में खातों की बारीकी से जांच की, उनके अनुसार इन 19 पुरुषों ने 75 दर्जन महंगी वाइन बोतलें, जिनमें ज्यादातर महंगी क्लैरेट थी, बियर की 24 दर्जन बोतलें जिनमें खासकर बर्टन एलिस और पेल बियर, 164 गैलन गोवा ताड़ी, लगभग विशाल बैरल बटाविया अराक के साथ ही साथ मदिरा और शिराज वाइन की अतिरिक्त मात्रा शामिल थी। जब लिडेन हॉल स्ट्रीट के ऑडिटर्स ने आंकड़ों की गणना की तो वे दंग रह गए। केवल उस एक महीने में पी गई शराब की लागत पूरी फैक्ट्री द्वारा साल भर में निर्यात की गई काली मिर्च के कुल मूल्य से भी अधिक थी। निदेशकों ने एक तीखा पत्र भेजा, यह आश्चर्य जताते हुए कि इनमें से कोई भी कर्मचारी अब तक जीवित कैसे है। उन्होंने लिखा, हमें आश्चर्य है कि आप में से कोई भी 6 महीने भी जीवित रहता है और आप लोगों के बीच और अधिक झगड़े और द्वंद नहीं होते, यदि शराब का आधा हिस्सा भी आपने कटक लिया हो। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि भविष्य में कर्मचारी अपनी मौज मस्ती का भुगतान स्वयं करें और कंपनी अब उनके स्वाद के लिए सब्सिडी नहीं देगी। लेकिन यहां एक अंतिम और विडंबनापूर्ण मोड़ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन कर्मचारियों को यह फटकार कभी मिली ही नहीं। जब तक पत्र सुमात्रा के तट पर पहुंचा, फोर्ट मालबोरो जलकर खाक हो चुका था। कर्मचारियों द्वारा वर्षों के उकसावे वाले व्यवहार और उत्पीड़न के कारण एक विशाल स्थानीय विद्रोह भड़क उठा था, जिसने जीवित बचे लोगों को अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की लहरों के पार भागने पर मजबूर कर दिया। मॉन्स्टर्स मंथ इस बात की याद दिलाता है कि भले ही कंपनी व्यापारियों की एक संस्था थी, लेकिन इसके दुरुस्त ठिकाने अक्सर अय्याशी के विक्षुब्ध अड्डे थे, जहां पुरुष अपने निर्वासन की सड़ांध भरी वास्तविकता से बचने के लिए शाब्दिक रूप से कंपनी के मुनाफे को पी जाते थे।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज़में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
0: 22 साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें यह सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंझे हुए कलाकारों को नहीं लिया, वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी, पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त

0: और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा जहां असली कला अब भी जिंदा है।
1: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
0: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
1: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
0: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
1: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
0: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे। वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे, अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
1: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
0: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
1: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
0: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
1: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरणदास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
0: श्रोताओ, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
1: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा, बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की, जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलिशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
0: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
1: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
0: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
1: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
0: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसके कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
1: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
0: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
1: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए, बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहाँ रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
0: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 2400 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहाँ की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
1: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए।
0: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
1: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
0: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
1: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है। कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
0: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों के तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
1: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का। परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
0: मैं थी आपके साथ स्वाति।
1: अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
0: 90.8 MHz पर इस वक्त आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति को समर्पित विशेष कार्यक्रम कलाम किस्से बातें और यादें। ईश्वर की बनाई ये दुनिया दो धाराओं पर किसी तिनके की तरह थिरकती है, जिसकी एक धारा पर बिछा हुआ है दुनिया भर का गणित और दूसरी धारा पर सजा है मन का भूगोल। इन्हीं दो धाराओं के बीच जिंदगी चलती है, उलझती है, आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा गया है, ये जिंदगी तुम्हारे कदमों के साथ चलती है, कभी हंसी की सरगम पर थिरकती, कभी आंसुओं के छंद पर सरकती, तो कभी सपनों के ताल पर सूरतें बदलती। ये जिंदगी तुम्हारे कदमों के साथ चलती है। जिंदगी का ये तोहफा हम सभी को मिला है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दुनिया भर के गणित और मन के भूगोल के बीच मुस्कुराती जिंदगी को जिया कैसे जाए। जिंदगी को जीने का यही हुनर सिखाने के लिए ईश्वर कुछ करिश्माई इंसान बनाता है जो इस पूरी दुनिया को जीना सिखाता है। एक ऐसा ही अद्वितीय अभूतपूर्व जीवन था देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। APJ अब्दुल कलाम सिर्फ एक नाम, एक व्यक्तित्व नहीं, ये एक दर्शन है, फिलॉसफी। एक ऐसी फिलॉसफी, एक ऐसा दर्शन जिसके बनने में कितनी सदियां बीत जाती हैं, और कभी जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए ईश्वर एक अब्दुल कलाम पैदा कर देता है।

0: जी हाँ श्रोताओं, बहती हवा सा एक जीवन, महकते मुस्कुराते फूल सा एक जीवन, जो आज भी भरता है जीवन में सपनों के रंग, जो थमा देता है जीवन के सबसे बुरे वक्त में भी साहस की लाठी, और मुश्किलों से हमारा मन उबर आता है। उन्हें याद करते ही आसमान के अनंत विस्तार में जैसे उभर आती है मासूम बच्चे सी मुस्कुराहट। माथे पर झूलती दो लटें और सितारों सी चमकती दो आंखें जो कहती हैं हमसे,
1: आसमान की ओर देखें, पूरा ब्रह्मांड हमारा मित्र है, और जो सपना देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उन्हें बेहतरीन फल देने का प्रयास ये ब्रह्मांड कर रहा है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं।
0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके जीवन के सारे आरोह अवरोह इस दुनिया में एक अफसाना बनकर गूंज रहे हैं, उनके जीवन के किस्से, उनकी बातें और यादें आज इस कार्यक्रम में हम आपसे साझा कर रहे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो कहलाए जनता के राष्ट्रपति, जो देश के राष्ट्रपति होने के पहले ही भारत रत्न से विभूषित थे। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, एक गहरी शालीनता और चेहरे पर सदा बाल सुलभ मुस्कुराहट। एक ठहराव उनके भीतर था जो सभी को मोह लेता था, और उनकी बातों में उतनी ही गहराई होती थी। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक और अभियंता थे, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें हमेशा एक टीचर, एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। उन्होंने कई बार राष्ट्रपति पद के प्रोटोकॉल को तोड़ा, और इस पद पर रहते हुए भी वो छात्रों से रूबरू होते रहे, लेक्चर दिए और युवा वर्ग की जिज्ञासाओं को शांत किया। कलाम साहब लड़ाकू विमान सुखोई में को पायलट भी बने और सियाचिन में लेक्चर दिया। भारत के अंतरिक्ष से जुड़े अनेक मिशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऐसे थे करिश्माई कलाम। आज इस कार्यक्रम में हम उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व और महान उपलब्धियों की बातें करेंगे। आइए पहले चलते हैं उनके बचपन की ओर, वो बचपन जहां उन्हें गढ़ने वाले माता पिता और गुरु हैं, और उन्हें रचने वाली, संवारने वाली कठिन संघर्षपूर्ण परिस्थितियां हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास एक गांव है धनुषकोडी, जहां 15 अक्टूबर सन 1931 को एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और न ही पैसे वाले थे। मछुआरों को किराए से नाव दिया करते थे और इन्हीं पैसों से परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था, 5 भाई और 5 बहन और साथ में 3 और परिवार। लेकिन पिता ने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, माँ और दादी ने घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। इस तरह माता पिता की दी हुई शिक्षा और उनके दिए संस्कारों ने अब्दुल कलाम को गढ़ा। कलाम घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उनके हिस्से सभी का प्यार और दुलार खूब आया। 5 वर्ष की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत एलिमेंट्री स्कूल में अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का दीक्षा संस्कार हुआ। लेकिन उनका छात्र जीवन बहुत संघर्ष से भरा रहा। जब वो प्राइमरी में पढ़ते थे तब सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, उठकर स्नान करते और गणित की ट्यूशन पढ़ने चले जाते। ये ट्यूशन पढ़ाते थे स्वामी अय्यर। वो साल में केवल 5 छात्रों को ही मुफ्त ट्यूशन पढ़ाया करते थे, और उनकी शर्त होती थी कि छात्र बिना स्नान किए ट्यूशन पढ़ने नहीं आएंगे। लिहाजा सुबह गणित की ट्यूशन जाने से पहले स्नान करना बेहद जरूरी था। 5:30 बजे ट्यूशन से लौटकर वो पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते, और फिर घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर अखबार इकट्ठा करने जाते। अखबार इकट्ठा करके वो उन्हें घर घर बांटते, इसकी एवज में उन्हें कमीशन मिलता। इस तरह ट्यूशन, पढ़ाई और कमाई का सिलसिला चलता रहा। इन कठिन दिनों में उनकी माँ ने पढ़ाई में उनका बहुत सहयोग किया। वो कहा करते थे,
1: मेरे बचपन को निखारने में मेरी माँ का बहुत योगदान रहा। उन्होंने मुझे अच्छे बुरे की शिक्षा दी। माँ सुबह 4 बजे उठकर मुझे स्नान कराकर ट्यूशन के लिए तैयार करती थी। जिन दिनों मैं पढ़ रहा था, उन दिनों आम घरों में रोशनी के लिए केरोसिन लैंप का इस्तेमाल किया जाता था। केरोसिन पैसे देकर खरीदना पड़ता था, लिहाजा शाम को लैंप केवल 7 से 9 बजे तक ही जलाया जाता था। लेकिन पढ़ाई के प्रति मेरे रुझान को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे लिए एक छोटा लैंप खरीदा हुआ था, जिससे मैं रात को 11 बजे तक पढ़ सकता था। मेरी माँ ने अगर बचपन में मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंच पाता।
0: जी हाँ श्रोताओं, अपनी माँ के प्रति कलाम साहब आजीवन आभारी रहे। उनका बचपन, बचपन का संघर्ष और माँ का साथ और दुलार उन्हें हमेशा भीतर तक भिगोता रहा। अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। इस कविता में वो कहते हैं, समंदर की लहरें, सुनहरी रेत, श्रद्धानत तीर्थ यात्री, रामेश्वरम द्वीप की वो छोटी पूरी दुनिया, सब में तू निहित, सब तुझ में समाहित, तेरी बाहों में पला मैं, मेरी कायनात रही तू, जब छिड़ा विश्व युद्ध छोटा सा मैं, जीवन बना था चुनौती, जिंदगी अमानत, मीलों चलते थे हम, पहुंचते किरणों से पहले, कभी जाते मंदिर लेने स्वामी से ज्ञान, कभी मौलाना के पास लेने अरबी का सबक, स्टेशन को जाती रेत भरी सड़क, बांटे थे अखबार मैंने, चलते पलते साये में तेरे। माँ के नाम लिखी इस लंबी कविता के अंत में कलाम साहब कहते हैं, आधी रात में अधमुंदी आंखों से तकता तुझे, थामता आंसू पलकों पर, घुटने के बल बाहों में घेरे खड़ा था मैं, तूने जाना था दर्द मेरा, अपने बच्चे की पीड़ा, तेरी उंगलियों ने निथारा था दर्द मेरे बालों से, और भरी थी मुझ में अपने विश्वास की शक्ति, निर्भय हो जीने की, जीतने की, जिया मैं मेरी माँ और जीता मैं, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, कयामत के दिन मिलेगा तुझसे फिर तेरा कलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। श्रोताओं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में माता पिता और गुरु, इन तीनों की भूमिका को हमेशा बहुत गहराई से रेखांकित किया। उनका मानना था कि उन्हें जो भी संस्कार मिले वो उनके माता पिता ने दिया, और जीवन में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले अनमोल शिक्षक मिले, इसीलिए माता पिता और गुरु के प्रति उनका मन हमेशा श्रद्धा से झुकता रहा।
1: अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और सुंदर मस्तिष्क वालों का देश बनाना है, तो मैं समझता हूं कि समाज के तीन लोग इसमें सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसमें माता, पिता और गुरु सबसे महत्वपूर्ण हैं।
0: श्रोताओं, अपने छात्र जीवन से ही एपीजे अब्दुल कलाम अपने शिक्षकों से बहुत अधिक प्रभावित थे। उनके अध्यापकों ने उन्हें केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी उन्हें दी। उनके भीतर इंसानियत के बीज बोए। उन्हें हमेशा एक से बढ़कर एक शिक्षक मिले। वो हमेशा याद करते थे रामेश्वरम के पंचायत एलिमेंट्री स्कूल के अध्यापक मुथु अय्यर को, जो पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि के कारण उन पर विशेष ध्यान देते थे। तथा कलाम साहब की खराब हैंडराइटिंग में सुधार के लिए उन्होंने उनके पिता से भी बात की थी तथा इस दिशा में विशेष रुचि ली। पांचवी कक्षा में उन्हें शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने पढ़ाया, जो एक बेहतरीन अध्यापक थे। उन्हीं की बदौलत एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि विज्ञान की तरफ हुई। पक्षियों के उड़ने की तकनीक और उनके डायरेक्शन बदलने की तमाम खूबियां समझाने के लिए पूरी कक्षा को वो नदी के किनारे ले गए। वहां मौजूद पक्षियों को दिखाकर उन्होंने विस्तार से बच्चों को समझाया। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु था जब एपीजे अब्दुल कलाम का रुझान फ्लाइट साइंस की ओर हो गया। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के जीवन की दिशा तय हो गई। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद वो मद्रास चले गए और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। इस तरह जीवन की तमाम कठिनाइयों से जूझते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी की। वो कभी हारे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं, और जब भी जीवन में वो कमजोर पड़े, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक उन्हें खड़ा करने के लिए सामने उपस्थित रहा। जब एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए तो ये उनके जीवन का एक अहम मोड़ साबित हुआ। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ब्रह्म प्रकाश जैसी विभूतियों का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ। देश के लिए उन्होंने जुनून की हद तक काम किया। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण योजनाओं में अपनी भूमिका निभाई।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
0: भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिससे रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अग्नि और पृथ्वी मिसाइल के सफल प्रशिक्षण का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। उनकी देखरेख में ही सन 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया और भारत परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम ने देश को सन 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र को अत्याधुनिक करने की सोच भी दी थी। वो भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। इस तरह उन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और भारतीय अनुसंधान संगठन ISRO को संभाला और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों तथा सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में वो शामिल रहे। यही कारण है कि वो मिसाइल मैन के नाम से पुकारे गए। देश दुनिया में उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने सन 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, सन 1990 में पद्म विभूषण और सन 1997 में वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत हुए। सन 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और लोगों ने कहा कि वो जनता के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वो दीवारें हटा दीं जो ऐसे पदों और जनता के बीच होती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अत्यंत सहज और सरल व्यक्ति थे। सूट बूट में उन्होंने हमेशा खुद को असहज पाया, इसीलिए उनके कोट के बंद गले को काटकर एक नया डिजाइन बनाया गया जो कलाम सूट के नाम से जाना गया। चमड़े के जूतों की जगह स्पोर्ट शू उन्हें आरामदायक लगते थे। वो सहजता से जमीन पर बैठकर लोगों से बातें करने लगते। विज्ञान के साथ साथ कला में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी। इसके साथ ही वो रुद्र वीणा भी बजाया करते थे। डॉक्टर कलाम ने अनेक पुस्तकों की रचना की। शिक्षा और शिक्षण से उन्हें बहुत लगाव था। युवाओं को जब वो संबोधित करते तो लगता जैसे कोई ऋषि, कोई संत जीवन ज्ञान की पाठशाला में श्रद्धा से बैठा दीप प्रज्वलित कर रहा हो। विद्यार्थियों से उन्हें इतना लगाव था कि राष्ट्रपति के रूप में जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो अगले ही दिन लेक्चर के लिए वो क्लासरूम में थे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कलाम का जीवन सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला है। ये समस्त अभावों को हराकर जीवन के शीर्ष पर पहुंचने की ही कहानी नहीं है। ये त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के जरिए आसमान में उनके अमिट हस्ताक्षर की ही कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जीवन के हर पल में उच्च आदर्शों की स्थापना की। ये मानवता, दया, करुणा, प्रेम, सच्चाई और अब तक स्थापित समस्त अच्छाइयों की कहानी है। राष्ट्रपति भवन से वापसी के समय जब उनसे पूछा गया कि आपको सामान के लिए कितनी गाड़ियों की जरूरत होगी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मेरा सामान मेरे साथ ही चला जाएगा, सिर्फ 2 सूटकेस हैं मेरे पास। इस तरह एक ऋषि तुल्य राष्ट्रपति की राष्ट्रपति भवन से विदाई हुई। इसी तरह की एक घटना याद आती है जिसका जिक्र उनके सचिव ने अपनी किताब में किया है। मई सन 2006 में डॉक्टर कलाम का सारा परिवार उनसे मिलने दिल्ली आया। कुल मिलाकर 52 लोग थे जो 8 दिन तक राष्ट्रपति भवन में रुके। उनके जाने के बाद डॉक्टर कलाम ने 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। ऐसे संस्कार थे उनके, ऐसे आदर्श थे उनके। श्रोताओं, एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आपके जीवन का सबसे बड़ा पल कौन सा है। इस पर उन्होंने कहा कि जब SLV का सफल परीक्षण हुआ, अग्नि ने अपने टारगेट को छुआ, पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ, सब में मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन सबसे बड़ा पल अलग था। एक हॉस्पिटल जाना हुआ जहां बच्चों को नकली पैर लगाकर चलते देखा मैंने। उन पैरों का वजन 4 से 5 किलोग्राम का था, जिसे लगाकर वो बहुत मुश्किल से चलते थे। मुझे याद आया, हमारी लैब में रॉकेट्स के लिए बहुत हल्का और मजबूत मटेरियल उपलब्ध है। उससे मैंने नए पैर बनाए जिसका वजन 300 से 400 ग्राम था। जब वो पैर मैंने हॉस्पिटल भिजवाया तो उन बच्चों के माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके चेहरों की भीगी हुई खुशी और संतोष मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। ऐसे अनगिनत किस्से हैं उनके जीवन के, जिनकी खुशबू सदियों तक हवाओं में बहती रहेगी, इंसान से इंसान के रिश्ते की कहानी कहती रहेगी। श्रोताओं, डॉक्टर कलाम के आखिरी सफर का एक और किस्सा याद आता है। 6-7 कारों का काफिला IIM शिलोंग के लिए निकला। डॉक्टर कलाम दूसरे नंबर की कार में थे। उनके आगे एक ओपन जिप्सी चल रही थी जिसमें 3 जवान थे। 2 जवान बैठे थे और 1 जवान हाथ में गन लेकर खड़ा था। 1 घंटे के सफर के मैं उससे मिलकर शुक्रिया कहना चाहता हूं। IIM शिलोंग पहुंचने पर उन्होंने उस जवान को अपने कमरे में बुलाया, उससे हाथ मिलाकर शुक्रिया कहा और उससे पूछा, तुम थक गए होगे, क्या कुछ खाना चाहोगे? मैं माफी चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। वो जवान हतप्रभ था, कुछ बोल नहीं पाया, बस इतना ही कहा, सर हम तो आपके लिए 6 घंटे भी खड़े रहेंगे। ये इंसानियत का इंसानियत से साझा संवाद था, एक साझा धन्यवाद था। यही वो संस्कार हैं जहां हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। भारत के लिए भी उनकी आंखों में अनगिनत सपने थे, भविष्य के लिए एक विजन था। IIM शिलोंग में उनके लेक्चर का विषय था क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। उन्हें लगता था कि पॉल्यूशन की तरह इंसान इस धरती पर मौजूद जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया की एक उनकी अपनी तस्वीर थी जिसे वो रचना चाहते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कई पुस्तकों की रचना की, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माय जर्नी, इग्निटेड माइंड। उनकी किताबें जाने कितनी पीढ़ियों को ऊर्जा से भरती रहेंगी। उन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी, लेकिन हर उपलब्धि उनके लिए एक पड़ाव साबित हुई। हर बार वो उठे और आगे चल पड़े एक नई मंजिल की तलाश में। डॉक्टर कलाम अपने जीवन के अंतिम पल तक देश के बारे में ही सोच रहे थे। 27 जुलाई सन 2015 को वो शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। विषय हमने आपको बताया ही, क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ। इस धरती की चिंता में, धरती पर जीवन की चिंता में डूबे वो बोल ही रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और इस संसार से वो विदा हो गए। धरती की महिमा पर लिखी उनकी कविता के शब्द जैसे हवाओं में बिखर गए।
1: देखो धरती की जगमग, देखो, पूछो किरणों से इसका कैसा नाता है। कुछ मीठा सा छू जाता है, एक जवाब वहीं से आता है। नहीं सिर्फ ये महज रोशनी, यहां ज्ञान का प्रकाश जगमगाता है। सेवा का प्रकाश यहां आंखें चुंधियाता है। शांति से रोशन है जो, वही तो धरती माता है, वही तो धरती माता है।
0: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक महकते हुए फूल सा जीवन, जिनकी याद हमारे मन के आसमान में उकेर देती है एक भरा पूरा सा इंद्रधनुष, जो सांस सांस गूंजता है एक कविता बनकर। तुम्हारा होना ऐसा होता है जैसे अलसाई आंखों में रात जाते जाते रख जाए कोई सपना। तुम्हारा होना जैसे दीवार के पार से झांकना धूप का, जैसे बबूल की शाख पर घोंसला बुनना बया का, जैसे छू लेना आंखों से तितली के रंग। तुम्हारा होना जैसे ढूंढ लेना बचपन किसी पुरानी गुड़िया में, जैसे सिमट आना दुनिया का एक आंगन में, जैसे डूब जाना किसी परिंदे का उड़ान में। तुम्हारा होना जैसे खिड़की से होकर गुजर जाना ताजी हवा का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक महान आत्मा, एक महामानव, एक महान जीवन के महायात्री, जिनके एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान है। वो दुनिया की तमाम उपलब्धियों के बाद भी मानवता को, इंसानियत को, मानवीय मूल्यों को जीवन का सार कहते हैं। वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे दिलों में एक खुशबू की तरह वो महकते रहेंगे, एक फूल की तरह मुस्कुराते रहेंगे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, भ्रष्टाचार की सफाई और दीवानी का खेल। क्या आप जानते कि जब लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव 1765 में कलकत्ता लौटे तो उन्हें एक अनुशासित व्यापारिक केंद्र नहीं मिला, बल्कि एक ऐसा शहर मिला जिसे उन्होंने कल्पना से परे लालची और विलासी बताया था। पलासी की जीत के बाद यह तथाकथित स्वर्ग से जन्मा सेनापति अपनी प्रसिद्धि और अपनी आयरिश पियरिज यानी कुलीन पद का आनंद लेने के लिए इंग्लैंड लौट गया था, लेकिन पीछे जो बंगाल छूटा था वह भ्रष्टाचार के गर्त में गिर चुका था। क्या आप जानते हैं कि कंपनी के कर्मचारी वह बन चुके थे जिन्हें एडमंड बर्क ने बाद में शिकारी पक्षियों की नई उड़ान कहा था। धन की अदम्य भूख से प्रेरित मामूली वेतन पाने वाले युवा क्लर्क राइटर अचानक राजकुमारों की तरह रहने लगे थे। वे स्थानीय शासकों से भारी उपहार वसूलते थे और दस्तक, निजी व्यापार, पास के दुरुपयोग के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आतंक फैलाते थे। नवाब का हर बदलाव एक और 5 अंकों वाले इनाम का बहाना बन गया, जबकि कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लॉर्ड क्लाइव अपने तीसरे कार्यकाल के लिए इस व्यापक भ्रष्टाचार की सफाई करने के जनादेश के साथ आए थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने ही सहयोगियों का शिकार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी का इस्तेमाल किया? क्लाइव ने उन्हें मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने पार्षदों को उनकी अचानक बड़ी संपत्ति का विवरण देने के लिए बुलाया और हर अधिकारी को भविष्य में उपहार न लेने के लिए एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लेकिन क्लाइव के सुधारों में एक अजीब विडंबना थी। क्या आप जानते हैं कि जहां वे ईमानदारी की मांग कर रहे थे, वहीं वे खुद अपनी कुख्यात जागीर से सालाना बड़ी रकम प्राप्त कर रहे थे। जब अपमानित पार्षदों ने उन्हें याद दिलाया कि वे केवल उनके द्वारा स्थापित उपहार लेने के उदाहरण का पालन कर रहे थे, तो क्लाइव का जवाब अभिजात्यवाद का एक उत्कृष्ट नमूना था। उन्होंने दावा किया कि उनके पुरस्कार वास्तविक सेवाओं के लिए थे, जबकि उनके सहयोगियों के पुरस्कार निम्न श्रेणी के दावों की लूट थे। निजी व्यापार के मुद्दे को हल करने के लिए क्लाइव ने वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए नमक और तंबाकू पर राज्य स्वीकृत एकाधिकार पेश किया। हालांकि इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए कानूनी आय सुनिश्चित करना था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका परिणाम भूखे किसानों के लिए बढ़ी हुई कीमतों के रूप में निकला, जबकि क्लाइव का व्यक्तिगत हिस्सा बहुत बड़ी रकम से भी बहुत ऊपर पहुंच गया था। सबसे बड़ा सुधार तब आया जब क्लाइव ने मुगल सम्राट से दीवानी अर्थात पूरे बंगाल का राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्राप्त किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ऐतिहासिक समारोह के लिए इस्तेमाल किया गया सिंहासन वास्तव में क्लाइव की अपनी डाइनिंग टेबल थी, जिसे कठपुतली सम्राट के लिए कपड़े से ढक दिया गया था। इस एक कार्य के साथ कंपनी व्यापारियों की एक साधारण समिति से हटकर एक संप्रभु शक्ति बन गई। अंततः क्लाइव का दूसरा प्रशासन एक दृढ़ और जिम्मेदार कमान थोपने में सफल रहा, लेकिन भ्रष्टाचार का वह अस्तबल पूरी तरह साफ होने से कोसों दूर था। उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने घूसखोरी के भाईचारे का उल्लंघन किया, जिससे वे कलकत्ता में सबसे नफरत किए जाने वाले व्यक्ति बन गए और यह सुनिश्चित कर दिया कि उनकी ईश्वरीय विरासत का अंत संसदीय महाभियोग के गंभीर गलियारों में होगा।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन के अंतरंग सभागार में, जहां 24 से 26 जुलाई तक कजरी झूला गायन महोत्सव का आयोजन किया गया।

इस महोत्सव के दूसरे दिन दो प्रस्तुतियां रहीं, ये है फूल सिंह मांडरे और साथियों का गायन।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: कहाँ घूमा है? दिखे नहीं 2-3 दिन से।
1: अरे ये कृपाल ट्रक लेकर जा रहा था। बोला काका कहानी तो सुनाते ही रहते हो, अब कुछ सैर भी कर लो। सिंहगढ़ की तरफ जाना है, आप भी चलो। छत्रपति शिवाजी का बनाया किला देखकर आएंगे और भवानी माई के दर्शन भी हो जाएंगे। बस फिर क्या था, चले गए घूम आए।
2: ना ना काका, ऐसे नहीं चलेगा। जो कुछ देखा समझा सुना हमको सुनाना पड़ेगा और आगे भी सुनाना पड़ेगा, है ना?
1: अरे वाह वाह वाह वाह, तो जम गई महफिल है। तो अब सुनाते हैं तुम्हें कहानी।
2: हाँ, हाँ, काका। हाँ,
1: सुनो भैया, 17वीं शताब्दी सन 1627 देश के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी महाराष्ट्र की धरती पर उठा एक तूफान। ऐसा तूफान जिसने महाराष्ट्र की छोटी मोटी सल्तनतों को ही नहीं बल्कि विशाल मुगल सल्तनत की विशाल फौजों को भी अपनी राजनीतिक चतुराई और युद्ध कौशल से धूल चटा दी, उनकी चूले हिला दी।
2: अरे?
1: हाँ, इस तूफान को हम शिवाजी के नाम से जानते हैं भैया।
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: हर हर
4: महादेव,
3: छत्रपति शिवाजी महाराज की।
5: माँ साहेब को शिवा का प्रणाम।
6: शिवा, आयुष्मान भव, सदा विजयी भव।
5: माँ साहेब के आशीर्वाद से तोरणा किले को हमने जीत लिया।
6: अच्छा, शुभ समाचार है।
5: यही समाचार देने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ।
6: पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। दादाजी कूनदेव पधार रहे हैं पुत्र।
5: दादाजी को शिवा का प्रणाम।
7: कल्याण हो, तोरणा पर विजय पर तुम्हें बधाई।
5: आश्चर्य, इतनी शीघ्र आप तक समाचार।
7: अरे भाई, अपने शिष्य की हर गतिविधि का ज्ञान रखता है एक अच्छा गुरु, क्या समझे हैं?
5: निसंदेह, आपके अच्छे गुरु होने पर किसे संदेह हो सकता है भला?
7: क्या क्या हासिल हुआ विजय में, या केवल पत्थर का किला भर हाथ आया?
5: शाही खजाने में 2 लाख होड़ थे, वो भी हाथ आए हैं।
7: शाबाश।
5: विचार है कि वहाँ से 5 मील दूर जो पहाड़ की एक और चोटी है उस पर नया किला बनाया जाए।
6: अच्छा विचार है शिवा।
5: माँ साहेब, मुझे इस पूरे क्षेत्र को निजाम शाही और सुल्तानों की हुकूमत से मुक्त कराना है।
6: ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे।
5: दादोजी, जो कुछ भी आपने बचपन से सिखाया है उसकी सौगंध है मुझे, यहाँ यहीं के स्थानीय लोगों का राज्य कायम करना है।
7: बचपन से। जीजा
6: जी,
7: सुना तुम्हारा 20 साल का पुत्र क्या कह रहा है?
5: हाँ दादोजी, तोरणा तो शुरुआत भर है।
7: मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र।
1: अरे जानते हो, जुन्नार के नजदीक पहाड़ी किले शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ। बच्चे की सुखद भविष्य के लिए जीजाबाई शिवाई माता की उपासना किया करती थी। माता शिवाई की उपासना का फल मानकर माता जीजाबाई ने बच्चे का नाम रखा शिवाजी। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान के दरबार में छोटे से जागीरदार थे।
6: दादोजी, बीजापुर से संदेश आया है इनका कि शिवा को लेकर मुझे पूना जाना है।
7: हाँ, मेरे पास भी शाहजी ने यही संदेश भेजा है।
6: लेकिन मुझे तो यहाँ माता शिवाई के चरणों में शिवनेरी में ही भला लगता है।
7: सो तो ठीक है, पर शिवा की सुरक्षा और उचित शिक्षा दीक्षा का विचार भी तो करना चाहिए।
6: उसकी शिक्षा दीक्षा तो आपको ही देखनी है दादोजी, फिर शिवनेरी में क्या दिक्कत है?
7: शाहजी भोसले चाहे बीजापुर में रहे सेना के साथ, पर जागीर तो उसकी पूना में ही है ना।
6: ठीक कहा आपने,
7: पूना बड़ी जगह है जहाँ पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो सकती है।
6: ठीक है दादोजी, आप जैसा उचित समझे।
1: शाहजी भोसले एक छोटे से जागीरदार थे। उनकी इच्छा अनुसार दादोजी कोंडदेव शाहजी की पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी को पूना ले आए।
8: फिर काका?
1: फिर दादोजी कोंडदेव स्वयं कुशल प्रशासक होने के साथ शस्त्र विद्या, खासकर तलवार चलाने में अत्यंत निपुण थे। शिवाजी को स्वयं प्रशिक्षण देने के साथ अच्छे प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया। हाँ।
8: अरे वाह।
2: वो मारा मारे मेरे शेर, किस चपलता से बदलता है पेतरा।
6: देखती हूँ, गुरु शिष्य पर और शिष्य गुरु पर निछावर निछावर से रहते हैं।
7: जीजा भाई, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है।
6: किस बात का दादो जी?
7: यही कि बचपन से जो सपना शिवा देखता आया है उसे जरूर पूरा करेगा।
6: इस क्षेत्र को सुल्तान शाही से मुक्त कराने का सपना?
7: हाँ, मेरा शिवा उस सपने को पूरा करने के योग्य बन गया है।
6: शिवा छोटा सा था तब से मैं भी यही सपना देखते आई हूँ दादोजी। इनका बीजापुर के सुल्तान के दरबार में दरबारी बनकर रहना मुझे जरा भी नहीं भाता।
5: दादोजी प्रणाम।
7: प्रणाम।
5: तलवार चालन तो ठीक कर रहा हूँ ना दादाजी?
7: तुम बहुत कुशल हो गए हो।
5: शिष्य आखिर किसका हूँ?
6: देखा, मैं ना कह रही थी।
5: क्या कह रही थी आप?
6: गुरु शिष्य की प्रशंसा कर रही थी।
5: माँ साहिब, आप पिताजी और सुल्तान के बारे में कुछ कह रही थी। कक्ष में प्रवेश करते हुए मैंने सुना था।
6: पुत्र, सुल्तान को फर्शी सलाम बजाने वाला तुम्हारे पिता का रूप मुझे बिल्कुल नहीं भाता।
5: मुझे तो अपमानजनक लगता है।
6: ठीक कहा तुमने।
5: आपको याद है बचपन में मुझे पिताजी दरबार ले गए थे?
6: हाँ याद है, और तुम्हें लेकर लौटे तो नाराज थे तुम पर।
5: पिताजी ने फर्शी सलाम किया और मुझे भी यही करने को इशारा किया, मैंने नहीं किया था।
6: इसी बात पर तो नाराज थे तुम्हारे पिताजी।
5: माँ साहिब, मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूँ।
7: सफल हो गए, पर याद रखना मेरी सीख कि वक्त को पहचान कर तनना और झुकना जो सीख गए समझो वही जीत गए।
8: क्या सल्लू, चाय में कितनी शक्कर डालने लगा है तू?
9: हाँ सचमुच सल्लू, तू ध्यान नहीं रखता, शक्कर सस्ती नहीं है।
10: चाय भी तो ठंडी लाया है।
9: हाँ ठीक है,
11: पहले आप कहानी सुनाओ फिर अच्छी चाय पिलाऊंगा।
9: हाँ हाँ तो सुनो, सन 1646 के लगभग बीजापुर राज्य की हालत डावाडोल हो गई थी। उसी का लाभ उठाते हुए सन 1647 में 20 वर्ष की उम्र में पहला सैनिक अभियान कर तोरणा किले को जीत लिया जो बीजापुर राज्य का हिस्सा था। पर विजय की यह प्रसन्नता एक दुखद घटना ने छीन ली। शिवाजी की भविष्य की सफलताएं देखने के लिए दादोजी जीवित ना रहे। उस 7 मार्च 1647 को चल बसे।
12: ये तो बहुत बुरा हुआ काका।
5: दादोजी मेरे लिए पितृ तुल्य थे।
6: हाँ शिवा, तेरे सिर पर उनकी छत्र छाया होने से मुझे भी फिक्र नहीं रहती थी।
5: उनके जाने से एकदम शक्तिहीन सा अनुभव कर रहा हूँ।
6: पुत्र, जो आया है वो जाएगा भी। सच्ची श्रद्धांजलि तो उन्हें अपनी वीरता और विजय अभियानों से ही दे सकते हो।
5: जी माँ साहेब, कोंडाना और राजगढ़ हमने ये दोनों किले भी जीत लिए हैं।
6: अच्छी बात है, ये विजय अभियान जारी रहे।
5: कोंडाना दुर्ग के विजय की हमने भारी कीमत चुकाई है तानाजी मालसोरे जैसा साथी खोकर।
6: तानाजी जैसे वीर और विश्वासु साथी का जाना सच में बेहद दुखद है।
5: कोंडाना विजय अभियान का आदेश देते हुए काश हमें पता होता कि।
6: हाँ पुत्र, हमें तो बाद में पता चला कि उसके पुत्र रायबा की शादी की बात चल रही है।
5: हमने तानाजी से कहा भी था कि पहले रायबा की शादी हो जाने दो। बोला पहले कोंडाना का लगन होगा फिर रायबा का।
6: बहुत दुखद हुआ।
5: तानाजी मेरा साथी चला।
9: फिर तानाजी की मृत्यु और किले पर विजय, दोनों समाचार शिवाजी को एक साथ मिले तो शिवाजी के मुंह से यही शब्द निकले, गढ़ आला अपन सिंह गेला। तानाजी की स्मृति में शिवाजी ने कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रखा।
5: माँ साहेब प्रणाम।
6: प्रणाम।
5: सेवक से समाचार मिला कि आपने याद किया है।
6: हाँ पुत्र, सुना है तुम्हारे पिताजी को सुल्तान ने बीजापुर में कैद कर लिया है।
5: हरकरा यही समाचार लेकर आया है।
6: फिर क्या विचार किया तुमने?
5: क्या लाभ हुआ स्वामी भक्ति दिखाने का?
6: ये आवेश में आने का समय नहीं है।
5: जानता हूँ माँ साहेब, पर अब सुल्तान हमें उसकी शर्तें मनवाने के लिए विवश करेगा। कायर कहीं का।
6: तुमने अपने साथियों से मंत्रणा की?
5: कर रहा हूँ। सुल्तान मराठों की विजय से चिढ़कर नीच हरकतों पर उतर आया है।
6: तुम्हारे बड़े भाई संभाजी का संदेश आया है कि सुल्तान की फौज ने फरहाद खान की मात खती में बेंगलोर पर धावा बोल दिया है।
5: फौज की दूसरी टुकड़ी देकर फतेह खान को हम पर धावा करने के लिए भेजा है सुल्तान ने।
9: फिर क्या था, दोनों भाइयों ने मिलकर सुल्तान की फौजों को जो इनकी फौजों से कई गुना बड़ी थी धूल चटा दी। पर पिता शाहजी को बीजापुर की कैद से छुड़ाने के लिए सुल्तान को कुछ किले सौंप कर संधि करनी पड़ी।
13: महाराज की जय हो।
5: कैसे हो बाजी प्रभु?
13: आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है।
5: कुछ विशेष?
13: कुछ पठान अपनी फौज में भर्ती होना चाहते हैं महाराज।
5: गामाजी नायक से चर्चा की आपने?
13: जी कर ली, परंतु आपकी प्रतीक्षा कर रहा था।
5: ऐसा क्या कहा उन्होंने जिस पर आपको संदेह होने लगे?
13: उनके मत में पठानों को अपनी फौज में शामिल कर लेना चाहिए।
5: तो कीजिए, गामाजी जब बोलते हैं तो बहुत तोल कर बोलते हैं।
13: लेकिन
5: देखिए बाजी प्रभु, पठान एक बहादुर और वफादार कौम होती है। फौज में भर्ती करते समय यही दो बातें देखी जानी चाहिए, ना कि धर्म।
13: जैसी आपकी इच्छा महाराज।
5: आप तो जानते ही हैं बाजी प्रभु कि गामाजी वीर योद्धा के साथ साथ विचारवान भी हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। माँ साहेब को प्रणाम।
13: माँ साहेब को प्रणाम।
6: आयुष्मान भवा, विजयी भवा, कैसे हो बाजी प्रभु?
13: जी आपकी कृपा है।
6: शिवा, तुम्हारे पिताजी को बीजापुर सुल्तान की कैद से मुक्त कराने में कुछ किले गवाने पड़े हमें।
5: अफसोस है हमें, परंतु सशर्त संधि के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था।
6: समझते हैं हम, आगे क्या विचार है?
5: सबसे पहले अपने राज्य को सुगठित करना और शक्ति बढ़ाना है। फौज में मावलों की भर्ती हो रही है तेजी से।
13: मावले बेहद मेहनती, भरोसेमंद और जान कुर्बान करने वाले होते हैं।
6: जानते हैं हम।
5: मावलों को इस क्षेत्र की चप्पे चप्पे की जानकारी है। आजकल हम इन साथियों के साथ कोंकण की पहाड़ी भाग का दौरा कर रहे हैं।
13: किलों को पहुंचने वाले गुप्त मार्गों, उसके रक्षकों की सही संख्या आदि की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।
6: परंतु हमारा बस इतना कहना है कि महाराष्ट्र से सुल्तानों निजामों का शासन समाप्त हो।
5: हमारा भी यही सपना है माँ साहेब, हिंदवी स्वराज्य, हम उसी में जुटे हुए हैं।
13: सुल्तानों निजामों की बड़ी सेना का अपनी छोटी सी सेना के साथ मुकाबला करने के लिए नई रणनीति चाहिए महाराज।
5: माँ साहेब, अब हम आज्ञा लेते हैं। प्रणाम।
9: सुनो, पूना जिले के पश्चिमी भाग में एक बड़ा भूभाग उस समय मवाल कहलाता था। यहाँ कोली नाम की एक जनजाति रहती थी। दादा कोंडदेव ने इनके गुणों को पहचाना और इन्हें सेना में भर्ती किया, खेती व्यवसाय आदि करना सिखाया। इन्हीं मवालों में से कई शिवाजी की सेना और राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँचे। राघव अत्रे, कानाजी जेड़े, नेताजी पालकर, तानाजी मालसुरे, बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे ही अफसरों में शामिल थे।
13: किस सोच में डूबे हुए हैं महाराज?
5: पिछले 2-3 वर्षों का समय राज्य को संगठित करने और आर्थिक हालत ठीक करने में बीत गए।
13: बहुत आवश्यक था वो हमारे जैसे छोटे से राज्य के लिए।
5: परंतु अब समय आ गया है कि हम पुनः राज्य के विस्तार की मुहिम में जुट जाएं।
13: हम तो निकल पड़ेंगे जैसे ही आपका आदेश होगा महाराज।
5: कहावत है शुभस्य शीघ्रम।
13: कल से योजना पर काम चालू हो जाएगा।
5: जावली के चंद्र राव की क्या खबर है?
13: हम तो नियमित रूप से उसके पास संधि के लिए दूध भेज रहे हैं, पर व्यर्थ है ये प्रयास।
5: सारे लोग मिलकर सुल्तान शाही और मुगलों को मजबूती से टक्कर दे सकते हैं।
13: इतनी सी बात उस चंद्र राव को समझ नहीं आ रही महाराज।
5: फिर तो एक ही रास्ता बचता है।
13: आप आदेश करें, कब करना है?
5: अभी अभी तो मैंने कहा शुभस्य शीघ्रम।
14: महाराज, हमने मजबूती से घेरा डाल रखा है और रसद भी रोक दी है।
5: बहुत बढ़िया बाजी प्रभु, हमारा प्रयास भी यही रहे कि रक्तपात कम से कम हो।
14: जी हम भी यही नीति अपना रहे हैं।
5: जावली राज में हमारे अपने अपने ही क्षेत्र के लोग हैं।
14: जी महाराज,
5: इसीलिए एक हठी और मूर्ख राजा के कारण इनका रक्त ना बहे।
14: महाराज महाराज देखिए, संधि का श्वेत ध्वज।
5: माँ भवानी की
4: जय हो।
15: फिर क्या हुआ काका?
9: फिर बेटा समझाइश को बेअसर देख विवश हो शिवाजी को जावली के राजा चंद्र राव को अपने मार्ग से हटाना पड़ा। जावली पर विजय के फलस्वरूप प्रचुर धनराशि और काफी बड़ा प्रदेश इनके हाथ लग गया।
13: विजय और विस्तार अभियान की शुरुआत काफी अच्छी रही महाराज।
5: काफी बड़े क्षेत्र पर अब हमारा ध्वज लहरा रहा है।
13: रणनीतिक दृष्टि से क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है किला बनवाने के लिए।
5: कुछ दिनों से हम भी इसी विषय पर सोच रहे हैं।
13: जावली से 2 मील दूर की पहाड़ी ठीक रहेगी।
5: एकदम ठीक बात कही आपने बाजी प्रभु।
13: शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू करवा देते हैं।
5: माँ साहेब की और हमारी भी इच्छा है कि यहाँ इष्ट देवी माँ भवानी का मंदिर भी बनवाया जाए।
13: महाराज की इच्छा सर आंखों पर।
16: Thank you.
7: फिर सल्लू?
9: जावली के पास निर्मित इस किले का नामकरण हुआ प्रतापगढ़। सन 1658 के आसपास मुगल शहजादों में घोर युद्ध छिड़ गया और शिवाजी इस अवसर का लाभ उठाने से भला कैसे चूकते।
5: पश्चिमी घाट का क्षेत्र पार किया जाए, वहाँ से कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में घुसा जाए।
15: हमारे मामले सैनिकों के लिए पहाड़ी युद्ध सहज है, पर सुल्तान की सेना को पसीने आ जाएंगे।
5: कोंकण से आगे कल्याण, भिवंडी सभी संपन्न क्षेत्र हैं बीजापुर के, उन पर कब्जा किया जाए।
15: उत्तम योजना है।
5: फिर कोलाबा और पुर्तगालियों के कब्जे के क्षेत्र हैं।
15: ये तो एकदम चरणबद्ध योजना है महाराज।
5: उस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण और बेहतर प्रशासन के लिए हमें स्थायी अड्डे की आवश्यकता होगी।
15: इस उद्देश्य के लिए मेरे विचार से आसिरी का किला बेहतर होगा।
5: एकदम सही विचार है।
15: पश्चिम घाट की दुर्गमता को देखते हुए हमें तत्काल शुरू हो जाना चाहिए महाराज।
5: हाँ, वरना बरसात में हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएंगी। सबसे पहले माँ साहिब की अनुमति और आशीर्वाद। नई मुहिम पर निकलने से पहले आपकी अनुमति और आशीर्वाद लेने आए हैं।
6: माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही पुत्र के साथ होता है।
5: वही तो असली कवच भी होता है।
6: मुहिम किधर की है पुत्र?
5: कोंकण, कल्याण, भिवंडी और कोलाबा।
6: बहुत दिनों से हमारा भी ध्यान है उस क्षेत्र की ओर, पर
5: क्या माँ साहेब?
6: कल्याण, भिवंडी, बीजापुर के सुल्तान, यही सोचकर।
5: माँ साहेब, हम ये भूल नहीं पाते हैं कि उसने पिताजी को गिरफ्तार किया था।
6: यही तो।
5: माँ साहेब, हमारे हृदय में तब से अपमान की आग धधक रही है।
6: इसे बदले की आग मत बनने देना, क्योंकि वो तबाह करती है।
5: जी माँ साहेब, हम सुल्तान को उसकी दुष्टता और गिरी हुई सोच के लिए सबक सिखाना चाहते हैं।
6: जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटो।
9: राज्य के विस्तार योजना पर लगे थे शिवाजी। पहले पार हुआ पश्चिमी घाट, फिर बारी आई कोंकण की, उसके बाद बीजापुर सुल्तान के दो शहर कल्याण और भिवंडी। उस क्षेत्र में पुर्तगालियों में भी शिवाजी के मुहिम से बदहवासी छाई हुई थी। बदहवासी अकारण ना थी, शिवाजी की फौज ने पुर्तगालियों के काफी गांव कब्जे में ले लिए थे, कोलाबा पर अधिकार कर लिया था।
16: महाराज की जय हो।
5: कहिए नेताजी पालकर, क्या समाचार है?
16: अति उत्तम, निरंतर मिलती विजय से हमारी फौज उत्साह से भरी हुई है।
5: कल्याण की खाड़ी देखी है आपने?
16: हाँ हाँ, बिल्कुल देखी है।
5: सेना की दृष्टि से ये एक नया विचार मन में आया है।
16: कैसा विचार महाराज?
5: थल सेना हमारे पास है, क्यों ना जल सेना बनाई जाए।
16: एकदम ठीक होगा।
5: जहाज बनाने वाले कारीगरों को एकत्रित करो।
9: फिर शिवाजी की उत्तरोत्तर प्रगति और कल्याण, भिवंडी जैसे शहरों के हाथ से निकल जाने से बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह अंगारों पर लौट रहा था। उसने अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी को परास्त करने पकड़ने भेजा।
17: महाराज, अफजल खां आपको कैद करने के लिए बीजापुर से चल पड़ा है।
5: उसकी फौज का आकार हमारी फौज से बहुत बड़ा है, आमने सामने की लड़ाई हमारे लिए भारी पड़ेगी।
18: वो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है।
5: दरअसल वो हमें उकसाकर आमने सामने की लड़ाई में उलझाना चाहता है।
18: समझा, तो ये है चाल।
17: कुछ भी हो जाए, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए।
5: बिल्कुल ठीक कहा बाजी प्रभु। एक काम करिए, दूत के हाथ उसके पास संधि का प्रस्ताव भेजिए।
18: अफजल खां के पास संधि का प्रस्ताव?
5: संधि वार्ता स्थल के पास जंगलों झाड़ियों में हमारे सैनिक छुपे रहे और इशारा पाकर टूट पड़े।
17: महाराज, लेकिन इसमें आपके प्राणों का खतरा है।
5: चिंता मत कीजिए, माँ भवानी की शक्ति है हमारे साथ।
9: उसके बाद अफजल खां को संधि प्रस्ताव भेजा गया, जिसे पाकर ये मानते हुए कि शिवाजी डर गया, अफजल खां बहुत प्रसन्न हुआ। नियत तिथि को शिवाजी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। उसने शिवाजी को गले लगाकर धोखे से कटार से वार किया, जो शिवाजी के वस्त्रों के नीचे पहने जिरा बख्तर के कारण व्यर्थ गया। फिर क्या था, शिवाजी ने वस्त्रों में छुपाकर ले गए कटार से फुर्ती से खान का पेट फाट डाला।
19: आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा शिवाजी।
20: अफजल, मैं पता था तुम क्या हो।
17: उसके बाद काका?
9: इसके बाद इशारा पाते ही जंगलों झाड़ियों में छुपे बैठे शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खान के साथ आए रक्षकों को आनन फानन में परास्त कर दिया।
5: आदिल शाह को पक्का पूरा सबक सिखाना है, ताकि दोबारा आंख उठाकर इधर देखने की हिम्मत भी ना करें।
19: ऐसा ही होगा महाराज।
9: पन्हाला, शिवाजी के दुर्गम किलों में से एक। शिवाजी अपने 8,000 सैनिकों के साथ उस समय पन्हाला दुर्ग में थे। आदिल शाह ने इस बार सेना नायक सिद्दी जौहर को बहुत बड़ी फौज के साथ शिवाजी पर हमला करने भेजा। सिद्दी जौहर ने फौज के साथ पन्हाला दुर्ग की घेराबंदी करके रसद पानी रोक दिया।
5: आदिल शाही फौज की घेराबंदी टूटती नजर आ रही है।
17: रसद कले में आने से रोक दी गई है।
5: रसद की क्या स्थिति है?
17: अभी कुछ दिन तक चल जाए, इतना अनाज तो है हमारे पास।
5: तोपों के हमले और भारी पत्थरों की बरसात को और बढ़ा दो।
17: जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा।
5: इस समय नेताजी पालकर का यहाँ से दूर होना खटक रहा है।
17: लेकिन समाचार है महाराज कि उन मोर्चों पर नेताजी ने सुल्तान की फौजों को काफी नुकसान पहुंचाया है।
5: बहुत अच्छा।
9: सिद्दी जौहर ने अंग्रेज कमांडर रेविंगटन से हाथ मिलाया और अंग्रेजी फौज से भारी तोपें हासिल की। फिर सुल्तान के किले को घेरे बैठी फौज के हिस्सों पर शिवाजी के सिपाही छापामार कार्रवाई जारी रखे हुए थे, पर कुछ खास परिणाम नहीं निकल पा रहा था। ऐसी ही एक छापामार कार्रवाई में शिवाजी के फौज के त्र्यंबक भास्कर और कोंडाजी फरजंद नाम के सिपाहियों ने आदिल शाही खेमे में धोखे से घुसकर उनकी तोपों को नष्ट कर डाला। फिर क्या था, सिद्दी जौहर ने मूसलाधार बरसात के बावजूद घेरा ना उठाया, बल्कि तोपों के नष्ट किए जाने से आग बबूला होकर उसने घेरा और कस दिया।
17: महाराज, बरसात ने हमारी कठिनाई और बढ़ा दी। रसद धीमे धीमे कम होते बहुत कम बच गई है।
5: नेताजी पालकर लौट तो आए हैं, पर किले तक उनका पहुंच पाना कठिन है।
17: इस बार तो लगता है सुल्तान ने खतरनाक इरादों से भेजा है फौज को।
5: एक चाल पर विचार कर रहा हूँ कुछ दिनों से।
17: कैसी चाल महाराज?
5: ये संदेश किसी तरह सिद्दी जौहर तक पहुंच सके कि हम हिम्मत हार बैठे हैं और किसी भी क्षण हथियार डाल सकते हैं।
17: ठीक है, हो जाएगा महाराज।
9: इस अफवाह का अपेक्षित असर हुआ, घेराबंदी में ढिलाई आ गई। इसका लाभ उठाते हुए शिवाजी अपने सैनिकों के साथ घनी अंधेरी रात में विशालगढ़ किले की ओर कूच कर गए। किले के दरवाजे खुले देख सुल्तान की फौज किले में घुस गई और उसने कुछ सिपाहियों के साथ शिवाजी की वेशभूषा में नकली शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। फौज को बाद में पता चला कि उसने सिपाहियों की भेष में सामान्य नागरिकों और शिवाजी के भेष में उनके नाई शिव काशित को गिरफ्तार किया है, तो फौज ने शिवाजी और उनकी फौज का पीछा किया।
17: महाराज, सुल्तान की फौज हमसे बहुत दूर नहीं रह गई है।
5: मुझे लगता है सामने कोई दर्रा है।
17: महाराज, इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे हर पत्थर कंकर से परिचित हूँ मैं। आपने ठीक कहा, सामने घोड़ा खिंड दर्रा है।
5: हम तेजी से यह दर्रा पार कर जाएंगे, पर सुल्तान के लाव लश्कर के लिए यह आसान ना होगा।
17: महाराज, मैं अपने विश्वस्त 300 साथियों को लेकर दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौजों को रोकता हूँ।
5: यह आत्मघाती कदम होगा बाजी प्रभु।
17: जानता हूँ और वादा करता हूँ महाराज, आपके विशालगढ़ सुरक्षित पहुँचने का संकेत मिले बिना फौज को आगे ना बढ़ने दूंगा।
5: लेकिन बाजी प्रभु।
17: महाराज, आप विलंब मत कीजिए, सुल्तान की फौज पल पल नजदीक आती जा रही है।
5: विदा लेता हूँ, अपना और सैनिकों का ख्याल रखना।
17: जी महाराज।
5: जय भवानी,
17: जय भवानी।
9: फिर बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 सिपाहियों के साथ दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौज को रोके हुए तब तक डटे रहे जब तक विशालगढ़ के किले से तोप चलने के रूप में शिवाजी के किले में सुरक्षित पहुंच जाने का संकेत नहीं मिल गया। और संकेत मिलते ही छुपकर वार कर रहे मराठा सैनिक सुल्तान की फौजों से आमने सामने की लड़ाई में कूद पड़े। घमासान युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 वीरों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए, पर सुल्तान की फौज के 1300 सिपाहियों को मारने के बाद में बाजी प्रभु और उनके वीर सिपाहियों की स्मृति में घोड़ा खिंड का नाम बदलकर पावन खिंड किया गया।
0: महाराज, औरंगजेब का सरदार शारस्ता खान पूना में डेरा डाले बैठा है और पूना में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोक दिया गया है।
5: कोई बात नहीं, हम प्रवेश करेंगे।
9: बेटा सल्लू, शिवाजी ने जो कहा कर दिखाया। बाराती बनकर महल में जा घुसे शाइस्ता खान जहां ठहरा था। शाइस्ता खान को पूना से जान बचाकर भागना पड़ा। एक हाथ की तीन उंगलियां शिवाजी की तलवार को भेंट चढ़ाकर। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। आगरा बुलाकर शिवाजी और उनके बेटे को धोखे से कैद करने और मिठाई के टोकरों में छुपकर उन दोनों के कैद से निकल भागने की कहानियां मशहूर है। तो भाइयों, शिवाजी के राज में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। माता जीजाबाई के अनन्य भक्त शिवाजी के राज में महिलाओं का बहुत सम्मान था। न्याय व्यवस्था अति उत्तम थी। महाराष्ट्र का ये शेर राष्ट्र के इतिहास को निर्णायक मोड़ देने वाला ये महान राजा 1680 में मात्र 53 वर्ष की उम्र में ये नश्वर शरीर छोड़ गया।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: पैदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका दोस्त विजयकांत नायक।
3: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति।
2: और आज के हमारे इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में आज हम बात करेंगे पद्म विभूषण से सम्मानित महान लेखिका महाश्वेता देवी पर। दोस्तों, वह केवल कलम नहीं थी, वह क्रांति की धार थी। कागज पर उकेरे अक्षर नहीं, पीड़ितों की अनसुनी पुकार थी। उसने महलों की खामोशी नहीं लिखी, झोपड़ियों की चीख को स्वर दिया। जिन्हें इतिहास ने हाशिए पर छोड़ा, उनके नाम को अमर कर दिया। न सत्ता से भयभीत हुई, न सम्मानों की लालसा रखी। सच की कीमत क्या होती है, यह उसने जीवन भर चुकाई। फिर भी उसकी कलम न थकी।
3: मजदूरों के पसीनों की कथा उसकी रचनाएं कहानियां नहीं, वे जीती जागती व्यथा थी। जब शब्द बाजार में बिकने लगे, उसने उन्हें जन आंदोलन बनाया। जब साहित्य केवल सौंदर्य रह गया, उसने उन्हें संघर्ष से सजाया।
2: कभी कभी शब्द केवल अक्षर नहीं होते, वे इतिहास की धड़कन बन जाते हैं। कभी कभी वे कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर लिखे जाते हैं, खून पसीने और प्रतिरोध से। और ऐसी ही एक लेखिका थी जिनकी कलम ने सत्ता से सवाल किए और जिनके शब्दों ने उन आवाजों को भाषा दी जो सदियों से चुप कर दी गई थी। ये कहानी है महाश्वेता देवी की।
3: महाश्वेता देवी का जीवन और लेखन जिस संवेदनशील चेतना से जन्म लेता है, उसकी जड़ें उनकी प्रारंभिक जीवन में गहराई से समाई हुई हैं। उनका जन्म सोमवार 14 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के ढाका नगर में हुआ। वे एक ऐसे साहित्यिक वातावरण में पढ़ी लिखी जहां शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं थे बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का स्वर थे। उनके पिता मनीष घटक प्रतिष्ठित कवि एवं उपन्यासकार थे और माता धरित्री देवी लेखिका होने के साथ साथ सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। इस प्रकार साहित्य और समाज चिंतन उनके जीवन का स्वाभाविक संस्कार बना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई, किंतु भारत विभाजन के समय किशोरावस्था में ही उन्हें विस्थापन के पीड़ापूर्ण अनुभव से गुजरना पड़ा। जब उनका परिवार पश्चिम बंगाल आकर बस गया, ये परिवर्तन केवल स्थान का नहीं था बल्कि स्मृति, पहचान और संवेदना का भी था। यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन में बार बार प्रतिध्वनित हुआ और उन्हें उन आवाज़ों की ओर मोड़ा गया जिन्हें इतिहास अक्सर अनदेखा कर देता है।
2: बचपन में जब महाश्वेता ने साफ साफ बोलना शुरू किया तो उनका एक अनोखा स्वभाव सामने आया। जो उन्हें जिस नाम से पुकारता, वे भी उसी नाम से उसे पुकारती। पिता उन्हें प्यार से तुतुल कहते थे और पिता उनके लिए जीवन भर तुतुल ही रहे। यह नाम केवल संबोधन नहीं था बल्कि एक गहरे भावनात्मक रिश्ते का प्रतीक था जो जीवन भर उनके भीतर जीवित रहा। 4 वर्ष की उम्र लगभग 1930 में ही महाश्वेता बांग्ला पढ़ना लिखना सीख गई थी। उनका दाखिला ढाका के इंडियन मोंटेसरी स्कूल में करवाया गया। पिता की नौकरी के कारण बार बार तबादले होते रहे, ढाका, मयमनसिंह, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर और फरीदपुर। इन यात्राओं ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें विविध समाज, अलग अलग मनुष्यों और जीवन की असमानताओं से परिचित करवा दिया। ढाका के जिंदा बहार लेन में, ननिहाल और नतून भोरेंगा में पिता का गांव, इन दोनों के बीच उनका बचपन आवाजाही में ही बीतता रहा। दुर्गा पूजा की छुट्टियां प्रायः ननिहाल में ही गुजरती थीं।
3: सन 1935 में पिता का तबादला मेदिनीपुर हुआ और महाश्वेता का दाखिला वहाँ के मिशन स्कूल में कराया गया, लेकिन ये ठहराव अल्पकालिक था। सन 1936-37 के आसपास ये तय हुआ कि उन्हें शांति निकेतन भेजा जाए। तब वे मात्र 10 वर्ष की थीं। शांति निकेतन जाने की तैयारी, लाल किनारे की साड़ी, बिस्तर, लोटा, ग्लास, सब कुछ उनके जीवन के नए अध्याय का संकेत था। शांति निकेतन में उन्हें प्रकृति की गोद मिली, खुले आकाश, सुंदर भवन, विशाल पुस्तकालय और सृजनशील वातावरण। यहाँ अनुशासन भी था और स्वतंत्रता भी। दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि सुबह से रात तक छात्र सीखने और रचने में डूबे रहते। सन 1937 में एक अविस्मरणीय क्षण आया जब स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बांग्ला की कक्षा ली। सातवीं कक्षा की छात्रा महाश्वेता के लिए ये जीवन भर का स्मृति क्षण बन गया। इससे पहले सन 1936 में बांकिम शतवार्षिकी समारोह में उन्होंने रविंद्रनाथ का भाषण भी सुना था। शांति निकेतन में हिंदी उन्हें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाते थे, जिन्हें सभी छोटा पंडित कहते थे। ये शिक्षक केवल अध्यापक नहीं बल्कि वैचारिक आधार स्तंभ थे।
2: 1939 में महाश्वेता को शांति निकेतन छोड़कर कलकत्ता लौटना पड़ा। जितना वे वहां जाते समय रोई थी उससे अधिक लौटते समय रोई। उसी वर्ष उनका दाखिला कलकत्ता के बेलतला बालिका विद्यालय में 8वीं कक्षा में हुआ और इसी समय उनके काका प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक घर आकर रहने लगे। कला, सिनेमा और विचार घर के वातावरण में और गहराते चले गए। 1939 में ही उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई। अपर्णा सेन उनकी शिक्षिका थीं और उनके भाई खगेंद्र नाथ सेन रंग मशाल पत्रिका निकालते थे। उन्होंने रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक छेले बेला पर कुछ लिखने को कहा। महाश्वेता ने लिखा और वह रंग मशाल में छप गया। यही उनका पहला प्रकाशित लेखन था। स्कूली जीवन में ही उन्होंने राजलक्ष्मी और धीरेश भट्टाचार्य के साथ मिलकर एक हस्तलिखित पत्रिका निकाली, छन्न छाड़ा।
3: नानी, दादी और माँ तीनों ने उन्हें अच्छे साहित्य का संस्कार दिया। दादी पढ़ी हुई किताबों पर सवाल करती, माँ देश प्रेम और इतिहास की पुस्तकें देती और कहती अभी ये पढ़ना जरूरी है। पिता की समृद्ध लाइब्रेरी से उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही हेमचंद्र, बंकिम, नवीन, रंगलाल जैसे साहित्यकार पढ़ डाले। नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखकों की रचनाएं भी उन्होंने पिता की लाइब्रेरी से ही पढ़ी। 1939 से 1944 के बीच पिता ने कलकत्ता में 7 बार घर बदले। इसी उथल पुथल के बीच 1942 में महाश्वेता ने घर के काम संभालते हुए मैट्रिक की परीक्षा पास की। वही वर्ष था जब भारत छोड़ो आंदोलन ने उनके किशोर मन को भीतर तक झकझोर दिया। इसके बाद उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से अंग्रेजी में स्नातक किया और फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए। शिक्षा के बाद उन्होंने शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी व्याख्याता बनी। 1984 में उन्होंने सेवानिवृत्ति लेकर स्वयं को पूरी तरह लेखन और सामाजिक संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया।
2: किशोरावस्था में ही महाश्वेता देवी के कंधों पर पारिवारिक दायित्व आ गए थे और वे उन्हें निभाने के प्रति हमेशा सजग रहीं। माँ धरित्री देवी के जीवन के अंतिम वर्षों में जब घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी तब महाश्वेता ने पुरानी सिलाई मशीन चलाकर कपड़ों की सिलाई की। यह श्रम केवल रोजी रोटी का साधन नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और जिम्मेदारी की पहली पाठशाला भी थी, जहां शब्दों की दुनिया से पहले जीवन का कठोर यथार्थ खड़ा था। 1944 में उन्होंने कलकत्ता के आशुतोष कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी समय पारिवारिक दायित्वों का कुछ भार छोटी बहन मितुल ने संभाला। इस राहत ने महाश्वेता को फिर से शिक्षा की ओर लौटने का अवसर दिया और वे दोबारा शांति निकेतन पहुंची, इस बार कॉलेज की पढ़ाई के लिए। शांति निकेतन अब उनके लिए केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक सपना था।
3: इसी दौर में शांति निकेतन में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका देश के संपादक सागरमय घोष का आना जाना होता था। उन्होंने महाश्वेता की प्रतिभा को पहचाना और देश में लिखने को कहा। तब महाश्वेता बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थीं। उसी समय उनकी 3 कहानियां देश में प्रकाशित हुईं। हर कहानी के लिए उन्हें 10 रुपये का पारिश्रमिक मिला। ये छोटी सी रकम नहीं थी, ये उस बोध की शुरुआत थी कि लिखकर भी जीवन चलाया जा सकता है। 1946 में महाश्वेता देवी ने शांति निकेतन से अंग्रेजी में ऑनर्स के साथ साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की। साहित्य अब उनके लिए केवल अध्ययन का विषय नहीं बल्कि जीवन की दिशा बन चुका था। यहाँ कलम और संघर्ष साथ साथ चलने वाले थे।
2: 1947 स्वतंत्रता के वर्ष में उनका विवाह प्रख्यात रंगकर्मी बिजन भट्टाचार्य से हुआ। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि विचारधाराओं और संघर्षों का संगम था। विवाह के 1 वर्ष बाद 1948 में महाश्वेता ने पदमपुकुर इंस्टीट्यूशन में अध्यापन कर परिवार का खर्च संभाला। उसी वर्ष उनके पुत्र नवारुण भट्टाचार्य का जन्म हुआ जो आगे चलकर स्वयं एक महत्वपूर्ण कवि बने। संघर्ष के इन दिनों ने ही लेखिका महाश्वेता को तैयार किया। उस दौरान उन्होंने खूब रचनाएं पढ़ी, विश्व के मशहूर लेखकों चिंतकों की रचनाएं, एलिया एरेनबर्ग, एलेक्सी टॉलस्टॉय, मैक्सिम गोर्की, चेखव और रूस के कई अन्य लेखकों की पुस्तकें भी पढ़ी। उसी समय विजन भट्टाचार्य को एक हिंदी फिल्म की कहानी लिखने के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। उनके साथ महाश्वेता भी गईं। मुंबई में महाश्वेता के बड़े मामा सचिन चौधरी थे। मामा के यहाँ ही महाश्वेता ने पढ़ा वीडी सावरकर 1857। उससे इतनी प्रभावित हुई कि उनके मन में इसी तरह का कुछ लिखने का विचार आया। तय किया कि झांसी की रानी पर वे किताब लिखेंगी। उन पर जितनी भी किताबें थीं सब जुटाकर पढ़ीं। मुंबई से आने के बाद ट्यूशन वगैरह तो चल रहा था, लेखन को भी जीविका का साधन बनाने का विचार दृढ़ होता गया। 1950 के दशक से महाश्वेता देवी की साहित्यिक यात्रा स्पष्ट रूप से सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाती है।
3: उनकी पहली पुस्तक झांसी की रानी

0: कठिनाइयों के बावजूद 6 वर्षीय पुत्र नवारून और पति को कोलकाता में छोड़कर अकेले झांसी पहुंची। उन्होंने बुंदेलखंड की धरती को पैरों से नापा, लोकगीत संकलित किए और वृंदावन लाल वर्मा से भी मार्गदर्शन लिया। लौटकर उन्होंने नए सिरे से झांसी की रानी लिखी, जो पहले देश पत्रिका में धारावाहिक रूप में छपी और फिर 1956 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यही उनकी पहली कृति बनी। इसके बाद 1957 में नटी और फिर जली थी अग्निशिखा आई। तीनों ही 1857 के महासंग्राम और रानी लक्ष्मीबाई की अदम्य शक्ति को केंद्र में रखती हैं।
1: 60 का दशक महाश्वेता देवी के निजी जीवन में गहरे उतार चढ़ाव लेकर आया। 1962 में उनका विवाह विजन भट्टाचार्य से विच्छेद हो गया। बाद में असीत गुप्त से उनका दूसरा विवाह हुआ, किंतु यह संबंध भी 1975 में समाप्त हो गया। इन टूटनों के बाद भी महाश्वेता ने स्वयं को कभी बिखर नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन को लेखन, सामाजिक प्रतिबद्धता, कार्य में और अधिक दृढ़ता से समर्पित कर दिया। यह विशेष रूप से जानने योग्य है कि निजी जीवन की इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद महाश्वेता कभी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हुई। बेटी, बहन, पत्नी, माँ और बाद में दादी के रूप में उन्होंने हर भूमिका को पूरी निष्ठा और गरिमा के साथ निभाया। वे आरंभ से ही एक स्वतंत्र चेतना वाली स्त्री थीं। इसीलिए 2 बार विवाह विच्छेद होने के बावजूद उनके व्यक्तित्व और सम्मान पर कोई आंच नहीं आई। वे वही महाश्वेता रहीं, स्वाभिमानी, सृजनशील और निर्भीक।
0: सबसे मानवीय बात ये रही कि संबंध विच्छेद के बाद भी आपसी सम्मान बना रहा। ना बिजन भट्टाचार्य ने कभी महाश्वेता के विरुद्ध कुछ कहा, ना महाश्वेता ने अपने किसी पूर्व पति के प्रति कटुता दिखाई। विजन भट्टाचार्य के निधन के समय महाश्वेता पूरे दिन वहां उपस्थित रहीं और उनकी उपस्थिति को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया गया। ये उनके व्यक्तित्व की उसी गरिमा और संवेदनशीलता का प्रमाण था जो उनके जीवन और लेखन दोनों की मूल आत्मा रही। उपन्यास अरण्य अधिकार महाश्वेता देवी की सामाजिक और साहित्यिक प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। इस कृति में उन्होंने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए आदिवासी विद्रोह को केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि समकालीन सामंती शोषण के प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत किया। 1974 में फिल्म निर्माता शांति चौधरी के आग्रह पर बिरसा मुंडा पर लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके लिए महाश्वेता ने दक्षिण बिहार की यात्रा की और गहन शोध के बाद 1979 में अरण्य अधिकार लिखा। इसी वर्ष इस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
1: महाश्वेता देवी का रचनात्मक संसार अत्यंत व्यापक और बहुआयामी है। उनकी पहली प्रकाशित कृति झांसी की रानी 1956 थी, जिसे लिखने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वे एक कथाकार बनेंगी। उनका पहला उपन्यास नटी 1957 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जली थी अग्निशिखा, अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ, मर्डरर की माँ, मातृछवि जैसी अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ आईं। उन्होंने लघु कथाएँ, कहानियाँ, उपन्यास, आत्मकथात्मक लेखन, आलेख, यात्रा संस्मरण और नाटक सभी विधाओं में लिखा। 4 दशकों में उनके 20 से अधिक कहानी संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हुए। उनकी रचनाओं पर संघर्ष, रुदाली, 1084 की माँ और माटी माई जैसी चर्चित फिल्में भी बनी। समग्र रूप से महाश्वेता देवी का साहित्य हाशिए के समाज की आवाज, संघर्ष और मानवीय गरिमा का जीवंत दस्तावेज है।
0: महाश्वेता देवी का रचनात्मक संसार विषय, विधा और संवेदना तीनों स्तरों पर अत्यंत विस्तृत और गहन है। उन्होंने लघु कथाओं में मीलू के लिए और मास्टर साहब जैसी रचनाओं के माध्यम से साधारण जीवन के भीतर छिपे संघर्ष को स्वर दिया। उनकी कहानियाँ स्वाहा, रिपोर्टर और वांटेड सत्ता, हिंसा और सामाजिक पाखंड को बेनकाब करती हैं। उपन्यास में नटी, अग्निगर्भ, झांसी की रानी, मर्डरर की माँ, 1084 की माँ, मात्र छवि, जली थी अग्निशिखा और जकड़न जैसे शीर्षक उनके साहित्य की वैचारिक दृढ़ता और मानवीय करुणा के प्रमाण हैं। उनकी आत्मकथात्मक कृतियाँ उम्र कैद और अक्लांत कौरव, आत्मसंघर्ष और सामाजिक विवेक की गवाही देती हैं। आलेखों या संस्मरणों और नाटकों, टेरोडैक्टिल और दौलती

0: में भी उनका यही सरोकार दिखाई देता है।
1: इन रचनाओं की कथा वस्तु में ऐतिहासिक संघर्ष और समकालीन राजनीति का सघन

0: ताना बाना है। शालगिरह
1: जहाँ सामाजिक न्याय के लिए दिया गया बलिदान केंद्र में है। प्रेम तारा प्रेम कथा होती हुई भी सिपाही विद्रोह की ऐसी पृष्ठभूमि से जुड़ी है, जबकि अक्लांत कौरव संक्षिप्त होकर भी तीखी और विस्फोटक सत्य उद्घाटित करती है। नील छवि उपभोक्तावादी समाज, ड्रग्स और नैतिक पतन की विडंबनाओं को उजागर करता है। वही कवि वैद्य घोटी गई नेर जीवन और मृत्यु में निचली जाति के युवक के मानवाधिकार संघर्ष को सशक्त वाणी मिली है। संक्षेप में महाश्वेता देवी का साहित्य शोषण के विरुद्ध संघर्ष, प्रतिरोध की चेतना और मानवीय गरिमा का सशक्त दस्तावेज है।
0: उनकी लेखनी में सामाजिक यथार्थवाद का एक गहरा तत्व मौजूद है, जिसे वे अपने गहन शोध और समुदायों के साथ व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से विकसित करती थी। उनके लेखन में उन्होंने समाज के विभिन्न तबकों के जीवन को बड़ी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया, जिससे पाठकों को उनके संघर्षों और आकांक्षाओं की गहरी समझ मिलती है। उनकी लेखनी ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा और सम्मान दिलवाया। उनकी लिखी कुछ प्रमुख कृतियां और किस्से उनकी गहरी सामाजिक समझ और साहित्यिक कौशल का प्रमाण है। उनकी प्रमुख कृतियां समाज के विभिन्न वर्गों की जीवनी और संघर्षों को उजागर करती हैं। 1084 की माँ में महाश्वेता ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को एक माँ की दृष्टि से देखा है। यह उपन्यास सुजाता के दुख और संघर्ष की कथा है, जिसका बेटा व्रती आंदोलन में शामिल होकर पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। माँ के शोक और न्याय की तलाश के माध्यम से लेखिका ने समकालीन राजनीतिक सामाजिक यथार्थ पर संवेदनशील और सशक्त टिप्पणी की है।
1: रुदाली एक ऐसी स्त्री की कथा है जो पेशेवर रूप से शोक व्यक्त करती है। इस रचना के माध्यम से महाश्वेता देवी ने महिलाओं की आर्थिक विवशता, सामाजिक विषमता और उनके संघर्षों को उघाड़ा है। रुदाली स्त्री जीवन की पीड़ा के साथ साथ उसकी जिजीविषा और आत्मसम्मान की सशक्त कहानी है। उनकी इस अद्भुत और मार्मिक कथा पर प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक कल्पना लाजमी ने फिल्म बनाई है। जनजातीय समुदायों के बीच रहकर किए गए गहन शोध ने महाश्वेता देवी के लेखन को दिशा दी। झारखंड में आदिवासियों के साथ बिताए समय और उनके भूमि अधिकार संघर्षों ने उन्हें अरंडियर अधिकार लिखने की प्रेरणा दी। ये उपन्यास जनजातीय समाज के जीवन, संस्कृति और वन अधिकारों की लड़ाइयों को संवेदनशीलता और सच्चाई के साथ प्रस्तुत करता है तथा शोषण और असमानता के विरुद्ध एक सशक्त साहित्यिक आवाज बनकर उभरता है।
0: सामाजिक न्याय के प्रति महाश्वेता देवी की प्रतिबद्धता उनके विचारों और लेखन दोनों में स्पष्ट दिखाई देती है। एक सामाजिक सम्मेलन में उन्होंने कहा था, असली शिक्षा वह है जो आपको मुक्त करती है। यह कथन उनके विश्वास को प्रकट करता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को सामाजिक जकड़नों से आजाद कर सचेत नागरिक बनाना है। अपने लेखन की प्रेरणा के विषय में वे कहती थीं कि उनकी कहानियां उन्हीं लोगों के जीवन से जन्म लेती हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया है। उनके जीवन और साहित्य से यह संदेश मिलता है कि साहित्य मात्र कल्पना नहीं बल्कि समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम है।
1: महाश्वेता देवी का कार्यक्षेत्र बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाके रहे। विशेष रूप से लोड़ा, सबरा और पलामू क्षेत्र के जनजातियों की दयनीय स्थिति, खासकर महिलाओं की पीड़ा ने उन्हें गहराई से व्यथित किया। इस असमानता को बदलने के संकल्प के साथ उन्होंने 1970 के बाद व्यवस्था में सीधे हस्तक्षेप की राह चुनी। पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीतियों और तथा कथित विकास मॉडल के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया और जनजातीय अधिकारों की सशक्त आवाज बनी।
0: 1984 में सेवानिवृत्ति के बाद महाश्वेता देवी का जीवन विश्राम नहीं बल्कि संघर्ष और सृजन का नया अध्याय बना। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह से लेखन और सामाजिक आंदोलनों को समर्पित कर दिया। इस दौर में उनकी रचनाएं जनजातीय जीवन, स्त्री शोषण, राज्य हिंसा और विकास के नाम पर होने वाले विस्थापन के विरुद्ध तीखे प्रतिरोध की आवाज बनी। वे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में जाकर जमीन और अधिकारों की लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुईं। आर्थिक, स्वास्थ्य और सत्ता के दबावों के बावजूद उन्होंने सादा जीवन जिया और शोषितों के पक्ष में अडिग रहीं, यह सिद्ध करते हुए कि सच्चा साहित्यकार कभी रिटायर नहीं होता।
1: महाश्वेता देवी की कहानियां और उपन्यास सदियों से हाशिए पर धकेली गईं। जनजातीय अस्मिता की सशक्त महागाथाएं हैं। उन्होंने प्रेमचंद, तारा शंकर और मानिक बंदोपाध्याय की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए किसान या श्रमिक ही नहीं बल्कि जनजातीय विद्रोही नायकों को साहित्य के केंद्र में रखा। उनकी कथाओं में जनजाति केवल पीड़ित नहीं बल्कि शोषण, दोहन और सत्ता के विरुद्ध संघर्षरत नायक हैं। महाश्वेता का मानना था कि साहित्य का मूल्यांकन केवल भाषा और शिल्प से नहीं बल्कि इतिहास और समय के परिपेक्ष में होना चाहिए। इसलिए वे लोक कथाओं, मिथकों और पुराकथाओं को वर्तमान से जोड़कर लिखती हैं, जहां जाति, जमीन, जंगल और सत्ता के सवालों के बीच निम्न वर्ग के शोषण का सतत इतिहास बहता है।
0: जनजातियों और बंधुआ मजदूरों के बीच काम करते हुए महाश्वेता देवी ने साहित्य के साथ वैकल्पिक पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। पलामू के बंधुआ मजदूरों के बीच काम करते हुए महाश्वेता ने कई तथ्य एकत्रित किए थे और उसी के आधार पर निर्मल घोष के साथ मिलकर उन्होंने भारत के बंधुआ मजदूर नामक पुस्तक लिखी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में जनजातीय अंचलों के सुख दुख के बारे में उन्होंने समय समय पर जो लिखा वे भी संकलित होकर पुस्तक के रूप में छाप चुकी हैं, डस्ट ऑन रोड। महाश्वेता की टिप्पणियों के इस संकलन को मैत्रेयी घटक, महाश्वेता के छोटे भाई ने संपादित किया है। 1980 में उन्होंने पत्रिका वर्तिका का संपादन शुरू किया था। उसके पहले उनके पिता मनीष घटक उसे संपादित करते थे। पिता का 1979 में निधन हो गया तो महाश्वेता ने पत्रिका का चरित्र ही बदल डाला। वर्तिका एक ऐसा मंच बन गया जिसमें छोटे किसान, खेती मजदूर, जनजातीय वर्ग के लोग, कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक और अपनी समस्याओं और जीवन के बारे में लिखते। वर्तिका में मेदिनीपुर के लोधा और पुरुलिया के खेड़िया शबर जनजातीय वर्ग के लोगों ने बहुत कुछ लिखा। इसके जरिए जनजातीय वर्ग के लोगों ने जीवन में पहली बार किसी प्रकाशन में लिखा।
1: हमने उनके साहित्य की यात्रा में बीच बीच में उनकी पुस्तकों को मिले सम्मानों का उल्लेख किया है, लेकिन अब अंत में उनके संपूर्ण पुरस्कारों और सार्वजनिक सम्मान की बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सम्मान केवल एक लेखिका को नहीं बल्कि उस संघर्षशील चेतना को मिले थे जो जीवन भर शोषितों के साथ खड़ी रही। महाश्वेता देवी को 1977 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जो उनके सामाजिक और साहित्यिक योगदान की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति था। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1986 में पद्मश्री, 1996 में भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार और अंततः 2006 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी लेखनी की शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों का प्रमाण है। उनके जीवन संघर्ष और विचारों की गूंज 2018 में भी सुनाई दी, जब 14 जनवरी उनके जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। उस डूडल में साड़ी पहने लिखती हुई महाश्वेता देवी के पीछे अलग अलग समाज, संस्कृतियों और चेहरों की उपस्थिति ये संकेत थी कि वे केवल साहित्यकार नहीं बल्कि हर उस आवाज की प्रतिनिधि थीं जिसे समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था।
0: अगर हम उनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो उन्होंने 20 से अधिक कहानी संग्रह और लगभग 100 उपन्यास लिखे, जिनमें अग्निगर्भ, जंगल के दावेदार, 1084 की माँ और रुदाली शामिल हैं। उनकी सामाजिक सक्रियता की दृष्टि से अगर हम उन्हें देखें तो 1984 में लेखन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने शिक्षण से सेवानिवृत्ति ली। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनजातीय वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम किया। 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में महाश्वेता देवी का देहावसान हुआ। वे लंबे समय से अस्वस्थ थीं और कोलकाता के बेल व्यू नर्सिंग होम में भर्ती थीं, जहां हृदयाघात के बाद उनके शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन यह केवल शरीर का अंत था, उनका लेखन कभी विदा नहीं हुआ। आज भी उनकी रचनाएं समाज के सबसे गहरे, सबसे अनकहे सत्य को उजागर करती हैं और मानवीय मूल्यों की रक्षा में एक अडिग स्वर बनकर खड़ी रहती हैं। महाश्वेता देवी एक नाम नहीं बल्कि एक जागृत चेतना, एक निर्भीक प्रतिरोध है जो हर पीढ़ी को याद दिलाती है कि शब्द यदि सच के पक्ष में हों तो वे मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं।
1: मैं शब्द नहीं खोजती, शब्द मुझे खोज लेते हैं, क्योंकि सच मौन में छिपा नहीं रहता, वो भीतर से पुकारता है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब हमें आपसे विदा लेनी है। आज के इस कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार में हमने बात की महान लेखिका महाश्वेता देवी के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान के बारे में।
0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, वाचन विजयकांत नायक और
1: दीप्ति तंतुपाय।
0: और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा, आप सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या शिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर संन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करतीं और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करतीं।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुईं। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातःकाल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूल कर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ। सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने? कहो, इतनी खुश क्यों हो? कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये कैसा सपना देखा?
3: क्या देखा तुमने? कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33 और 33 सेकंड पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा। चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले ये। शिव, ओ शिव, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना। चल चल अब अंदर चल। चल बेटा सर पोंछ दूँ, फिर कपड़े बदल लेना। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो? अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया। अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पोंछो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से?
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है। इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है? ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो माँ, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला।
1: नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलिच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगे। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।